सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 6 बजने को है, आप समाचार सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन।

0: आत्मबुद्धि प्रसाद से प्राप्त होने वाला शांति सुखी वो सच्चा ध्येय है, परंतु आध्यात्मिक सुखी यद्यपि इस प्रकार ऊंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक वस्तुओं की भी उचित आवश्यकता है, और इसलिए सदा निष्काम बुद्धि से प्रयत्न अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर तुमसे न ये कहता है कि कर्म करो और न ये कहता है कि उनका त्याग कर दो। ये तो सब प्रकृति की क्रीड़ा है और बंधन मन का धर्म है। इसलिए जो मनुष्य सम्बुद्धि से अथवा सर्वभूतांतरात्मा होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती। एकमात्र कर्म ही हमारा मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए। हमारा कर्म निष्काम और पूरी तरह से सोचा समझा हुआ हो। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रभुसत्ता किसे मिलेगी। यही पर्याप्त है कि हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ सर्वोत्तम ढंग से कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यही निष्प्रह धर्म है। जो कर्म हमारे मोक्ष अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वही धर्म और वही शुभ कर्म है, और जो कर्म उसके प्रतिकूल हो, वही पाप अधर्म अथवा अशुभ है। यही कारण है कि हम कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य शब्दों का ही अधिक उपयोग करते हैं। आपके धर्म का सिद्धांत है, आप केवल कर्म करते जाइए, उसके परिणामों पर ध्यान मत दीजिए। सब कर्म एक से ही हैं। दोष केवल कर्ता की बुद्धि में है, न कि उसके कर्मों में। इसलिए बुद्धि को कम करके यदि सब कर्म किए जाएं, तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। धर्म पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है कि कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुखमय हैं, अर्थात जन्म मरण के भव चक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिए मन निष्काम और विरक्त करना चाहिए, तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहने वाले आत्मस्वरूपी नित्य परम ब्रह्म में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ठ स्थिति में ही सदा निमग्न रहना संन्यास धर्म का मुख्य तत्व है। संसार में कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म फल उतनी शीघ्रता से नहीं मिलता जितनी शीघ्रता से कहा जाता है। हो सकता है इस कर्म फल से लाभान्वित हम हो पाएं या न हो पाएं, परंतु इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य नियम उन सभी श्रेष्ठ बातों का समुच्चय है जो अध्यात्म शास्त्र यथार्थ कर्म और निष्काम उपासना से परिपूर्ण जीवन से प्राप्त होती है। इस सार्वभौमिक नियम के अनुपालन से मानव संप्रेषित आदर्शों की प्राप्ति होती है। कर्मयोग इस संसार को निरर्थक नहीं मानता। कर्मयोग चाहता है कि आपके उद्देश्य स्वार्थ परता और भोग वासना से अछूते हों। यह व्यवहारिक वेदांत का सच्चा दृष्टिकोण और कुंजी है। कर्मयोग और कुछ नहीं वरन धर्म या भौतिक अथवा आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त करने की प्रेरक पद्धति है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्मयोग हमारी पवित्र वंश परंपरा है जो उस अति प्राचीन स्मरणातीत काल से चली आ रही है, जब हम भारतीय यश और समृद्धि के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित थे।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, वाचन स्वर विनय ध्यानी का था। FM 14.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 14.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:10 होने को हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत और ईश्वर की अटूट भक्ति में सराबोर।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं आपको ये गणेश वंदना समूह स्वर में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। 6:40 हुए हैं। अब वक्त श्री रामचरितमानस गान के आज के अंक का।

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

स्पॉटलाइट, ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा आज रात 9:15 पर। संदेश टू सोल्जर्स का प्रसारण समय रहेगा शाम के 4:00। ये कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। अब से चंद मिनटों के अंतराल पर यानी 7:10 पर आप सुनेंगे कुछ शीर्षक गीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून रोज की तरह ही सुबह 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 पर। फिल्म संगीत के विभिन्न कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे सवेरे 10:12 पर, दोपहर 1:15 पर, शाम 7:40 पर, रात 8:30 पर और आज रात्रि 9:30 पर। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुबह 11:00 और आपकी फरमाइश आज रात्रि 10:00 पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा सिमरन सैनी के स्वर में भजन। बहनों का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण सुनिएगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8:00 तंबाकू सेवन कितना घातक विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा संग भेंटवार्ता। शाम 5:10 पर युवाओं की वाणी कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे जिसके ठीक बाद समय होगा पर्वतीय अंचल के श्रोताओं का। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत संध्या के 5:45 पर।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली के केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमधिक्रम्य

0: नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् एक पञ्चाशत्तमे प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबर्धन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं, ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं, गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वं राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वं राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः, सुदृढ़ अनुशासनस्य, राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तन्त्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीये सन्देशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः, भ्रमात्मकः, तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting

0: फिल्म संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कुछ शीर्षक गीत। यह आकाशवाणी देहरादून है। 7:20 हुए हैं। अब वक्त प्रादेशिक समाचार का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई एसओपी जारी की। पशुओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित संचालन को अनिवार्य किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ईद उल जुहा के अवसर पर देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आज विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चर जैसे अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के साथ साथ पशुओं के संरक्षण और कल्याण को ध्यान में रखकर लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई एसओपी के अनुसार यात्रा मार्गों की वहन क्षमता तय की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अधिकतम 5,000, हेमकुंड साहिब मार्ग पर लगभग 1,050 और यमुनोत्री मार्ग पर करीब 595 अश्ववंशीय पशुओं के संचालन की अनुमति होगी। सरकार ने सभी पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य किया है। पंजीकरण से पहले स्वास्थ्य परीक्षण, ग्लैंडर्स जांच, एयर टैगिंग और माइक्रोचिपिंग जरूरी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की वैधता 45 दिन रहेगी, जिसके बाद दोबारा जांच करानी होगी। अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर रोक रहेगी। एसओपी में पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों पर पानी, चारा और इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुओं के लिए हल्की और वाटरप्रूफ काठियों के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। नई व्यवस्था में पशुओं पर अधिक भार लादने, घायल या बीमार पशुओं से काम लेने, बिना टोकन संचालन और पशुओं के साथ क्रूरता करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने, ब्लैकलिस्ट करने और FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एसओपी के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पशुओं के संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। खराब मौसम, बारिश या बर्फबारी की स्थिति में भी संचालन रोका जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक के 90 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 1 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन 24 से 26 जून तक आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई तक शाम 6 बजे तक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। इस दौरान संगठनात्मक बैठकों के साथ संत समाज, युवाओं और शिक्षाविदों से संवाद पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि श्री नवीन प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी और मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। कार्यक्रम के तहत महापौरों, नगर निकाय प्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ भी संवाद किया जाएगा। वहीं शाम को मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी विभाग के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम रखा गया है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड

0: को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। गृह राज्य मंत्री ने काली नदी पर बने भारत नेपाल सीमा के धारचूला झूला पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें सीमा क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन और सीमा संपर्क दल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। इसके बाद नित्यानंद रॉय ने सीमा चौकी धारचूला पहुंचकर जवानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल देश की पहली सुरक्षा पंक्ति है और कठिन परिस्थितियों में उनका समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। ईद उल जुहा के अवसर पर आज देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से शुरू की गई है जो 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। विंदाल क्षेत्र की ओर जाने वाले यातायात को डायवर्ट किया गया है। विंदाल की ओर जाने आने वाले वाहन कैंट मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं राजपुर रोड से विंदाल की ओर जाने वाले वाहनों को घंटाघर से दर्शनलाल चौक की ओर भेजा जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर घंटाघर की ओर जाने वाले ट्रैफिक को कैंट क्षेत्र की ओर डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि नमाज अदा करने के लिए आने वाले नमाजियों को घंटाघर से विंदाल मार्ग पर जाने की अनुमति रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 7 प्रमुख बैरियर प्वाइंट बनाए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के गजा में आयोजित गजा घंटा गण महोत्सव 2026 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने घंटाकर्ण महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण, कोटेश्वर झील विकास, डांडाचली में इको पार्क निर्माण तथा गजा क्षेत्र में विभिन्न आंतरिक मार्गों के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही गजा मैदान के विस्तारीकरण और मंच निर्माण को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने शहीद विक्रम सिंह नेगी राजकीय पॉलिटेक्निक गजा में फार्मेसी विषय शुरू करने की घोषणा की। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए चाका महिला अस्पताल को पीएचसी में उच्चीकृत करने और चाका में सामुदायिक भवन के सुदृढ़ीकरण की बात कही। मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगटाली और पंजे गांव को इंटर स्तर तक उच्चीकृत करने तथा नरेंद्र नगर महाविद्यालय को पीजी स्तर पर विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गजा महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक विरासत को सहेजने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है।
2: इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकरण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी को सजोए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन के लिए नई एसओपी जारी की। पशुओं के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित संचालन को अनिवार्य किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ईद उल जुहा के अवसर पर देहरादून में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आज विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। 7:30 हो चुके हैं। शैल संगीत के अंतर्गत अब सुनिए रतन सिंह जौनसारी के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।

0: शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप रतन सिंह जौनसारी के गाए जौनसारी लोकगीत सुन रहे थे। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। सवेरे के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा

0: जो देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी

0: का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र

0: क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्स 51st प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली, रिव्यूज 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रूपीज। Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervor. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार देहरादून। प्रोग्राम के साथ मैं पुष्पा पुंडीर आ गई हूँ एक बार फिर और कार्यक्रम में बनी रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। श्रोताओं, सबसे पहले आपको ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज इस मौके पर हम बात कर रहे हैं उस विषय की जिस पर अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में ध्यान देती हैं। जी हाँ, अपनी सेहत, अपना स्वास्थ्य।

घर हो, नौकरी हो या परिवार, महिलाएं हर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। लेकिन जब बात अपने स्वास्थ्य की आती है तो अक्सर कह देती हैं, अभी तो ठीक हूँ, बाद में देखेंगे। लेकिन छोटी छोटी अनदेखियां आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, समय पर जाँच और थोड़ा सा अपने लिए समय बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर बात अगर एनीमिया, तनाव, थकान और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं की हो तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जानते हैं, एक स्वस्थ महिला ही परिवार की असली ताकत होती है। इसीलिए दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी उतनी ही अहमियत दीजिए। याद रखिए, स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज की नींव होती है। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अखबार के पन्नों से अब कुछ ऐसी खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, हमसे और हमारे शहर देहरादून से। मेडिकल स्टोर्स में एक्सपायर्ड दवाएं मिली, 3 पर जड़ा ताला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई तो उजागर हुई सच्चाई। बकरीद आज बाजार में खूब हुई खरीदारी, दून पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, शहर को 5 जोन में बांटा। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए प्रवेश और पुनः पंजीकरण शुरू, NIOS और शिक्षा परिषद के साथ MOU। और अब हाल मौसम का, गर्मी से मिलेगी राहत, प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून में आज आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। शहर में 38 डिग्री अधिकतम तो न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। और अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि देश दुनिया के इतिहास में आज यानी 28 मई का दिन क्यों है खास। साल 1883 में भारतीय राजनीतिज्ञ और विचारक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1908 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक एयान फ्लेमिंग का जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई के दिन हुआ था। साल 1959 में आज ही के दिन 2 अमेरिकी बंदरों ने अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। साल 1967 में 65 साल के ब्रितानी नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर आज ही के दिन अकेले नाव में दुनिया का चक्कर लगाकर घर पहुंचे थे। साल 1996 में रूस चेचनिया को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ था। साल 1998 में बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। परमाणु परीक्षण के विरोध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पाकिस्तान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध आज ही के दिन लगाया। साल 2008 में नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही समाप्त हुई थी। तो ये थी आज की तारीख यानी 28 मई का दिन इतिहास के पन्नों पर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से? वो और थे जो हार गए आसमान से। एक बार फिर स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार देहरादून। जी हां श्रोताओं, आज वीरता, विचार और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की जयंती है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में जन्मे सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सावरकर उन क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को नई दिशा दी। उनकी लिखी पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ने युवाओं में देशभक्ति की नई चेतना जगाई। अंग्रेज सरकार ने उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की कठोर सजा दी।

लेकिन कठिन परिस्थितियां भी उनके इरादों को डिगा न सकी। वीर सावरकर एक क्रांतिकारी के साथ साथ कवि, लेखक और प्रखर चिंतक भी थे। उनका जीवन साहस, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें हम नमन करते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, 28 मई को ना विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, जिस खाने को हम कभी कभी बिना सोचे छोड़ देते हैं ना, वही किसी के लिए पूरे दिन की उम्मीद हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया में आज भी लाखों लोग कुपोषण और भूखमरी से जूझ रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बदलाव की शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। जितनी जरूरत हो उतना ही खाना लें, भोजन की बर्बादी रोकें, और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद तक भोजन जरूर पहुंचाएं। और हाँ, बच्चों को भी भोजन की बर्बादी के प्रति जागरूक करें। आप सुन रहे हैं नमस्कार देहरादून।

तो श्रोताओं नमस्कार, देहरादून में आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम संबंधी फीडबैक भेजने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088-0000731 पर, जिन्हें आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन मैसेज की शुरुआत में आपका पत्र मिला लिखना ना भूलें। साथ ही पत्रों के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नमस्कार देहरादून, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन कोड है 2480001। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय किसी और साथी के साथ, मुझे यानी पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

0: नमस्कार देहरादून, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून से। 9 बज रहे हैं, अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार देहरादून के उत्तराखंड विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़ी उन महत्वपूर्ण गतिविधियों, विकास कार्यों, सांस्कृतिक आयोजनों, प्रशासनिक पहलों और जनसरोकारी खबरों की से रूबरू कराते हैं जिन्होंने बीते दिनों जिले की पहचान और गतिविधियों को प्रभावित किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पहुंचाते हैं पहाड़ से मैदान तक की हलचल, लोक संस्कृति से विकास तक की तस्वीर और जनजीवन से जुड़ी खास बातें। आज की जिले की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है जनपद उत्तरकाशी से। आलेख है आशीष मिश्रा का। आज की इस चिट्ठी में हम बात करेंगे गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में उमड़ी आस्था की, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की, सीमांत क्षेत्रों में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों की, आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की तैयारियों की और स्थानीय उत्पादों को मिल रहे नए बाजार की। साथ ही जानेंगे वनाग्नि रोकने के प्रयासों और सीमांत गांव में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो आइए सुनते हैं उत्तरकाशी से बीते दिनों की प्रमुख गतिविधियों और घटनाओं पर आधारित आज की जिले की चिट्ठी। सबसे पहले बात गंगा दशहरा पर्व की। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। मां गंगा के अवतरण दिवस पर हजारों श्रद्धालुओं ने भागीरथी तट पर स्नान कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के बीच स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला।

0: धार्मिक आयोजनों के सफल संचालन से चारधाम यात्रा को भी नई ऊर्जा मिल रही है। आज बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर की भी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्रों हर्षिल और यमुनोत्री का दौरा कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष पुनरीक्षण अभियान और चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर मतदान सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की। उनके दौरे से सीमांत क्षेत्रों में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ी और लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत होने का संदेश गया। इस दौरे के दौरान वोकल फॉर लोकल की झलक भी देखने को मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा हर्षिल घाटी की पारंपरिक टोपी खरीदने की खबर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। इससे स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा मिला है। हर्षिल क्षेत्र अपने ऊनी उत्पादों, राजमा और सेब के लिए विशेष पहचान रखता है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान इन स्थानीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। अब बात आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों की। धराली क्षेत्र में पूर्व में आई आपदा के बाद अब गंगोत्री घाटी में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गंगोत्री, हर्षिल, धराली और केदारताल क्षेत्र में आधुनिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विशेषज्ञ टीमें विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं। इस प्रणाली के लागू होने के बाद संभावित प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना समय रहते मिल सकेगी, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए यमुनोत्री धाम के पुराने वैकल्पिक मार्ग को फिर से विकसित करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खड़साली गरुड़गंगा पैदल मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए मंदिर समिति से प्रस्ताव मांगा गया है। इस मार्ग के विकसित होने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और मुख्य पैदल मार्ग पर दबाव भी कम होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन मानसून के बाद मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा के दौरान उत्तरकाशी जिले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी श्रद्धालुओं द्वारा सराहना की जा रही है। यात्रा मार्गों पर यातायात नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सक्रिय हैं। यात्रियों को समय पर जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई गई है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अब बात आग और वनाग्नि की घटनाओं से निपटने की। उत्तरकाशी जिले के डोंडा क्षेत्र स्थित पिरूल प्लांट में लगी आग पर फायर सर्विस ने प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नियंत्रण पा लिया है। समय रहते दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग को फैलने से रोक दिया गया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से गर्मी के मौसम में सतर्कता बरतने और आग से संबंधित घटनाओं की तुरंत सूचना देने की अपील की है। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हम FM 100.5 MHz पर बोल रहे हैं। 9:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्म की। कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत। आज का अंक आप सुन रहे हैं पुष्पा भुंडीर के।

जी हाँ, घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं, ये वो जगह है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है। कभी माँ की आवाज़, कभी बच्चों की हंसी इसे जिंदा रखती है। और सच कहें, घर ही वो एहसास है जहाँ लौटकर इंसान खुद को फिर से पा लेता है।

श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद एक छोटे से घर से जुड़ी होती है। वो घर जहाँ कोई इंतजार करता हो, कोई हाल पूछता हो, कोई मुस्कुराकर

श्रोताओं, इंसान सारी उम्र चीज़ें जुटाने में लगा रहता है, लेकिन सुकून अक्सर उन चीज़ों में नहीं मिलता। भौतिक ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं नहीं। शायद इसीलिए संतोष दुनिया की सबसे दुर्लभ दौलत कहलाता है।

श्रोताओं, छोटी छोटी दुआओं में अक्सर सबसे बड़ी खुशियां छिपी होती हैं। कभी किसी अपने की मुस्कान तो कभी चैन की एक रात ही काफी लगती है। जिंदगी हर बार बड़ी नेमतें नहीं देती, लेकिन छोटी छोटी रहमतें जीने का हौसला जरूर दे जाती हैं।

किसी का साथ अगर सच्चा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, कभी शब्दों से तो कभी सिर्फ मौजूदगी से ही हिम्मत मिल जाती है। जिंदगी में हर चीज़ नहीं चाहिए होती, कई बार बस एक साथ हो तो सब कुछ संभल जाता है।

सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।

सच्चा साथ वही होता है जो हालात बदलने पर भी न बदले, जो मुश्किल दिनों में भी हाथ थामे रखे और हौसला देते रहे। जिंदगी की राहें आसान हो जाएं ये जरूरी नहीं, लेकिन कोई साथ चलने वाला हो तो सफर खूबसूरत जरूर हो जाता है।

आंखें सिर्फ दुनिया को देखने का जरिया नहीं होती, ये अक्सर दिल की वो बातें भी कह देती हैं जो लफ्ज़ नहीं कह पाते। जी हाँ, खूबसूरती सिर्फ चेहरों में नहीं, नज़रों में भी बसती है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ऊर्जावान औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय SDG अवार्ड्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी करने की अनुमति दी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। पौड़ी जिले की सतपुली रेंज के कलजीखाल वन क्षेत्र में आग लगने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने PM श्री गर्ल्स इंटर कॉलेज ज्वालापुर में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि जारी हुई। परीक्षा 1 जून से शुरू होगी। शासन ने केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। पौड़ी में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का परीक्षण कल से शुरू होगा। पिथौरागढ़ जिले के नगर निगम क्षेत्र नेड़ा बस्ते वार्ड में प्रस्तावित देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण के लिए शासन ने वित्तीय स्वीकृति दी और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। प्रातः की 10:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

0: हाय दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। पर्यावरण के गुण और विशेषता, ये तो सामान्यकृत या स्थानीय, क्योंकि वे मनुष्य और अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता एक सामान्य शब्द है जो इसका उल्लेख कर सकता है। हवा और पानी की शुद्धता या प्रदूषण, शोर, खुली जगह तक पहुंच और इमारतों के दृश्य प्रभाव जैसी विभिन्न विशेषताएं और संभावित प्रभाव जो ऐसी विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पर्यावरण की स्थिति मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए प्रदूषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव पड़ने से, जो बदले में किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरणीय गुणवत्ता को एक सार्वजनिक वस्तु माना जाता है जिसका सभी को समान मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस आधार से शुरू होता है कि निजी संपत्ति के अधिकारों को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य और या निजी संपत्ति के अधिकारों को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। कई संशोधित पर्यावरणीय कारक जैसे कि बाहरी वायु प्रदूषण, घरेलू वायु प्रदूषण, पीने के पानी का संदूषण, खतरनाक सामग्रियों के व्यावसायिक जोखिम, सीसा जोखिम और निर्मित वातावरण जो शारीरिक गतिविधि को हतोत्साहित करते हैं, पुरानी बीमारी के जोखिम और अनुभव को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रदूषित पर्यावरण न सिर्फ गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। साथ ही जाने कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल है। इस जानकारी के आधार पर ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए एक जहर बनता जा रहा है। आज हवा से लेकर पानी, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की सभी चीजें प्रदूषित हो गई है और कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से न सिर्फ सांस संबंधी बीमारी होती है बल्कि ये मृत्यु को भी बुलावा देती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। जब वायु में प्रदूषित तत्वों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है तो सांस लेने में परेशानी के अलावा आंखों में जलन और खुजली होने लगती है। आस्थमा के अलावा सांस संबंधी कई बीमारियां पैदा हो जाती है। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के चपेट में आ गए हैं, जिसका जन्मदाता वायु प्रदूषण है। हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार यातायात संबंधी प्रदूषण की वजह से बच्चों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह कई तरह के मानसिक विकारों को जन्म देता है। वायु के प्रदूषित होने के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य है फैक्ट्री और कारखानों से निकलने वाला हवा, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सीसा और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। पर्यावरण को प्रदूषित करने में कूड़ा कचरा भी अहम भूमिका निभाती है। जगह जगह कूड़ा जलाया जाना और फेंकने से कई हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं और स्वच्छ हवा के साथ मिलकर उसे जहरीला बना देता है। जिस तरह स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है, उसी तरह साफ पानी की भी जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज यही जल कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसकी वजह है पानी का प्रदूषित होना। फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। गंदे नालों से निकलने वाला पानी नदियों में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। यही प्रदूषित पानी डायरिया, टाइफाइड और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार तो कुछ नियम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अपने स्तर पर भी हम कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में डालें, फल सब्जियां ऐसी चीजें जो रिसाइकिल हो सके उन्हें हरे कूड़ेदान में डालें, और प्लास्टिक कांच पॉलिथीन जैसी चीजें नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। घर के अंदर का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत काम आएंगे ये टिप्स, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। अपने वाहनों के समय समय पर प्रदूषण संबंधी जांच करवाएं और सर्विसिंग भी टाइम पर करवाएं। ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो रीयूजेबल हो, यानी जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कमरे या घर से बाहर निकलते सभी लाइट और पंखे बंद कर दे। अगर आसपास ही किसी मार्केट या अन्य जगह पर जाना हो तो कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर वॉक करके जाएं। गाड़ी, घर या अन्य चीजों की साफ सफाई के लिए खतरनाक केमिकल आधारित उत्पादों की जगह इको फ्रेंडली उत्पाद इस्तेमाल करें। छोटी छोटी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचाव, जितना हो उतना ही करंट का इस्तेमाल करना, यूज करने के तुरंत बाद बिजली को बंद करना। परिवार के सभी सदस्य एक बार ही मिलके खाने से कई लाभ है, जैसे जितना कंजम्पशन है उतना ही खाना बनता है, बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य मिलके खाएंगे तो डाइनिंग टेबल पर फैमिली बॉन्डिंग भी हो जाता है। अन्य कमरों में लाइट और फैन बंद करें। पानी की बचत करें, वॉश बेसिन में ज्यादा पानी वेस्ट न करिएगा। किचन से सब्जी फल धोने के बाद जो पानी वेस्ट रहता है उसे अपने पौधों में डालें। किचन वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। थोड़ा ही सही घर पर कुछ न कुछ जरूर उगाएं। हो सका तो कुछ ज्यादा भी उगा सकते हैं, आपके पास अगर जगह और टाइम हो तो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो आसानी से उगे उसे भी लगाएं, और इससे आप बार बार आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हरा धनिया उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं और पालक भी घर पर ही उगा सकते हैं। टमाटे, बैंगन, टिंडा ये सब आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एनवायरमेंटल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लम्हे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: FM 104.5 मेगा

पर यह आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 10:12 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं तरकीब फिल्म से, अलका याग्निक और जगजीत सिंह की आवाजों में।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

जोधा अकबर इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और मधुश्री की आवाजों में। संगीत AR रहमान का था। अब सुनिए राहत फतेह अली खां और महालक्ष्मी अय्यर को। गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने, बोल गुलजार के, और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आप हमें सुन रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षिक सत्र 2026-27 से किया जाएगा। विद्यालय की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र में शिक्षा और अनुकूल वातावरण सृजित होगा और क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। पिथौरागढ़ जिले में शासन प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन आम लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। इसके माध्यम से जिलेवासी अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन करीब 15-20 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करना है।
2: पिथौरागढ़ जो हेल्पलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और लगातार उसमें जो आम जनमानस की तरफ से शिकायतें उसमें दर्ज हो रही हैं। इसमें लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ताओं ने अपनी संतुष्टि भी उसमें व्यक्त की है, क्योंकि शिकायतें उसमें लगातार आती जा रही हैं। तो पूरा प्रयास यह है कि उनका टाइमली डिस्पोजल किया जाए और संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। अभी जो है 200 के करीब उसमें शिकायतें दर्ज हो गई हैं और उसका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण की स्टेज में भी काफी सारी शिकायतें हैं और हम लगातार संवाद बनाए हुए हैं जो शिकायतकर्ता है। हम तो प्रयास यही है कि जल्द से जल्द अच्छा निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत।
1: वहीं पिथौरागढ़ के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र राउत ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से लोग बिना किसी परेशानी के सीधे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा व्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल स्वयं वन प्रभाग की सतपुली रेंज के कलजीखाल क्षेत्र में आग लगाने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। DFO सिविल स्वयं वन पवन नेगी ने बताया कि जंगलों में आग लगने के आरोप में ग्राम फालदा निवासी 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वनाग्नि की किसी भी घटना की तत्काल सूचना वन विभाग को दें और जंगलों को आग लगने से बचाने में सहयोग करें। उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का प्रशिक्षण प्रदेश भर में कल से शुरू होगा, जो 7 जून तक चलेगा। 8 जून से BLO घर घर पहुंचेंगे और SIR के गणना प्रपत्र भरने का काम शुरू करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान BLO व उनसे ऊपर के अधिकारियों को SIR की सभी बारीकियां, अपील की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 29 मई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 10:35 होने को हैं। आप प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश जोशी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: रमेश जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से।

0: रमेश जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे ही पेश है प्रोग्राम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार और ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। श्रोताओं, यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, जिसमें होते हैं आप सभी की फरमाइश की फिल्मी गीत। अगर आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर आप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद की फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम में पहले लेते हैं आप सभी की फरमाइश का ये पहला गीत। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपांताड़ी वसंतरा भोजनी निवृत्ति आडोकर और साथ ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। ये मैसेज लिखते हैं, मोहल्ला हलवाइयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं श्रोता जिन्होंने हमें फरमाइश लिख भेजी है। गांव महेशवाड़ी मलकापुर से शत्रुधन धाड़े, वकील वाल्मीक, नीना जी और साथ में स्वप्निल धाड़े और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप ऊपरकोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान, अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, कस्बा गुन्नूर यूपी से हैं फारूक अली खान, फेजी, फरहाज, फरहीन, फारिया और ताहिरा। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दीदार यार।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम वट सफर मायश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर नया पारा बिराई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज भाई पप्पू और ईशराय ठाकुर। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार। साथ में हैं सोनम वर्मा। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरूसल सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा शकील सिद्दीकी, फ़हीम मोहम्मद, यासीन अंसारी और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और साथ में है प्रांजलाय। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाहनास नक्सा, नाजी आफिया, इब्राहिम सद्दाम और साथ में है अदीब हसन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, लुकमणी साहिल और भारती बघेल। और ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रानी, टू लक्ष लाडोकोल मल्होत्रा, इनकी पापा जी हैं नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डिग्गू और साथ में भाविक सिक्का। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है व्हाइट फील्ड बंगलुरु से ही भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये मैसेज है हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल सर, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।
8: भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी के अनुरोध पर अकोला से के शरद पाचपो, श्रीमती शोभा, बीबी बेदेही, बिहान बाबू, रश्मि अक्षय और साथ में अभिनव पाचपो। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान छीपा और साथ में पूजा परिहार। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है पटेल नगर मलोड़ से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी का गद्दी पार्स और साथ में है गुड्डू। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, बधु आशीष शिवन्य और अन्य गोस्वामी। ये फरमाइश होता लिखते हैं आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेद आयशा और साथ में स्नेह भानु जैनुद्दीन। और ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू राजू और बबीता मेघलानी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, उमंग मलिक और साथ में आकांक्षा मलिक। ये फरमाइश मलिक भेजी है मेहर नगर उमरखेड़ से अभिजीत गवानकर, सरिता गवानकर, प्रिंस सूर्यकांश गवानकर। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप धानी नादुरा से श्री कृष्ण भाटी, संदीप और अमूल्य भाटी। और साथ ही मैसेज लिखते हैं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीब और दानिश अंसारी। और गोला बाजार बक्सर से यहाँ पे श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद और परमानंद आर्य, बक्सर से राजेश डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आपने फरमाइश लिख भेजी है जिला झारखंड बड़ा बम्बू सुपाईसाई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और साथ में है देवेंद्र जी। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट, रोजी पर्ल और विली से डिकेस्ट्रो। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है वक्त।

यह है कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपी कमलोत्रा, गव्य भाई सुच्चा सिंह पाठक, साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुल्लान सलमा सदर हाम और साथ में हैं मोहम्मद आलम हाशमी। और इसी गीत को सुनना चाहे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष राजा चैतन्य बेगम मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और साथ में हैं केशुरी दान खुराना। ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। आप रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगाम का सुषमा प्रांजलि सुहम सदानंद विराज स्वीट एंड शुभ साथ में बेबी ओवी। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आप हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से हैं मनोहर लाल गांधी और इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं मरहरा दरवाज़ा ईटा से हैं नबी हसन अब्बासी शहनवाज, नवेद हसन अब्बासी, रसीद सुहेल अनब और यशप अब्बासी। और इसी गीत को सुनना चाहा है आपने फरमाइश मेलिक भेजी है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और साथ में है प्रतीक कुमार। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं मुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत तो रोजेस भाई, चंडीगढ़ सिटी से शेफाली शेफी डेविस बिमला और सतीश अनेजा। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज प्रिंस और प्रशांत गुप्ता। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं जिला कासगंज यूपी से ही योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारी का सुशांत और सुरेश चौरसिया, फरुखाबादी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। उनेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वक्तरिया, धाकड़ भूला परवीन वक्तरिया, रियांश और प्रतीक। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने

भेजी है। गाड़गे नगर, यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और साथ में इनका पूरा लोखंडे परिवार देहरादून ईदगाह मोहल्ला निवासी चक्राता रोड से यहाँ पे सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा चावला और साथ में इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, हैदराबाद से हैं, गुंडुमा कुंटा ग्राम से बंदी कृष्णा, गुड़ मलेश्वर, गुड़ विजय लक्ष्मी। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश अभिलेख भेजी है, धामणगांव जिला बुलढाणा से समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे, लक्ष्मी कुमारी सानिका देठे पाटिल। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने मैसेज लिख भेजा है, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसी नौरी नास नर मोहम्मद कैफ अंसारी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और आपा ढींगिया। साथ ही ये फरमाइश होता लिखते हैं, आप हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से देर शाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकरा हैदर, करीज सकीना और हसीना दिलशाद। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं, जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी मोनी, ऋतिक और साथ में बलवीर सिंह। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं सिहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात और अदीब और साथ में इनके कादिर चौधरी। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: Future-proof your career with UPES Dehradun, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: समय 11:33 और 50 सेकेंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्षा फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की फरमाइश पर। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र मनहरन और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आप हैं गांव पंचकुला से वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, अंजलि, नेहा, अंजलि और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं। निकट बिजलीघर मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, अजीम साइकिल वाले और साथ में हैं इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से रूपेश संगाई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और साथ में इनका पूरा संगाई परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहा है सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और साथ में है सुरेश नारंग। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से मैसेज श्रोता लिखते हैं। शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने फरमाइश लिखी है संबलपुर का केस से ही फागुरम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। और इसी गीत को सुनना चाहा है वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और साथ में पवेल सुल्ताना। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। काटा रोड वासी महाराष्ट्र से माठल बिष्ट सुरेशी, सुषमा परेदी और मायरा सुरेशी। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश लिखते हैं। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है। आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे कुमार, संचित बयाल, कुमारी प्रतिमेश और साथ में इनके परिवारजन। भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, लक्की नारंग और साथ में तान्या नारंग। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। नई दिल्ली से हैं स्वीटी छाबड़ा, इंद्र रविंद्र छाबड़ा और साथ में इनका पूरा छाबड़ा परिवार। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। पटियाली रोड गंज डिडवारा से आमिर हुसैन, बेबी तैबा शेख, फौजी अशेख, आहिल और अरहान शेख। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: Improve your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैदराबाद से ही गोपाल नाई उमा महेश्वरी, साथ ही फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्न मुद्दसिर साबरी, मुजकिर और साथ में जरीफ अंसारी, ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान इरमगोड़िया और साथ में शोएब खान, और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है लाल कुर्ती डुड़की कैंट से राजेश शर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिक, दीपाली युवान और साथ में आर के राजा, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में आयन बाबू, बीड महाराष्ट्र से मैसेज श्रोता लिखते हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि आकाश और साथ में आकांक्षा करवा, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने फरमाइश लिखी है जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र वर्मा और साथ में इनके परिवारजन, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है निज़ामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगार परवीन, हफ्सा अनम, समूरा नमीन और साथ में इनके परिवारजन, ये फरमाइश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अज्जू योगिता और साथ में रज्जन साहू और हेमंत नामदेव, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आनंद गांव जिला जालना से हैं परमेश्वर शिंदे, कावेरी वैष्णवी, प्रहलाद शिंदे और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है आराधना।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, साथ ही ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें भेजी है। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं करताल हैदराबाद तेलंगाना से कानगुला गोपाल और इनके परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा मोस्ट मद अदीब और साथ में मसरूर अली। करनाल से फरमाइश श्रोता लिखते हैं गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा और जी एस रामगढ़िया। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाडी शालिनी, टिवांशी और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आपने फरमाइश हमें लिख भेजी है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निमी, पम्मी, सिया, शीता और निशांत ध्रुव। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश श्रोता लिखते हैं रानीगंज बंगाल से।

रवि और इंद्र साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार, रिमी तनुश्री गुप्ता और पीरा बाजार जुमरी तैयल से आप हैं। अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका साहू, रियाजिया टूशी, आयुष्य निरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शो, जयप्रकाश शो, बसंत लाल शो, हीरा मोती और पन्नालाल शो, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम बरसात की रात।

आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावर से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश और साथमीन की बहुत सारे मित्र, गोगामा से हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर कासमी और साथमीन की परिवारजन। साथ ही ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आपने फरमाइश लिख भेजी है गांव पुटपक्का लंगा से, आप हैं भवानी वेंकट मास्टर मिथुन और साथ में महादेव, और इसी गीत को सुनना चाहा है कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी नईम, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा और साथ में मुन्ना नजीम। ये फरमाइश श्रोता ने हमें लिख भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाज बम्बे गमरियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और साथ में माहिरा नूर। और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबेर और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, आप है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, भई श्री देवी, सोनू बोनू, राव लक्ष्मी, प्रियंका, सृष्टि बनी और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता

ने लिख भेजी है। गांव करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरी अंसारी, समाम शमी अंसारी, माहे नूर अंसारी और इसी गीत को सुनना चाहा है। आपने फरमाइश मेरी भेजी है मॉडल टाउन करनाल से सुधी नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आपने मैसेज हमें लिख भेजा है। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं, रोहतक हरियाणा से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। आप सभी ये फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ से, फिल्म का नाम है हीना।

इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी थी गणेशपुर गंज डिडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान ने। राजधानी रायपुर से नीलू बेग, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और साथ में बिट्टी कुमार। ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफा डावर, अब्दुल हक, जेउल हक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी थी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल बनवर, सल्ला, विशाल, चेतन, रोशनी और साथ में भी प्रियांशी ने। ये फरमाइश होता लिखते हैं आप हैं। नजफगढ़ से शाहरुख, फारूक, शबनम, शहनाज और साथ में इनके परिवारजन। फरमाइश होता लिखते हैं। जलालाबाद शामली से राशिद मंसूरी, आयान जी, शान मंसूरी और साथ में इनके परिवारजन। अकोला से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले। साथ ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत नाचानी, मिथिल, प्रगति नाचानी, बाबू भाई और साथ में हैं भारती देवी। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर, इंदिरा बाई और छक्कुलिताई खोबर खेड़े। खानवी बुल्ढाणा से दीपाली रामधाड़े, सुराज रामधाड़े। तिलोरी दरियापुर से हैं सुनैना पवन बूढ़े और तनुज पवन बूढ़े। साथ ये फरमाइश हमारे श्रोता लिखते हैं। आपने मैसेज लिख भेजा है। रंगारेड्डी से है गोपी और इनके परिवारजन। साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। गांव गाला जिला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन साथ में इनके परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी। परिमल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, अरफा।

0: اسلم سیفی ماسٹر زاہد علی اور ساتھ میں ان کے پریوار جن. ساتھ یہ فرمائش شوتاؤں نے ہمیں لکھ بھیجی ہے. آپ نے میسج ہمیں لکھا ہے بلڈھانا اسلام پور سے. سہدیو دابودر ششی کلا سمیت کمار سادھنا اور پون پاٹل یہ فرمائش شوتا لکھتے ہیں. آپ ہیں بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی, ہرمندر چاولا لوکیش, شیو کمار شرما, بی بی بیدی جوشی, بی بی ہنسیکا جوشی اور ساتھ میں کماری انکیتا. ساتھ یہ میسج شوتا ہمیں لکھتے ہیں رام گنج کھنڈوا سے وجے مہوبیا, کویتا وشال, ویویک سورمونو, راہل, سپنا شیوی سلونی اور پینٹر بابو نے. اور اسی گیت کو سننے کے لیے فرمائش ہمیں لکھ بھیجی تھی گاؤں ہنگڑی آلوٹ رتلام سے جگدیش دھاکر نائما, رنجو بائی, یوراج سنگھ اور شیوانگی دھاکر نے. ساتھ ہی یہ فرمائش شوتا ہمیں لکھتے ہیں. آپ نے میسج لکھ بھیجا ہے پنچکولہ گاؤں سے ہیں وید پرکاش اور ان کے پریوار جن. اور اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم واٹس ایپ فرمائش یہی پر سمپن ہوا. شوتاؤں کاریکرموں کے سمبندھ میں اپنی پرتکریا ہمیں ضرور لکھ سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر 7088000731 پر آپ کا پتر ملا کاریکرم میں. 100.5 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ دہرادون کیندر ہے. اس سمے 12 بجنے کو ہے. اب سماچار ہوں گے.
1: نمسکار, آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए. श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया. अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था. इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है. समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा.
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया. गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने यह घोषणा की. केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं. राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं. श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी. भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है. दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की. ये बैठक कल पेइचिंग में हुई. बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई. आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में 2-2 मौतें हुई हैं जबकि

0: मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Mr. Modi stated this while chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees across the railways, power and road sectors covering 9 states. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Gala on the Sikkim police during Alankaran Parade held in Gangtok.
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the Ullas Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. India and China reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The ministry said the Indian side stressed on early meeting of the next expert-level mechanism on transborder rivers. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah today held a breakfast meeting with cabinet colleagues at his residence in Bengaluru amid reports of a possible leadership change in the state. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, who is reportedly being considered for the top post, was also present at the meeting. Cabinet ministers who attended the meeting said they would abide by any decision taken by the Congress High Command regarding a change in leadership in the state. In Bihar, 8 people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary expressed grief at the loss of lives and announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. The Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar

0: dedicated his entire life to the service of the motherland. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone strikes. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. In Norway, chess, India's R. Pragyananda defeated the world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament. In contrast, world champion Deepu Kesh suffered another setback after losing to Alireza Firozia. And with that, we end this news bulletin.
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए एफएम न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद विक्रम सिंह नेगी राजकीय पॉलिटेक्निक गजा में फार्मेसी विषय की स्वीकृति दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ जिले के नगर निगम क्षेत्र नेड़ा बस्ते वार्ड में प्रस्तावित पार्क निर्माण के लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिली। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राजकीय इंटर कॉलेज टिहरी के दीन गांव में इसी सत्र से कला संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में शोध के लिए 2,15,00,000 की आंतरिक शोध अनुदान को स्वीकृति दी। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि जारी, 1 जून से शुरू होगी परीक्षा। इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए 15 जुलाई तक होने वाले आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया। पौड़ी जिले के कलजीखाल वन क्षेत्र में आग लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं, लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए सिमरन सैनी के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर सैकत मंडल और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। तो आइए सुनते हैं सिमरन सैनी के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिमरन सैनी के गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सैकत मंडल और हारमोनियम पर मनीष कुमार शाह। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सखियों, लेकर आपका अपना कार्यक्रम रेडियो सखी। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी अपनी दोस्त, अपनी सखी किरण जोशी। बहनों, गर्मी अपनी चरम पर है और इस गर्मी के मौसम में छोटी सी लापरवाही में बड़ी परेशानी बन सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को दस्त और लू का खतरा अधिक रहता है। बहनों, सबसे पहले बात करते हैं दस्त यानी डायरिया की। बार बार पतली दस्त होना शरीर में पानी की कमी कर देता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर इलाज नहीं मिले तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बहनों, हमेशा साफ और ताज़ा भोजन करें, पानी उबालकर या फिल्टर करके पिए। खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद साबुन से या हैंड वॉश से हाथ जरूर क्लीन करें। अगर किसी बच्चे को दस्त हो जाता है तो तुरंत उसे ORS का घोल और जिंक की गोली डॉक्टर की सलाह पर जरूर दें। याद रखिए बहनों, हर दस्त में ORS है बहुत जरूरी। और अगर आपके पास घर पे ORS नहीं अवेलेबल है तो आप चीनी और नमक इसका घोल बनाकर तुरंत आप बच्चे को या बुजुर्ग जिन्हें भी दस्त लगे उन्हें जरूर दें, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और उनके बॉडी में पानी की आपूर्ति होती रहे। बहनों, अब बात करते हैं हीट वेव यानी कि लू की। बहनों, तेज गर्म हवाएं शरीर को कमजोर बना देती हैं। ज्यादा देर धूप में रहने से हमें चक्कर आते हैं, तेज बुखार हो सकता है, हमारे सिर दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो बहनों, लू से बचाव के लिए दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में हो सके तो निकलने से बचें। अगर आपको जाना ही है, बहुत अर्जेंट वर्क है, तो आपको बाहर जाते समय सिर को अच्छे से कपड़े से या टोपी से ढक के कवर करें और हो सके तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और बार बार पानी या नींबू पानी या छाछ या हो सके तो ORS का घोल जरूर पीते रहें। और अगर आपको कहीं पे बेल का शरबत मिल रहा है और गन्ने का जूस अवेलेबल हो रहा है, उसे लेके भी जरूर पिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को इस गर्मी में ठंडक पहुंचाता है, हमें राहत देता है। और अगर बहनों किसी व्यक्ति को चक्कर आ जाए या वो बेहोश महसूस करे तो उसे तुरंत छायादार जगह पर लिटाएं और उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भी जरूर ले जाएं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में कब कहां किसी के साथ क्या घटना घट जाए हमें नहीं पता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है देखते हुए या आपको दिख रहा है कि कोई भी बहन या कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर परेशान है तो उसकी मदद जरूर करें। तो इस सावधानी और स्वच्छता को अपनाकर हम दस्त और लू इन दोनों से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस जानकारी से जागरूक बनाएं और जितना हो सके अपने आप को इस गर्मी के मौसम में

0: बचाव करने की कोशिश करें, धूप में कम से कम निकलने की कोशिश करें, जिससे आप सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। और क्योंकि मैनू आज है गुरुवार और आज होता है आपका रेडियो सखी कार्यक्रम, तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपका रेडियो सखी कार्यक्रम और लेते हैं आज की पहली कॉल। हेलो रेडियो सखी।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका रेडियो सखी में बहुत बहुत स्वागत है। हमसे कौन बात कर रहा है?
1: जी मैम, मेरा नाम प्रीति है मैम।
0: प्रीति। प्रीति कैसे हैं
1: जी
0: आप?
1: मैम, अच्छे हैं मैम।
0: प्रीति हमसे कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैम, हम मुजफ्फरनगर जिले से बोल रहे हैं।
0: मुजफ्फरनगर।
1: जी
0: जी क्या करते हो प्रीति आप?
1: जी मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: ओके, तो हाउसवाइफ हैं तो भी हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं।
1: जी मैम।
0: जी तो आपके क्या क्या शौक हैं?
1: जी मैम, मेरे साफ सफाई का ज्यादा शौक है। जी
0: अच्छी बात है, क्लीनिंग तो वैसे भी बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के
1: जी
0: लिए। घर में साफ सफाई होना तो बहुत जरूरी है।
1: जी
0: ओके प्रीति, कौन कौन है आपके घर पे?
1: जी मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड है और मेरी सास है जो है।
0: ओके प्रीति, अच्छा आप ये बताइए, हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, शादी से पहले, शादी के बाद, किसी के मामी, किसी की चाची, किसी की बुआ, है ना, आप किसी की वाइफ बने हो सबसे पहले, किसी की बहू बने, तो इतने सारे रिश्तों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? मतलब आप कैसे अपने रिश्तों को खास बनाती हैं?
1: जी मैम, सबके लिए अच्छा, सबसे पहला वो है कि सबके लिए अपना अच्छा व्यवहार होना चाहिए
0: जी
1: और सबकी सेवा करनी चाहिए। जो अपना परिवार है घर में, सबकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जहाँ हम आदर देंगे, प्रेम देंगे, वहाँ पे हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी और माहौल भी खुशनुमा रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, है ना, रिश्तों में प्यार बना रहता है।
1: हाँ जी
0: जी बिल्कुल। तो प्रीति आपके बच्चे भी हैं?
1: जी मैम
0: कितने बड़े हैं?
1: जी, एक 15 साल का और एक 14 साल का।
0: ओके, तो स्कूल जाते होंगे?
1: हाँ जी, स्कूल में पढ़ रहे हैं।
0: हाँ, और आजकल तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो छुट्टियां हो गई होंगी,
1: हाँ जी
0: तो आजकल तो बस घर में धमा चौकड़ी हो रही होगी दोनों
1: हाँ
0: भाइयों
1: जी,
0: में।
1: बस फिलहाल तो घर पे ही है और अपने मामा के यहाँ कह रहे हैं जाना वो।
0: अच्छा, अगर अभी गए तो आपको आराम मिल रहा होगा।
1: जी
0: ठीक है प्रीति, आज रेडियो सखी के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: मैम, राज फिल्म का कोई सा।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलू से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UBES up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. Inglass AI First University. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarship for Uttarakhand domiciled students. Applications close 29 April. Apply now at ubes.ac.in.
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29th April. Apply now at upes.ac.in.
4: Hello.
5: मैं महराज बात कर रही हूँ।
4: महराज, आपका रेडियो सखी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
5: जी मैम,
4: कैसे हो आप?
5: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
4: हम भी बहुत अच्छे।
5: और मैं अपने मायके आई हुई हूँ।
4: अरे चलिए, अच्छी बात है। मतलब आप भी जैसे बच्चे छुट्टियाँ मनाते ना समर वेकेशन की, तो आपकी भी छुट्टियाँ चल रही।
5: जी मैं परसों ही अपने घर आई हूँ।
4: गुड गुड, अपने घर आना हमेशा सबको अच्छा लगता है और सब सोच रहे हम कितनी जल्दी जल्दी जाएं।
5: मैम मैं तो बस जल्दी से आ नहीं पाती क्योंकि मेरे ससुराल में रहना सहना ही ऐसा है, बीमार रहती है दादी भी और सास भी।
4: कोई बात नहीं, जल्दी नहीं आ पाए पर अभी आए ना, देर आए दुरुस्त आए कहते ना, तो आप अभी आ गए तो आप उसको एंजॉय करो।
5: जी मैम जी, बस रहने के लिए नहीं भेजते, वैसे तो अच्छी रहती हूँ मैं 1-2 दिन के लिए।
4: अच्छा, अभी रहने के लिए आए आप?
5: बस 1-2 हफ्ता ही रह सकती
4: हूँ। चलिए कोई नहीं, मायके में तो आप जितने दिन रहो वो कम होते हैं, तो जब मौका मिले तब आ जाए तो बहुत अच्छा है।
5: और बताओ आप, क्या आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं?
4: हमारे आकाशवाणी परिवार में भी सब अच्छे हैं, सब आप लोगों की वजह से ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि हमारे लिसनर्स हैं तभी हम।
5: जी मैम जी बिल्कुल।
4: अच्छा लगता है कि हमारे लिसनर्स हमें रिस्पांस देते हैं, बताते हैं हमें कि उनका प्रोग्राम कैसा लगता है, बस हमें यही चाहिए जिससे हम मोटिवेट होते रहे और अच्छा करते रहे।
5: जी मैम, हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमारे लिए इतनी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं, बनाते हैं।
4: अच्छा, आपने परिवार की बात करी कि आप यहाँ आते हो और आप बता रहे हो कि आपकी दादी और सासू माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो हम मेहरा से जानना चाहेंगे कि हम अपने रिश्तों को खास बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हो कि आपके रिश्ते खास बने, कैसे बनाते हैं आप खास?
5: जी वैसा समझदारी से ही काम लेना चाहिए कि अगर कोई कुछ गुस्से में बोल भी रहा तो सुन लो, और वैसे भी उनकी देख रेख करके भी रिश्तों में मिठास आता है। ये नहीं है कि कोई जहाँ तड़फ रहा तो तड़फ रहा, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए।
4: मतलब हमें अपने गुस्से को शांत रख के उनकी हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो हमको सुन लेना है, हमें पलट के जवाब नहीं देना।
5: जी मैम, ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ हमको बोलना है और कहाँ नहीं बोलना।
4: बिल्कुल, कहाँ पे हमें किस तरह से अपने रिश्तों को बचाना है, किस तरह से उसकी खूबसूरती बनाए रखनी है, वो हमें समझना है।
5: जी मैम।
4: महराज, रेडियो सखी के माध्यम से आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
5: कुमार सानू की आवाज में और अनुराधा पौडवाल की आवाज में कोई भी सॉन्ग सुनवा दियो।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29th April. Apply now at upes.ac.in.
4: हेलो रेडियो सखी
5: मैम। आदाब।
4: आदाब, हमसे कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं सानिया मलिक बात कर रही हूँ। कैसे हो किरण जोशी मैम आप?
4: हम अच्छे हैं, आप कैसे हो सानिया?
5: हम अच्छे हैं और आपसे बात करके तो और भी अच्छे हो गए।
4: थैंक यू सो मच। क्या कर रहे थे सानिया आप अभी?
5: मैम हम तो अभी एक साथ इकट्ठे बैठे थे मैं और मेहराज।
4: और बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना साथ की कंपनी?
5: जी मैम इंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को याद कर रहे हैं आकाशवाणी को।
4: थैंक यू सो मच हमें याद कर रहे। देखिए हम भी याद कर रहे थे ना, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है इसीलिए देखिए आपने याद किया और हम आ गए।
5: जी मैम सबसे खूबसूरत रिश्ता यही होता है प्यार का।
4: बिल्कुल,
5: एक दूसरे को समझ लेना।
4: जहाँ बिना कहे खूबसूरती हमारे रिश्तों में नजर आए ना, उससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं है।
5: जी मैम
4: है ना। तो आपने रिश्तों की बात करी तो आप बताइए आप रिश्तों को कैसे बनाती हैं खास?
5: जी मैम जैसे कि मुझे कोई बोल देता है गुस्से में और डांटता भी है तो मैं चुप रहती हूँ, सहन कर लेती हूँ वो बात, ज्यादा

0: कैसे जवाब नहीं देती उनके बोलने।
1: जी, बट कई बार पता है कई चीजों में हमें कोई गलत भी बोल रहा है ना, ठीक है आपने खामोश हो गए हैं, बट बाद में जब आपको लगे कि हाँ माहौल ठीक हो गया है और अब मैं अपनी बात रख सकती हूँ ना, तो अगर आप गलत नहीं भी हो ना तो आपको अपनी बात रखनी जरूर चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत नहीं थे और हमें उस चीज के लिए सुना दिया या डांट पड़ गई है, तो वो चीज
0: हाँ
1: कैरी
0: जी, हाँ जी,
1: फॉरवर्ड
0: हाँ
1: होती है
0: जी,
1: ना।
0: कई बार होता है फिर बाद में बोल देते हैं कि ये गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे आप समझ रहे थे।
1: हाँ, वो चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार फिर वही प्रॉब्लम आगे क्रिएट करती है, क्योंकि अगर हम चुप रह गए
0: हाँ
1: तो वो चीज
0: हाँ जी, हाँ
1: कंटिन्यू
0: जी,
1: होती है।
0: फिर ऐसा होता है कि हम खुद ही सहन करते हैं, फिर किसी से बातें अपनी कोई एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब शेयर नहीं करते, सहमे सहमे से रहते हैं और अकेलेपन में रहते हैं, फिर ऐसा
1: बिल्कुल
0: होता है हमारे साथ।
1: हाँ, और अगर हम अच्छे हैं, हम सही हैं ना, तो हमारे रिश्तों में जो खासियत है वो बनी रहती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें बहुत अच्छे से समझता है।
0: कुमार
1: जी सानिया, रेडियो सखी के माध्यम से हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सानू अल्का याग्निक की आवाज में कोई भी सॉन्ग सुना देना मैम।

0: हेलो रेडियो सखी,
1: नमस्ते मैम। दीदी
0: नमस्ते। हमसे कौन बात कर रहा है?
1: मैं राबिया बात कर रही हूँ मुजफ्फरनगर
0: जी राबिया, आपका रेडियो सखी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं राबिया आप?
1: से। किरण जोशी जी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक
0: हम
1: हूँ।
0: भी अच्छे हैं राबिया।
1: दीदी तुम मुबारक हो आपको भी।
0: आपको भी ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या कर रहे थे राबिया अभी आप?
1: दीदी जी, हम तो भी कॉल लगा रही थी नमाज पढ़कर। कह रहे थे 2 बजे ना, तब कॉल लग गया।
0: तो राबिया ईद की तैयारियां हो गई हैं?
1: हाँ जी, तैयारियां हो रही हैं।
0: ओके। इस ईद में आप सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं, साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना?
1: हाँ जी,
0: तो ये बताइए राबिया, रिश्तों को हम कैसे खास बना सकते हैं? क्या करती हैं आप?
1: रिश्तों जो हम खास बनाना चाहें ना, सबसे पहले तो यह है कि अच्छा ताल्लुक रखें और रिश्तेदारों को कुछ ना कहें, अपने आप को भी खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखें। यही है हमारी तलियता।
0: जी। और आपस में जब सभी हम रिश्ते निभा रहे हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि कहीं छोटी मोटी बात पे किसी का मन मुटाव हो जाए, तो आप क्या करते हो फिर?
1: छोटी छोटी बातों पे मन मोटा हो जाता है, लेकिन उस हमें समझना चाहिए कि हम उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, लेकिन सही तरीके से रहा करें, ना सही करते हैं।
0: जी बिल्कुल, अच्छी बात है राबिया। तो आज रेडियो सखी के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी जी, जैसा कि बकराईद का त्योहार आ रहा है ना, सब लोग वेलकम जा रहे हैं ना, तो इसलिए हम कुली फिल्म का भी सुनना चाहेंगे। मुबारक।

तो बहनों, ये था हमारा आज का रेडियो सखी कार्यक्रम। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से या पत्र लिखकर जरूर बताइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे रेडियो सखी के नंबर पर। हमारा रेडियो सखी का नंबर है 7088001382, यानी 7088001382। और बहनों, आपको बताते चलिए कि इस रेडियो सखी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम हर बुधवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच करते हैं, और जिसका प्रसारण हम हर गुरुवार दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम रेडियो सखी के अंतर्गत करते हैं। तो बहनों, आप सभी का हमारे रेडियो सखी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमसे कॉल करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने पसंदीदा फरमाइशी गीत सुन सकते हैं, और हमें आपकी कॉल का इंतजार रहता है। तो बहनों, हमसे ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए और अपनी बातें हमसे शेयर कीजिए। और अब घड़ी हमें इशारा कर रही है कि समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो अब अपनी दोस्त और अपनी सखी किरण जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।

0: प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, झोंकेदार हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य में चल रही पवित्र चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यात्रा शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है और अब तक लगभग 23,65,000 से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से प्रतिदिन यात्रा मार्गों और धामों में उमड़ रही भीड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि धामों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को लगातार और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।
3: धाम यात्राएं जो चल रही है, हम जैसे कि आप अवगत होंगे कि हमारे जो चार धाम थे उनकी ओपनिंग को अब महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है और साथ साथ हेमकुंड साहब की भी जो है कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो अभी तक कुल 23,65,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने श्री धामों के दर्शन किए हैं, जो कि ये विगत वर्षों की भांति काफी अधिक संख्या है। और यात्रा का गढ़वाल पुलिस का और ये ध्येय है कि जो यात्रा जो हो वो सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए हम डे टू डे बेसिस पे हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भी तीर्थयात्रियों की जो संख्या है श्री धामों पर उसका हम आकलन कर रहे हैं, तदनुसार वहां पे व्यवस्थाएं भी की जा रही है।
2: देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और दून विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित हो रहा है। सम्मेलन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को मुख्य सचिव आनंद वर्धन संबोधित करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और ब्रिक्स उपशेरपा शंभू एल हक्की कार्यक्रम में मुख्य संबोधन देंगे। पर्यावरण अनुसंधान और हिमालय

0: जलवायु अध्ययन के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखने वाला देहरादून इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होंगे। इसमें हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। नमाजियों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। ईद अल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। प्रदेश में भी ईद पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और आयुर्वेदिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योग गुरु केवलानंद जोशी ने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की प्राचीन पद्धति है। नियमित योगाभ्यास से तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि योग मानसिक एकाग्रता बढ़ाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में भी सहायक है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर एंजल पटेल ने कहा कि आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि योग दिवस को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को, और 21 जून से पूर्व हम जनपद में पूर्व की भांति विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, विभिन्न योग सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से एक कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में किया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने योग सत्र का लाभ दिया। इसी प्रकार हम जनपद में अन्य कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित कराते रहेंगे और 21 जून को एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
0: मौसम विभाग ने आगामी 3 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं कल उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज हवाओं, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित जिलों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की अपील की है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से तेजपाल सिंह।
0: पिथौरागढ़ जिले में शासन प्रशासन द्वारा शुरू की गई हेलो हेल्प हेल्पलाइन आम लोगों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनती जा रही है। इसके माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्रतिदिन करीब 15 से 20 शिकायतें दर्ज हो रही हैं और अब तक 200 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 25 मामलों का पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है, जबकि आधे से अधिक शिकायतें निस्तारण के अंतिम दौर में हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान करना है।
4: जो हेल्पलाइन यहाँ पर जारी की गई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और लगातार उसमें जो आम जनमानस की तरफ से शिकायतें उसमें दर्ज हो रही हैं, इसमें लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जिनका निस्तारण होने के उपरांत शिकायतकर्ताओं ने अपनी संतुष्टि भी उसमें व्यक्त की है, क्योंकि शिकायतें उसमें लगातार आती जा रही हैं। तो पूरा प्रयास यह है कि उनका टाइमली डिस्पोजल किया जाए और संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाए। अभी जो

0: 200 के करीब में शिकायतें दर्ज हो गई हैं और उसका निराकरण किया जा रहा है। निराकरण की स्टेज में भी काफी सारी शिकायतें हैं और हम लगातार संवाद बनाए हुए हैं जो शिकायत करता है। हम तो प्रयास ये है कि जल्द से जल्द अच्छा निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो और संबंधित शिकायतकर्ता को अवगत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि, झोंकेदार हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: बम्बई का बाबू, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।
1: Your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
0: फिल्म संगीत का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम बंदिनी। गीत है शैलेंद्र का और संगीत एच डी बर्मन का है।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत. आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम बेटी बेटी. गीत है हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है.

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल

0: में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
7: हाँ माँ।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
1: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोहो, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
1: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंचे जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
8: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
9: जी साहब।
8: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
9: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ।

0: राइफल की बट और हथगोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
1: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
8: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. Eid ul-Azha, festival of sacrifice, being celebrated with religious fervor across the country. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. President Draupadi Murmu today urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim police in maintaining law and order and in disaster management.
9: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
8: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. The announcement was made during the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok yesterday in the presence of President Murmu. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today assured resolution of all grievances of students regarding discrepancies and technical glitches in CBSE Class 12 examination evaluation process and its newly introduced on-screen marking OSM system. Mr. Pradhan said the OSM system is a progressive instrument aimed at ensuring greater transparency. He was speaking to media after holding a meeting with CBSE officials in New Delhi. The minister said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability is maintained at all levels.
10: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
11: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
8: The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said the country has ample food stocks due to relentless efforts of the country's hard-working farmers. Mr. Chauhan

0: was speaking at the inaugural ceremony of the two-day national conference on agriculture for Kharif campaign 2026 in New Delhi today. The minister highlighted that the estimated food grain production in the country this year is over 376 million tons, which is 5.3% higher than last year. The minister also said the two-day event will help in setting a roadmap for the welfare of the Kharif agriculture sector. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Spanish counterpart, Jose Manuel Alvarez, on the sidelines of the informal meeting of the EU Foreign Affairs Ministers, Gymnich, in Cyprus today. In a social media post, Dr. Jaishankar said the meeting involved discussions on the next steps for trade, technology, defence and people-to-people ties between India and Spain. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Alvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
1: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister Office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013-18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for three states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief, and Keval Singh Dhillon will be the new President of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP President. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Barganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in three holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, eight people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervour and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
2: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Idgah. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
3: Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
4: In Bhopal, thousands gathered at the historic Taj ul-Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Jairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
7: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
8: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
5: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
5: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
10: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
5: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
11: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के

0: मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फीन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अज़हा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
2: आज श्रीलंका में ईद उल अज़हा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही

0: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। सैनिक साथियों, देश की आज़ादी के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित किया, मन में जोश जगाने के लिए इस तरह के लेखन कार्य किए। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हैं स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथी की। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब हैं।

सैनिक साथियों विजय सिंह पथी को भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म बुलंदशहर जिले के गांव गुठाकली कला में हुआ था। इनके दादा बुलंदशहर के मालागढ़ रियासत के दीवान थे, जिन्होंने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। पथिक के पिता हमीर सिंह गुर्जर, उन्होंने भी क्रांति में भाग लिया था, और इनकी माँ कमला कुमारी और इनके परिवार इनका इस देशभक्ति भावना का बहुत ही गहरा असर पड़ा और ये देशभक्ति गतिविधियों में भाग लेने लगे। युवा अवस्था से ही विजय सिंह पथिक का संपर्क रास बिहारी बोस और सचिंद्र सिंह सान्याल से हो गया। चर्चा भी जारी है, सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

0: AIR at 90. सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1915 में फिरोजपुर षड्यंत्र के बाद इन्होंने अपना असली नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया और इन्होंने गांधी जी से पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाने का काम किया। वर्ष 1912 में ब्रिटिश सरकार ने देश की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने का निर्णय किया। ऐसे में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, ऐसे में पथिक भी शामिल थे। सन 1915 में राजबिहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया सशस्त्र की विद्रोह किया जाए, जिसे इतिहास में गदर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विजय सिंह पथिक भी शामिल रहे और इन्होंने राजस्थान में इस क्रांति को संचालित किया। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार भी किया और नज़रबंद भी किया गया। इनके बारे में और भी हम बातें करेंगे, पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगरानी

सैनिक साथी विजय सिंह पथिक निस्वार्थ भाव से आजीवन देश की सेवा करते रहे। ये क्रांतिकारी होने के साथ साथ ही लेखक और पत्रकार भी थे। इन्होंने अजमेर से नव संदेश और राजस्थान संदेश के नाम से हिंदी अखबार भी निकाले और राष्ट्रीय पथिक के नाम से ये देशभर में लोकप्रिय हुए। गांधी जी ने इनके बारे में कहा था कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करता है। पर सैनिक साथियों, आज ही के दिन 28 मई 1954 को भारत माता की सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनकी देश सेवा को आज भी याद किया जाता है। इनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। विजय सिंह पथिक को हम नमन करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप स्वाति कपिल से समाचार सुर्खियां सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। कहा, वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज असम भ्रमण के दौरान गुवाहाटी स्थित लोकभवन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल केवल एक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज शाम उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। वे इस दौरान राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों तथा संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श और मंथन करेंगे। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है और मौसम विभाग ने आगामी 3 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 36 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है। आप सुन रहे थे समाचार सुर्खियां।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये सौरथल का याग्निक और उदित नारायण की फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। गीत था इब्राहिम अश्क का और संगीत राजेश रोशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और संजीवनी की, फिल्म का नाम है करीब। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये शब्द रचना है राहत इंदौरी की।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों को। फिल्म का नाम था कच्ची धागी। श्रोताओं, गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है केदारनाथ। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

आइए सुनते हैं सूर्य कपूर, श्रेया घोषाल की आवाज में ये फिल्म का नाम है देश। शब्द है नासिर फराज के और संगीत राजेश रोशन का है।

0: आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत, आवाज़ें थी उदित नारायण कमाल खान की और साथियों की। फिल्म का नाम था तेरे नाम। आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अगला गीत, शान श्रेया घोषाल सुजय डिबेलो और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है वांटेड, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: Career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

नदीम शरवण के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे सोनू निगम, साबरी ब्रदर्स और साथियों को। फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम है विवाह।

0: ये स्वर थे श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। फिल्म का नाम था विवाह। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोतम, इसी के साथ गाने नए तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.5 MHz पर। इस समय शाम के 4 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस विशिष्ट अंक में मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण करने की इस यात्रा में फौजी भाइयों के लिए सदैव समर्पित रही है, इसलिए नित्य प्रति विभिन्न प्रसारणों के माध्यम से सिपाहियों, चाहे फिर बॉर्डर्स पर तैनात हों या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ, आकाशवाणी ने हमेशा ही सिपाहियों और उनके परिवारों के बीच एक भावनात्मक सेतु का कार्य किया है। और आज इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकेंड इन कमांड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कैप्टन अभिराम पंकज सेकंड इन कमांड 139 बटालियन CRPF डिप्लॉयड हैं मंडोली जेल कॉम्प्लेक्स में। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कमांडेंट अभिराम पंकज का। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपको 90 वर्ष पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं CRPF की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। और ये मैं एक प्योर नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए, बचपन से आकाशवाणी को सुनते हुए आज आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठ कर बातचीत करने का अवसर मिला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने समय निकाला, आप स्टूडियो पहुँचे हैं और आज ना जाने कितनी ही बातें ऐसी होंगी जो आकाशवाणी से जुड़ी होंगी और जो आपके सफ़र से जुड़ी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि फौजी भाइयों के लिए तो नित्य प्रति हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने प्रसारणों के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट भी करते हैं, संदेश भी हम तक आते हैं, लेकिन जब आप जैसे वीर हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो यकीन मानिए कि फिजाओं का रंग बदल जाता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के माध्यम से जब हम जन जन तक पहुंचते हैं, भारतीय जनता तक पहुंचते हैं, चाहे फिर वो रेडियो सेट्स के माध्यम से हो या मोबाइल ऐप के माध्यम से हो, तो हर सुनने वाला यही सोचता है कि काश मैं भी आप जैसे वीरों के पद चिन्हों पर चल सकूं। सबसे पहले आपके से ये जानना चाहती हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ आप कार्यरत हैं, तैनात हैं, अलग अलग जगहों पर आपकी आज तक पोस्टिंग हुई है, अगर हम CRPF की बात करें तो आप किन शब्दों में CRPF को परिभाषित करना चाहते हैं?
1: CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में स्थापित हुई और विगत कई दशकों में आज CRPF हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रूप में रहे और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है CRPF। जब भी सारे जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके रोल्स डिफाइंड हैं, जैसे BSF इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पर है, CISF वाइटल इंस्टॉलेशंस में है और SSB इंडो नेपाल बॉर्डर में है, वैसे ही CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। तो CRPF ने आप देख कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सौराष्ट्र से लेकर सिलचर तक CRPF ने के फुटप्रिंट्स आपको मिलेंगे। और आज CRPF ने जो काम छत्तीसगढ़ में किया नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर का एक उनका एक प्रण था, तो वो एक अपने आप में एक एपिक ऑफ सागा एंड सेक्रीफाइस, एपिक सागा ऑफ सेक्रीफाइस है वो, जिस तरीके का CRPF ने काम किया है। और ऐसा वही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो CRPF को परिभाषित करने की बात मैं कहता हूँ कि CRPF सबसे वर्सेटाइल सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी फोर्स है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बल का पार्ट हूँ, मैं इस बल का हिस्सा हूँ और मुझे यहाँ कुछ करने का मौका मिला है
0: जी। होंगी आपसे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि जितने हम आतुर हैं आपसे बात करने के लिए उतने हमारे श्रोता भी बेताब हैं, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं आकाशवाणी के माध्यम से कि हम किसी के लिए रास्ता बने, किसी को रास्ता दिखाएं। और आप जैसे योद्धा जब यहाँ स्टूडियो में मौजूद होते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी का कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कहा जाता है, बदल देते हैं। तो ये मंजर जो है एकदम नया है हर बार की तरह। और आप श्रोतागण भी अपने संदेश भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9868106

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। और हम यही कहेंगे कि कोई जानता है कि वो दुनिया में क्या चाहता है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ तो दुनिया में आता है। कुछ उद्देश्य हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमें ना रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद भी नहीं जानते कि वो रास्ते चाहते हैं कि हम उन रास्तों पर चलें। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज। कमांडेंट अभिराम पंकज, आप यू आर ऑनर्स इन केमिस्ट्री, MBA इन फाइनेंस। कभी सोचा था कि आप CRPF ज्वाइन करेंगे?
1: नॉट एग्जैक्टली CRPF। पढ़ाई लिखाई ऐसा था, मैं बिहार में पैदा पला बड़ा बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई को हमेशा मैंने एक जर्नी के तौर पे देखा कि आप पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करते कि आप वो माध्यम हो कहीं किसी जगह पहुंचने का। ये

0: सीआरपीएफ ऑर्गेनिकली हुआ, मैं पढ़ता रहा और एक रुझान था वर्दी की तरफ, एक अट्रैक्शन था बैक ऑफ द माइंड एज अ चाइल्ड. आपको कई बार ही लगता है यूनिफॉर्म सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड में था. बट पढ़ाई अपनी तरफ हो रही थी और ये साइड बाई साइड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और ये हो गया. सो इसके लिए कुछ बहुत अलग कोशिश या फिर मेरे एम में था ऐसा बिल्कुल नहीं था. हाँ, एक यूनिफॉर्म के लिए रुझान था, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक.
1: क्या बात है. आपको किस माध्यम से पता लगा कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं? दोस्तों ने बताया, किसी नाते रिश्तेदार ने बताया, कहीं न्यूज़पेपर में देखा नोटिफिकेशन? क्योंकि जब वो मोड़ आता है ना, तो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आता है, सीआरपीएफ भी आपके जीवन में ज्वाइन करने के लिए टर्निंग पॉइंट है. तो क्या माध्यम था जिससे आपको पता लगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जीवन में?
0: मैं बहुत भाग्यशाली था. मेरे फादर बड़े अवेयर फादर थे. वो खुद एक सरकारी कर्मचारी थे, बिहार सरकार की सेवा में लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे. तो बहुत ही अवेयर फादर थे एंड उनको अपने समय से आगे उनकी सोच थी. तो उस ज़माने में, अब तो इंफॉर्मेशन की क्रांति है, चारों तरफ आपको मोबाइल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और हिंदी में रोज़गार समाचार आता था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ था और उस पर वो देखते रहते थे कि हाँ बच्चा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे जा सकता है. और कहीं ना कहीं तो थोड़ी उनकी हेल्प, थोड़ी अपनी, और तुम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मालूम पड़ा और फादर ने ही बताया कि ऐसा है और आप इसमें आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं.
1: जी, तो फिर आपने एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आपने एक बकायदा एक फॉर्म भरा होगा जिसके अंतर्गत आपको फिर एग्जामिनेशन के लिए बुलाया होगा. वो एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसी थी, क्या थी, ये बताएं.
0: 2004 तक ये एग्जामिनेशन CPOs कॉन्डक्ट करती थी, जो 2005 के बाद से UPSC ने ले लिया. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हर एक साल, और CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट्स के लिए एग्ज़ाम निकालती हैं. तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3-4 पेपर्स होते हैं एंड फॉलोड बाई फिजिकल, जहाँ पे यू आर सपोज टू आपका जो रनिंग है और बाकी जो आपकी फिजिकल चीज़ें उनकी टेस्टिंग करते हैं वो. तो एक अच्छा सा एग्जामिनेशन होता है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन आपका आपकी आपकी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी जानकारी के अलावा, आपका फिजिकल फिटनेस भी दुरुस्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. और UPSC की साइट से आपको जानकारी मिलती रहती है कि कब एग्जामिनेशन का पूरा कैलेंडर है, साल में कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जामिनेशन होगा. तो ये सारी जानकारी हमारे जितने युवा हैं उस पर नज़र बना के रख सकते हैं. आज की डेट में बहुत आसान है.
1: जी, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत CISF, BSF और CRPF.
0: नहीं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक रोल डिफाइंड है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, SSB इंडो नेपाल बॉर्डर, ITBP इंडो चाइना बॉर्डर, CRPF ओनली इंटरनल सिक्योरिटी. सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आल्सो, बट वो सारे केवल VIP सिक्योरिटी और अपना जो एंटी टेररिस्ट रोल में, और असम राइफल्स आल्सो, दैट इज पार्ट ऑफ दिस.
1: जी, तो क्या सबके लिए एक ही प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, या फिर आपको अलग अलग रूप से चयनित करना पड़ता है?
0: इसमें NSG और असम राइफल्स का प्रोसेस अलग है, वो वहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्शन नहीं होती है. बाकी ये जितने CISF, CRPF, ITBP, BSF और इन सब की सिलेक्शन उस UPSC के एक नोटिफिकेशन और एक एग्जामिनेशन के माध्यम से होती है. और इनमें जो सीट्स होती हैं वो डिसाइड करता है जो उनका जो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, उसके बेसिस पे वो सीट निकालते हैं. तो एंट्री लेवल है, जो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर के रैंक में जाते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जाते हैं.
1: जी, तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहली खबर, खुशी की खबर आपने किसको सुनाई?
0: मैं MBA करने के बाद में मैं एक बैंक में काम करने लगा था एंड तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब ये मुझे खबर मालूम पड़ी. तो ऑफकोर्स दोस्तों से बातचीत हुई, और उस जमाने फ़ोन नया नया आया था, तो तभी इनकमिंग आउटगोइंग के पैसे लगते थे. तो उस पर बातचीत हुई, दूरभाष फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बताया, तो बधाइयाँ आनी शुरू हो गई. और बिहार में आप सरकारी सेवा में जाना आज भी और गौरव की बात मानी जाती है, और तब उस जमाने आज से 22 साल पहले ये बहुत बड़ी बात. तो काफ़ी बधाई संदेश आने लगे, और फिर यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे बैंक

0: में सारे बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं तो कॉरपोरेट में काम कर रहा था और ये एक सरकारी सेवा में मेरा चयन हुआ था, तो सारे बहुत खुश हुए। तो ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया यहाँ पर और उनके साथ सेलिब्रेट किया
1: वाह क्या
0: जी।
1: बात है। घर पे किस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने खुद कहा कि पिताजी क्योंकि सरकारी नौकरी में रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अवगत कराया कि सरकारी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जब प्रथम बार आप अपने माता पिता को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि आप अब एक मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, बहुत सुखद पल होता है किसी भी माता पिता के लिए। जब आप ये खबर लेके गए, वो क्षण जो था उस वक्त उनके चेहरे पर क्या भाव थे?
0: निसंदेह है, बहुत खुशी की बात है। मेरे मेरे मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे लिबरेट किया कि जो आपके मन में है वो करो, आपकी मंजिल आप खुद चुनो। और जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान इस तरफ है, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद मैं इधर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बहुत खुश हुए कि हाँ देश की सीमा में जाए और अपना अच्छा करे। तो निसंदेह माता पिता दोनों उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, दोनों बहुत खुश थे और ऑफ कोर्स मैं भी काफी खुश था
1: जी,
0: जी।
1: निश्चित रूप से जब आपको रास्तों ने चुन लिया हो कि आपको कहाँ पहुँचना है, ऐसे सुखद बात और कोई छू नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो नियति, जिसको हम सभी मानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन वो लोग जिनको रास्ते चुनते हैं वो तो अपने आप को ज़्यादा तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ये रास्ता चाहे पथरीला हो या सहल हो, मुझे चलना है और मंजिल पर पहुंचना है। अगर अतीत के और पीछे जाएं, यानी कि आपके MBA या फिर आप मान लीजिए आपके जब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, उससे भी पीछे की अगर बात करें, आपके स्कूल के दिन किस किस प्रकार के आप बालक हुआ करते थे? शैतान थे या बहुत डिसिप्लिन थे? और वो जीवन की, यानी कि आपके बचपन की कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि अगर वो ना हुई होती तो शायद रास्ता CRPF तक पहुंचने का इतना सहल ना होता?
0: बहुत बहुत ही उम्दा सवाल किया है आपने। ये आप जब भी बचपन में तो ऐसा आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मैं बचपन से ही हैप्पी गो लकी था। मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं था, बट लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करके और मैं अपनी क्लास में एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता था। खेल कूद में मैं बहुत आगे रहता था, तो जितने टीम स्पोर्ट्स हो, आप किसी भी परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में रहें या फिर शहर में रहें, तो मैं जहाँ भी मौका मिलता था मुझे, कबड्डी से लेकर फुटबॉल हो क्रिकेट उन दिनों, आज भी काफ़ी पॉपुलर है और उन दिनों भी बहुत लोकप्रिय स्पोर्ट होता था, तो मैं खेलता था। तो मुझे लगता है कि जो ये स्पोर्ट्स का जो एक नींव रखी जाती है बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के सर्वांगीण विकास में। वो आपको आपकी टीम स्पिरिट और वो जो भावना आपके अंदर जो स्पोर्ट्स पैदा करती है, उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। आप उसके बाद वो आप किसी भी करियर में जाएं, अगर स्पोर्ट्स आपके साथ में है तो आपका व्यक्तित्व एक डिफरेंट, एक
1: अलग
0: अलग
1: तरस
0: अलग
1: निखर
0: अलग
1: कर आता
0: तरीके
1: है।
0: का निखर कर आता है। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जो आउटडोर के प्रति जो मेरा मेरा समर्पण था या फिर जो मेरा लगाव था, वो मुझे बहुत हैंडी रहा CRPF में भी। यहाँ ज्वाइन करने के टाइम में भी मुझे बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, मुझे
1: एडिशनल
0: अपने,
1: तैयारी जिसे बच्चे
0: हाँ
1: अक्सर
0: बहुत
1: करते हैं कई
0: मशक्कत नहीं
1: फोर्सेस
0: करनी
1: ज्वाइन
0: पड़ी।
1: करने से
0: उसके
1: पहले।
0: बाद में भी ये चैलेंजिंग था ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे भी मुझे, और फिर जो टीम के साथ काम करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, आज जवानों के साथ हो, मेरे साथी अधिकारियों के साथ हो, तो एक जो इंटरपर्सनल स्किल और जो टीम स्पिरिट की जो भावना आप गेम्स आप में जो इनकलकेट करती है, वो अद्वितीय है, वो अनुपम है
1: जी
0: जी।
1: जी तो CRPF तक का रास्ता सहल किया और उसके बाद CRPF में रहते हुए, यानी कि अपने सर्विस काल में भी कहीं ना कहीं, चाहे वो डिसीजन लेना हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, अपने साथियों को मोटिवेट करना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं खेलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन काल से, यानी कि अपने बाल काल से ही जो है आप खुद पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए।
0: जी।
1: जी तो होंगी आपके साथ और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आतुर हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनने के लिए। और तमाम बच्चे, यूथ या देश के वो सैनिक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सिपाही, एक वीर यहाँ पर आकर बैठता है इस कुर्सी पर, तो कहीं ना कहीं वो गाथा सुना रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है सभी अपने फेलोज की। क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रा भले ही उसके, कहते हैं ना कि ऊंची नीची पगडंडियों से आपने यात्रा पूरी करी हो, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने की सबकी एक जैसी, संघर्ष एक जैसे, मेहनत एक जैसी, बस फर्क इतना कि आपकी बुद्धि ने आपको उस वक्त कौन सा निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया, आप कितने एबल बॉडीड हैं, आप कितने सक्षम हैं, डिसीजंस लेने में या अपने कार्य को पूर्ण करने में, शायद ये अलग होता होगा हर व्यक्ति का, हर सोल्जर का, हर सिपाही का।

सैनिका। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप ना जाने आज यहाँ एफएम रेनबो के स्टूडियो में बैठे कितनों की गाथाएं, कितनों की कहानियां उसका सुमिरन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके मन में अगर कोई भी बात है शेयर कीजिए हमारे साथ। हम यही कहेंगे कि देश के प्रति जो सच्ची भावना, सच्ची लगन है, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीर हमें हमारे प्रगति मार्ग, विजय मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर हमें। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल। और प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जी मौजूद हैं, कमांडेंट अभिराम पंकज, जिनकी यात्रा को हम उनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं। और कहते हैं कि किसी की यात्रा कभी कभी ना आपकी यात्रा बन जाती है, क्योंकि आपको जीने का सबब सिखाती है, आपकी राह को और भी आसान कर देती है। और जब राह आसान हो जाती है तो मंजिल तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान। कमांडेंट अभिराम, CRPF, जब आप CRPF का नाम लेते होंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से आपका जो सीना है वैसे ही फूल जाता होगा, चौड़ा हो जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो अगर आप से मैं CRPF के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूथ इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और बहुत से अनभिज्ञ भी होंगे, और अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF, तो सबसे पहले हम CRPF को थोड़ा सा और

0: हम चाहेंगे कि हमें आप और जानकारी दें सीआरपीएफ के बारे में।
1: सीआरपीएफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सारी फोर्सेस में। और इस सीआरपीएफ की जो जर्नी रही है पीछे 1939 से लेकर अभी तक, तो ये जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस एंड वैलर रही है। चाहे वो 21 अक्टूबर 1959 में जब ही चाइनीज ट्रूप्स के साथ में हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ ने लड़ाई लड़ी थी और उसमें हमारे सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज भी 21 अक्टूबर को पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर एक साल। फिर 1965 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरे ब्रिगेड के अटैक को रिपेल किया था और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और वैलर का परिचय दिया था। तो 9 अप्रैल को सरदार पोस्ट की याद में वैलर डे मनाया जाता है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ ने इन तीनों थिएटर्स जम्मू कश्मीर, एलडब्ल्यूई थिएटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत एग्जेम्पलरी काम किया पीछे कई दशकों में। तो आज हिंदुस्तान हमारा नक्सल मुक्त हुआ अभी, तो वो सीआरपीएफ का इसमें जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व योगदान रहा है। इस मैं एक बात कहना चाहूँगा, सीआरपीएफ अपने आप में एक मिनी इंडिया है। हम इंडिया को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो सीआरपीएफ एक मिनी इंडिया। आप कोई भी एक छोटे से छोटा क्रॉस सेक्शन ले लें, किसी भी बटालियन को या किसी भी बटालियन के अंदर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज हैं उनको आप ले लें, तो सीआरपीएफ उस छोटी सी कंपनी में आपको पूरे देश, पूरी प्रांत के रीजन रिलीजन के लोग मिल जाएंगे और सब एक बार जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो सीआरपीएफ के सोल्जर्स होते हैं, वो जवान होते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही गैलेंट फोर्स रही है और इसका रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम होता रहा है। सीआरपीएफ को मुझे बताते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। सीआरपीएफ को 1 अशोक चक्रा, 10 कीर्ति चक्रा, 39 शौर्य चक्रा, 200 से ज़्यादा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और तकरीबन 2027 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिले हुए हैं आज तक। तो ये इनके जो बलिदान का, सीआरपीएफ के बलिदान और योगदान का जो रिकग्निशन रहा है गैलेंट्री मेडल्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सीआरपीएफ को एक काफ़ी वर्सेटाइल और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटी में एक सॉलिड भूमिका निभाने वाली फोर्स के रूप में रखती हैं।
0: जी निश्चित ही आपकी बातें सुनने के बाद हमारे जितने भी श्रोता हैं जो चाहते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जाएं सीआरपीएफ ज्वाइन करें, उनके लिए आपने रास्ता बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और हम हमेशा कहते हैं कोई तो ऐसा हो जो मेरा मार्ग प्रशस्त करे, जो मुझे सच्ची राह दिखाए, तो आज आपने वो सच्ची राह उन तमाम बच्चों को दिखाई है जो ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ। सो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कितनी तैयारी करनी है। जैसे कमांडेंट अभिराम ने कहा कि वो बचपन से ही खेला करते थे और ये खेलना आज तक जारी है, और आपको लगता है कि ये जो खेल रहे हैं आप आज तक, कौन कौन से गेम्स वैसे आज तक जब खेला करते थे और आज भी खेल रहे हैं, कौन कौन से गेम्स हैं?
1: देखिए सीआरपीएफ में हमारा चूंकि मूवमेंट काफ़ी फ्रिक्वेंट और अनसर्टेन रहता है, तो मूवमेंट है और कहीं छोटी सी छोटी जगह पे आप सेटअप कर लें, तो सबसे अच्छा गेम जो सेटअप करना है वॉलीबॉल होता है। तो आपने नेट लगाया, अपना एक कोर्ट तैयार किया और आप वॉलीबॉल खेलने शुरू हो जाते हैं। तो शुरू से लेकर अभी तक अभी भी जवानों के साथ में, तो जब भी मौका लगता है तो वॉलीबॉल आप खेलते हैं। उसके अलावा जब मौका लगा फुटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला, टग ऑफ वॉर हमारे यहाँ एक काफ़ी पॉपुलर गेम है, जो आपस में टग ऑफ वॉर रस्सा कस्सी का जो गेम होता है वो, उससे काफ़ी टीम स्पिरिट बनती है और लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़े उत्साह के साथ खेला जाता है। तो ये सारे गेम है और ये सारे गेम में आज भी, मतलब ये अनवरत मेरा चल रहा है। तो चाहे मैं एक छात्र के रूप में जब मैं था तब, या फिर आज मैं एक अधिकारी के रूप में हूँ, तो मैं पूरी भावना के साथ इन सारे स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ और मैं खेलता हूँ जवानों के साथ में।
0: बिल्कुल, जब सहकर्मियों के साथ खेलते होंगे तो आत्मीयता तो वैसे ही वहाँ बन जाती होगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेचर के हमारे जो सिपाही हैं या फिर ऑफिसर्स हैं जो भी खेलते हैं, जिन्हें भी शौक है, तो कहीं ना कहीं बस एक ही भावना होती होगी, वो है खेल की
1: भावना।
0: क्या बात है, तो निसंदेह आपसे होंगी और भी बातें, क्योंकि कमांडेंट अभिराम हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और पूरा आधा घंटा है हमारे पास उनसे और भी बहुत सारी बातें करने के लिए। सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडेंट अभिराम पंकज, सेकंड इन कमांड और 139 बटालियन CRPF में आप कार्यरत हैं। कमांडेंट अभिराम पंकज, आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन क्लियर हुआ, आपको पता लग गया कि अब आपको CRPF ज्वाइन करना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा। ट्रेनिंग की प्रक्रिया कैसी रही, कहाँ थी और क्या कुछ अर्जित किया आपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से?
1: ये जो CRPF का जो बुनियादी प्रशिक्षण अधिकारियों का हो है, हमारे समय में वो बुनियादी प्रशिक्षण माउंट आबू में होता था। माउंट आबू में हमारा एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो माउंट आबू एक काफ़ी पिक्चरेस्क और काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है राजस्थान में, जो दिलवाड़ा के मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी हिस्टोरिकल और बहुत अच्छे मौसम वाला जगह है। तो वहाँ 52 वीक्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। और वो जो बुनियादी प्रशिक्षण है, एक सिविलियन को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है एक सोल्जर के रूप में। तो हमारी उस ट्रेनिंग में हमें अच्छा खासा फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना, हमारे वेपन हैंडलिंग पर ध्यान देना, हमारे जो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुद्दे थे, मिलिटेंसी हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी के मुद्दे हैं, इंडियन पिनल कोड्स है, कानून की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से एक साल वहाँ इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग का टाइम था
0: जी। तो जब आपने अपनी ट्रेनिंग समाप्त कर ली, उसके बाद प्रथम बार आपको कहाँ डिप्लॉय किया गया, कौन से सन में, क्या सन था वो?
1: 2005 में ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले जो मैं बड़ा, अगेन मैं बहुत लकी था, मेरी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। तो बिहार से होने के बाद बिहार में ही मेरी पहली पोस्टिंग होना एक बड़े कमाल की बात थी। और मैं एक साल के करीब में मैं बिहार में तैनात रहा। उस समय बिहार में तो बिहार थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावी था, और तो उन सारी जगहों पे मैं उन संवेदनशील जगहों पे तैनात रहा। और काफ़ी लोगों का प्यार मिला मुझे बिहार में, लोगों का, एक तो उस मिट्टी का होने के नाते, और दूसरा CRPF की बहुत इज्जत थी वहाँ पर, और CRPF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उन दिनों मैं याद करता हूँ, एक नक्सल अभियान में ये मधुबन एक छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा शहर है पूर्वी चंपारण में, मधुबन पे नक्सलियों का एक अटैक हो गया था, और उसमें CRPF की 45वीं वाहिनी ने नक्सलियों को खदेड़कर उनको मारा था। तो उस पूरे अभियान में 9 गैलेंट्री मेडल्स और 25 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंसिडेंट था। और CRPF ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत ही कमाल का काम किया था, जो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं। तो बड़ा ही कमाल का मेरे लिए बिहार का जो छोटा सा टेन्योर था ये, लिहाजा मैं बिहार थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं जम्मू एंड कश्मीर आ गया था 2007 में। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन जो भी टाइम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और पहली पोस्टिंग थी तो ऑफकोर्स बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था।
0: क्या बात है। फिर बिहार के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे, जम्मू कश्मीर के बाद फिर
1: जम्मू कश्मीर मैं दो मौक़ों पे रहा। उस समय जब मैं जम्मू कश्मीर 2007 में गया, तो जम्मू कश्मीर उस समय अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड का लैंड ट्रांसफ़र डिस्प्यूट की वजह से थोड़ी सी परेशानियां शुरू हुई थी। मैं बांडीपुरा में तैनात था, लेकिन मैं लोगों का बहुत प्यार मिला, और CRPF ने अपने आप को जो एक सिक्योरिटी ग्रिड में, जो वहाँ का सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, उसमें बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया हुआ था सिविल पुलिस के साथ में। तो CRPF का डिसिप्लिन, जो इनकी सिंसियरिटी और एक जो अनबायस रवैया है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो CRPF आज भी उसी तरीके से वहाँ काम करती है। मैं दूसरी बार भी CRPF के साथ में 2020 से 2024 में कश्मीर में तैनात रहा, जब भी रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद में मैं गया वहाँ पर। तो CRPF एक काफ़ी पॉपुलर फोर्स के रूप में है, एक जो मानवीय दृष्टिकोण वाले बल के रूप में उसको लोग देखते हैं, जानते हैं। तो और एक, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल

0: वर्सेटाइल फोर्स होने के नाते ना होने के अलावा सीआरपीएफ का एक मानवीय पहलू भी है। तो वहाँ मददगार करके एक हेल्पलाइन चलाती थी सीआरपीएफ, जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। और लोकल जो भी जम्मू कश्मीर के लोकल बाशिंदे हैं, उनकी किसी भी तरह की मदद के लिए सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती थी।
1: वाह क्या
0: तो
1: बात
0: एक काफ़ी अच्छा टेन्योर मेरा कश्मीर में रहा, और दो मौक़ों पे मैं गया। 8 साल मैं कश्मीर में मैं बिता कर आया, तो ये गोल्डन पीरियड रहा मेरे लिए।
1: है, वाह क्या बात है। उसके अलावा आपके क्या क्या क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो बिहार के बाद फिर जम्मू कश्मीर हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है कि उसने आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाया?
0: निसंदेह सीआरपीएफ, आप सीआरपीएफ में हम लोगों को 15 दिन कैजुअली और 60 दिन का अर्जित अवकाश हमें मिलता है, तो टोटल 75 दिन। तो आप उसके अलावा जो टाइम आप पूरे वर्ष का है, वो आप अपने परिवार से दूर बल के जवानों के साथ बिताते हैं, तो ये अपने आप में एक अनुभव है। और आप उसको जीते हैं, और आप एक परिवार से दूर एक अलग परिवार बनाते हैं। तो वहाँ आप अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, एक अच्छे कमांडर नहीं बन सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये भी मेरे लिए एक बहुत खासा अनुभव रहा है, जब मैं जवानों के साथ इतने साल, मुझे 22 सालों की सेवा में अच्छा खासा टाइम सीआरपीएफ के साथ बताया, अच्छे खासे रिलेशंस बनाए, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी एक बात बताइए कि पढ़ाई से बहुत प्रेम है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सर्टिफिकेशन पब्लिक रिलेशंस में किया आपने IIMC से, तो ये निश्चित रूप से आपने अपनी सर्विसेज दौरान किया है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये क्या चाहत थी दिल में कि जो आपको हमेशा बांधे रखती है एकेडमिक से, या यूं कह लीजिए कि आपकी सोच कहीं ना कहीं वो आयाम ढूंढती रहती है जो आपके काम को और भी ज्यादा स्थापित कर सके, तो क्या आपकी किसी, ये कहूंगी कि जो आपने सोचा हुआ था आपकी कर्तव्य निष्ठा है या आपकी इच्छा शक्ति है जिसने आपको बाध्य किया या मोटिवेट किया कि आप पब्लिक रिलेशंस में सर्टिफिकेशन करें?
0: जैसे अपने शरीर के विकास के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल विकास अपने उसके लिए आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो सीआरपीएफ में हमें गाहे बगाहे ट्रेनिंग के रूप में हमें लर्निंग कर्व पर रखने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान मुझे मौका लगा IIMC से एक सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, वो काफ़ी हैंडी भी रहा मुझे, क्योंकि सब्सिक्वेंटली मैं 2020 से 24 के दौरान मैं सीआरपीएफ का PRO भी रहा कश्मीर में, श्रीनगर में। उस दौरान सारे मीडिया के साथ, जो उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करने का मुझे मौका मिला। मैं यहाँ यह बात भी बताना चाहूँगा कि मीडिया में जब मैं वहाँ PRO की भूमिका में मैं कश्मीर में तैनात था, ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करने का
1: वाह
0: मौका
1: क्या
0: मिला।
1: बात है, 90 वर्षों के जो ये कार्यकाल है, यानी कि जो समर्पण की भावना लिए आकाशवाणी नित्य प्रति अपनी श्रोताओं तक पहुंच रहा है, तो उस कड़ी में आप भी सम्मिलित
0: जी,
1: थे।
0: तो श्रीनगर में जो ऑल इंडिया रेडियो की सिक्योरिटी थी वो सीआरपीएफ करती थी, वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के जो क्वार्टर्स थे वहाँ उसकी सिक्योरिटी सीआरपीएफ करती थी। तो कई बार तो स्टूडियो को के पास जाने का, उनको उनसे बातचीत करने का मौका मिला था, उनके अधिकारियों से स्टूडियोज। लेकिन आज स्टूडियो में हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, मैं आपके श्रोताओं से मुखातिब हूँ।
1: क्या बात है, चाहे परोक्ष रूप से हो अपरोक्ष रूप से, हम सदैव यही चाहते हैं कि हमें आकाशवाणी के सानिध्य में, इस परिसर में या इस परिसर के बाहर, जैसा कि आपने कहा कि आप नित्य प्रति ऑफिसर्स के साथ हों या फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ आप लगातार वार्तालाप में रहते थे, और कहीं ना कहीं हम अपने योगदान से ना अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक ही मंजिल है और वो है देश प्रेम। अच्छा, अब जब आप सीआरपीएफ में एक ऑफिसर बन गए, एक ऐसे ऑफिसर जो नेतृत्व कर रहा है, ना केवल सीआरपीएफ का लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, आप बहुत लोगों के रियल लाइफ हीरो जैसे कहते हैं वो जरूर बन गए होंगे, तो लोग आते होंगे आपके पास और पूछते होंगे मैं कैसे आप जैसा बन सकता हूँ, कैसा होता था आपके साथ, या
0: निसंदेह
1: होता है?
0: निसंदेह ये होता था एक ये जब यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप पब्लिक इंटरफेस पे काम करते हैं, तो निसंदेह आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ, हर एक तबके के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ होता था। तो सभी जगहों पे युवा आकर्षित होते थे, पूछते थे कि हम कैसे पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा उनको एक बात बोलूँगा कि भाई आप अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने जो फालतू की किसी चीज़

0: की रिक्वायरमेंट होती थी, तो ऑफ हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम युवाओं को अपने कैंप्स तक लाके उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, उनको बताते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, और कई उनमें से सक्सेसफुल भी हुए, तो जो बाद में आज भी टच में हैं, बातें करते हैं कि आप लोगों का सीआरपीएफ के मार्गदर्शन ने हमारी इतनी मदद की। तो बड़े सारे किस्से हैं इस तरीके के, सीआरपीएफ ने लोगों के जीवन को छुआ है, जहाँ भी आज छूती रही है, आज भी मैंने देखा है कि जो नेचर ऑफ जॉब जिस तरीके से करती है, जो सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ लोगों की जिंदगियों को छूती रही है जहाँ भी रही है, तो वो एक बड़ी यूनिक है, और मैं इसलिए सीआरपीएफ मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस बल में काम करने का मौका मिला।
1: क्या बात है, जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उस दौर में जब प्रथम बार यूनिफॉर्म पहनी थी और इस दौर तक, इतना लंबा समय आप अपनी सर्विसेज दी हैं आपने, तो आज भी वो सेम फीलिंग है जैसे ही पोशाक पहनते हैं, जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जैसे स्मृति के पन्ने आप पलटने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है सब कुछ नया है, जैसे पहली बार सा है, कैसा होता है?
0: बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आप एक जो आपका आपका जो बिहेवियर है जो वो चेंज हो जाता है यूनिफॉर्म पहनने के साथ में, एकदम बैक ऑफ द माइंड आता है कि अब नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सोल्जर, आप एक सोल्जर हैं, आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैक ऑफ द माइंड, तो वो हमेशा रहता है, लेकिन वो उस समय वो आ जाता है। तो ये हमारी खाकी हो या फिर डिसरप्टिव पैटर्न की जो हमारी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म हो, आप कुछ भी आप जब पहनते हैं तो आप सडनली आप एक मिशन रोल में आ जाते हैं
1: जी।
0: कि बस आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक सर्टेन वे से कॉन्डक्ट करना है जो एग्जेम्पलरी हो, तो सब कुछ आपका अच्छा होना चाहिए। तो एक बड़ी मिश्रित सी फीलिंग होती है, आप प्राइड वाली फीलिंग भी है और एक रिस्पॉन्सिबल फीलिंग भी है। तो वो गर्व जो 22 साल पहले यूनिफॉर्म पहन कर था, आज भी हर एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वही फीलिंग होती है। तो मैं तो और मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी यूनिक है। आप अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो शायद समझना मुश्किल होगा,
1: शायद समझना मुश्किल है। और आपकी बातों से जब आपके भाव पढ़ रही हूँ, सो ऐसा प्रतीत हो रहा है फर्स्ट लव होता है ना, पहली मोहब्बत, बिल्कुल वो पहली मोहब्बत सी जो चाहत होती है कि पहली मोहब्बत में पहली बार मिले और पहली बार जो यूनिफॉर्म पहनी वो कारवां आज तक कायम है, क्योंकि रोज जब अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए आप निकलते हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वही पहली मोहब्बत से आभास आपको होता है। ऐसे ही पहली मोहब्बत से आभास हमारे तिरंगे के लिए भी हमें होता है, क्योंकि उस तिरंगे के लिए ही हम कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो देश के सभी सिपाहियों को, ऑफिसर्स को हम सलाम कहते हैं और हम यही कहते हैं कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम निजी रूप में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। कहते हैं कि जीवन में जब आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जब कुछ अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरा, यकीन मानिए, अधूरा रहता नहीं। जब आप किसी और को उसी स्थिति में ग्रो करते हुए, एक नए आयाम रचते हुए देखते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आपने अपना कार्य पूर्ण किया, क्योंकि तब आप उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हम हरदम हर पल अपने इन शोज़ के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुन ये कहते हैं कि हमने वो प्राप्त कर लिया जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। कमांडेंट अभिराम पंकज, एक बहुत ही निजी सवाल आप तक पहुँचता हुआ। कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ जुड़ी होती है। आपकी निजी ज़िंदगी की बात की जाए अगर, तो आपके स्पाउस का एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी मेकिंग में, क्योंकि आज आप बहुत सारे मिशन्स पर रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, बहुत बिजी भी रहते हैं। ऐसे में उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर परिवार को देखने का। उनके साथ पहली मुलाकात, और उस पहली मुलाकात में ये बताना कि मैं CRPF ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या था वो सिलसिला, कैसे बताया, क्या हुआ, ये आप हमें बताएं।
1: माँ बाप मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा रही हैं। तो मैं, हम लोग 2002 में पहली बार मिले जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस दौरान फिर इस संबंध में कोई बातचीत नहीं थी कि ऐसे हम कोई लाइफ प्लान करेंगे और मैं CRPF ज्वाइन करूंगा या फिर गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन करूंगा। कॉरपोरेट में कार्यरत हैं मेरी वाइफ पिछले 22 सालों से, शी इज़ ए प्राइवेट बैंकर, प्राइवेट, और तो तब ये सब सोचा नहीं था। लेकिन सरकारी सेवा में होने की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस में जो मुझे उनकी मदद मिली है, पीछे मेरी शादी को 19 साल हो गए, जो मदद मिली है वो बहुत ही कमाल का रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये सारा कुछ किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम एज आई सेड कि हमारा जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम बाहर बाहर काम कर रहे हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। तो एक फलक्रम के तरीके से, एक बहुत मजबूत वॉल के तरीके से उनका सपोर्ट मेरे साथ में रहा है। तो परिवार को संभालना हो, अपने जॉब का एक बैलेंस बनाना हो, तो जैसे जब मुझे मौका मिला तो 75 दिन की छुट्टियाँ मेरी हैं, उनकी फ्लेक्सिबल अगर जॉब है तो वो मेरे पास आ जाती थी। अब कोविड के टाइम में मैं कश्मीर में तैनात था, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वो मेरे पास आकर रही। तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक मैं इस मामले में, अगेन, मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि कभी ऐसी कोई समस्या रही नहीं है। और आज तक 19 साल मेरी शादी के बाद भी हम लोग अच्छे से अपना चला पा रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर पा रहे हैं।
0: क्या बात है कि इसे कहते हैं कि आपसी सामंजस्य आपने बैठा लिया। और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रणय सूत्र बनते हैं, एक दूसरे के प्रोफेशंस के साथ भी प्रणय सूत्र बनते हैं। तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, वो यही कहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ बहुत सहल है, बहुत आसान है, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बाहर बहुत अच्छी है।
1: जी जी, निस्संदेह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं अपना, और वो कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, तो एक मैं दोनों वर्ल्ड्स का जो बेस्ट मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ।
0: जी, निश्चित रूप से। और कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिनकी वजह से हम आगे बढ़े, चाहे वो माता पिता हों या फिर हमारे स्पाउस, हमें नित्य प्रति उन्हें बस जता देना चाहिए कि आप हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं। और ये निश्चित रूप से आपकी बातों से साबित हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू रखती हैं। अब आकाशवाणी 8 जून को अपने पूरे 90 वर्ष पूरे कर रहा है। अगर स्मृति के पन्नों को पलटा जाए, आकाशवाणी से आपका संबंध, जैसे आपने बताया कि आप कश्मीर में वहाँ आकाशवाणी केंद्र के संपर्क में थे, वहाँ पर आप नित्य प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन अगर हम बात करें आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, किस तरह से आप जुड़े हुए हैं?
1: देखिए, मैं 70 या 80 के दशक में जिनका जन्म हुआ हो, उनमें से शायद ही कोई इंडिविजुअल हो जिनकी ज़िंदगी को आकाशवाणी ने ना छुआ हो। तो आकाशवाणी से जुड़े, मैं जैसे बताया कि मैं, जैसे मैं स्टूडियो में आया, मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी। मैं अपनी मिट्टी में वापस आए हैं, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी।
0: हाँ।
1: तो
0: हाँ जी
1: जी, तो ये उस तरीके की बिल्कुल नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी. और मेरा मेरी जो मेमोरीज हैं वो एफएम रेनबो प्रोग्राम को लेकर, विविध भारती, आपको याद होगा अमीन सयानी एक एंकर होते थे जो सिबा बिनाका गीतमाला लेकर आते थे. और तो वो हमारी बचपन की यादें थी, हम देखते थे और उसको हम बहुत इंतज़ार करते थे और हर एक सप्ताह के उस दिन का इंतज़ार करते थे जब वो बिनाका गीतमाला लेकर अमीन सयानी जी आते थे. क्या गोल्डन वॉयस थी उनकी. तो ये सारी यादें थी और आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई. और फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं एफएम रेनबो का, आपका, आकाशवाणी का इस मौके के लिए.
0: बिल्कुल जी. और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सुखद सफ़र है. हमारे जो युवा हैं जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर वो जो सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप.
1: मैं दिनकर की एक रचना है रश्मि रथी, उसके दो शब्द में बोलना, दो पंक्तियां मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. तो अब अपना बेस्ट करें, एक अच्छे सिटीजन बने.
0: बिल्कुल.
1: अपनी अच्छी तैयारी करें, अपने देश, अपने माता पिता से प्यार करें, अपनी सोसाइटी को, अपना सोसाइटी को अच्छा करें, अपने आसपास का माहौल अच्छा करें, महिलाओं का सम्मान करें, अच्छे संस्कार करें, अच्छे संस्कार अर्जित करें और बाकी सफलता आपके कदम चूमेगी.
0: जी बिल्कुल, सफलता आपके कदम चूमेगी. और एक बात जो निश्चित रूप से मैंने आत्मसात की है कमांडेंट अभिराम से कि आप अपने बच्चों को ना खेल में ज़रूर, यानी कि उनको एक स्पोर्ट्स तो एटलीस्ट खिलवाइए, कहीं ना कहीं उनका सर्वांगीण विकास होगा, बुद्धि तीक्ष्ण होगी और साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से हमारा गठन होता है उसमें भी अहम भूमिका रचते हैं ये खेल. तो अपने बच्चों को ज़रूर खेलों से आप जोड़ कर रखिए, इस मोबाइल की दुनिया से दूर रखिए, जो चार दीवारी में आपने अपने बच्चों को बंद कर दिया उससे बाहर निकालिए, क्योंकि असली जीवन तो दीवारों के बाहर है.
1: निसंदेह
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडेंट अभिराम पंकज, आपका आप स्टूडियो आए और बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की. एक ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत प्रिय हो उसको मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी, अगर आप कहें तो, आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी शोर फिल्म के उस गाने के लिए, एक प्यार का नगमा है. निश्चित रूप से ये प्रेम है, चाहे वो देश के प्रति हो, अपनों के प्रति हो या मानवता के प्रति हो, जो हमें हमेशा आगे चलने के लिए प्रेरित करता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर.
1: धन्यवाद. धन्यवाद. जय हिंद.
0: जय हिंद.

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: सौ दशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सौ दशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर श्रोता सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर श्रोता सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 7 का समय रहेगा किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का।

शाम 7:50 पर श्रोता सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण। रात्रि 8 बजे सुनना ना भूलिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे तंबाकू सेवन कितना घातक विषय पर डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा से भेंटवार्ता। रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गीत। स्पॉटलाइट कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:15। इस कार्यक्रम को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। गढ़वाली प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:50 पर। कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 7:30। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। शैल संगीत के अंतर्गत गढ़वाली गीतों का आनंद आप लेंगे सुबह 7:30 पर। गायक कलाकार हैं रकेंद्र सिंह रोथाण और साथी। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप तक पहुंचेगा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:30 जिसमें आप सुनेंगे जौनसारी लोकगीत। कलाकार होंगे गोपाल दास और साथी। अपनी पसंद के गीत आप सुनेंगे सुबह 11:00 कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में और दोपहर 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम महिला जगत का। तो श्रोताओं ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को है। आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम युव वाणी।

अपने सपनों को पंख दो, समय और मेहनत तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी। हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट आयुषी भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आज के कार्यक्रम को इंजॉय करेंगे, जहां आपके लिए लेकर आई हूं चर्चा, गीत संगीत, एक खास सेगमेंट और एक भेंट वार्ता। तो बने रहिएगा कार्यक्रम में अंत तक। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक छोटे से सवाल के साथ। अगर दोस्तों अचानक आपको या आपके परिवार में किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो क्या आप सिर्फ सेहत की चिंता करेंगे या खर्च की भी? क्योंकि दोस्तों हेल्दी लाइफ हर व्यक्ति की फर्स्ट नीड है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव के बीच कभी कभी बीमारी या दुर्घटना अचानक सामने आ जाती है। ऐसे समय में इलाज के बढ़ते खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं, और ऐसे समय में स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर उभरता है।

0: दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमा कंपनी या योजना आपके इलाज के खर्च का भार उठाने में आपकी सहायता करती है। दोस्तों, आज के समय में हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयाँ, जांच और ऑपरेशन, इन सब पर बड़ी राशि खर्च हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा है तो ये फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप निश्चिंत होकर एक बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्टेन कर पाते हैं। और साथ ही दोस्तों, सरकार द्वारा भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और इसके अलावा कई स्टेट लेवल स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं जिनका उद्देश्य है कि समाज के हर कैटेगरी के लोगों तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंच सके। और आखिर में दोस्तों, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी स्वास्थ्य बीमा के महत्व को समझें और अपने तथा अपने परिवार के लिए उचित योजना का चयन करें। तो अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से है, जिसे आवाज दी है रोमी और ब्रिजेश ने।
1: लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, परे थम। जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस की, और उसमें हमने सरकार द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करी थी, और अब हम इसी के बारे में और डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य है देश के जरूरतमंद लोगों को बेहतर और सस्ता स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों यानी एलिजिबल फैमिलीज को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस राशि से परिवार के सदस्य लिस्टेड गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना की विशेष बात ये है कि इसमें हॉस्पिटल से में भर्ती होने से पहले और बाद के कुछ खर्च भी शामिल किए जाते हैं, यानी इलाज के समय आर्थिक चिंता कुछ हद तक कम हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि इस योजना का लाभ आखिर में उठाया कैसे जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका नाम योजना की पात्र सूची में है या नहीं। इसके लिए आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी हॉस्पिटल अथवा आयुष्मान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र पाया जाता है तो आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। इसके बाद आप योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट beneficiary.nha.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र की पहचान होते हैं। तो आइए अपने देश की पहचान करते हैं बुलंद और बनाते हैं एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र। अपनी सेहत का ध्यान रखकर और साथ ही इन योजनाओं के जरिए। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म बरेली की बर्फी से है, जिसे आवाज़ दी है देवी नेगी और पावनी पांडे।

0: future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: दोस्तों आज है गुरुवार और हर गुरुवार हमारे कार्यक्रम में शामिल होता है एक खास सेगमेंट जिसका नाम है रोजगार समाचार। तो आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। पहला समाचार, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप बी और सी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें योग्यता 12वीं पास व ग्रेजुएट रखी है। ये योग्यता पदानुसार रखी गई है जिसमें आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित करी गई है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in में जा सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में 11,000 से ज्यादा सहायक लोको पायलट पद के लिए भर्ती निकाली है जिसमें आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून है। अधिक जानकारी हेतु आप rrbapply.gov.in में जा सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, NDA और NA सेकेट, नौसेना और वायुसेना के लिए 300 से अधिक रिक्तियां उपलब्ध कराई हैं जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in में जा सकते हैं। सीमा सड़क संगठन ने ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित करी गई है। अधिक जानकारी हेतु आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in में जा सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई है और आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने MTS LDC फॉरेस्ट गार्ड एवं कई अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली है जिसमें योग्यता 10वीं व 12वीं पास व ग्रेजुएशन पद अनुसार रखी है जिसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 जून रखी गई है। अधिक जानकारी हेतु आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट fri.cfre.gov.in में जा सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के पद के लिए भर्ती निकाली है जिसमें योग्यता BSc बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट से मांगी है जिसमें आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित की है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2026 रखी गई है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.gov.in में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ रोजगार समाचार का ये खास सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक भेंट वार्ता जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कैलिस्थेसिस कोच प्रशांत शर्मा से संकल्प मिश्रा की बातचीत जिसका विषय है कैलिस्थेसिस व्यायाम का नया आयाम।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस विशेष साक्षात्कार में इस समय हमारे साथ हैं श्री प्रशांत शर्मा जी जो कि पेशे से एक कैलिस्थेनिक्स कोच हैं और कैलिस्थेनिक्स

0: क्या है, हमारे युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है, और एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज के रूप में आप इसे क्या कर सकते हैं और इससे क्या अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज प्रशांत जी से जानेंगे। प्रशांत जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।
0: प्रशांत जी, थोड़ा बताइए, कैलिस्थेनिक्स कितना अलग है एरोबिक्स से, और हम जिमनास्टिक्स की भी बात सुनते हैं,
1: हाँ जी
0: जिम हम जाते हैं तो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं,
1: जी
0: इन सबसे कैलिस्थेनिक्स कितना अलग है और कहाँ ये एरिया ओवरलैप भी करता है?
1: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संकल्प मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा ताकि मैं आप सभी को कैलिस्थेनिक्स के बारे में बता सकूँ। सो कैलिस्थेनिक की अगर शुरुआत की बात करी जाए तो इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीस से हुई थी। वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो इसको ट्रेन करते थे, उनकी भाषा में इसको कैलोस स्थेनोस बोलते थे, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ विद ब्यूटी। मतलब कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी हो और साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो सुंदर भी दिखे। सो कैलिस्थेनिक्स का मतलब होता है आसान भाषा में बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब कि आप अपने शरीर के साथ कसरत करते हो। इसके लिए आपको कोई भी फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे जिम में आप मशीन्स डंबल्स यूज़ करते हो या बारबल्स यूज़ करते हो या कुछ ऐसे फैंसी इक्विपमेंट यूज़ करते हो, बट इसमें सिर्फ आप अपना बॉडी वेट यूज़ करते हो। आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो, लाइक ग्राउंड में, घर पर, आपको कोई ऐसा फैंसी इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है।
0: थोड़ा ये बताइए, किस तरह की एक्सरसाइजेस शुरुआती रूप में सीखी जाती हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को
1: जी
0: सीखने की शुरुआत होती है, और किन-किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है?
1: जी बिल्कुल। देखिए कैलिस्थेनिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपका 15 से 20 मिनट का वार्म अप बहुत ज़रूरी है, बेसिक स्ट्रेचिंग, ताकि आप कोई भी मेजर इंजरी से बचें, ठीक है, ताकि आप अपने जॉइंट्स और मसल्स को अच्छे से वार्म अप कर लें। देन उसके बाद आप बेसिक पुशअप, स्क्वाट्स, डिप्स से शुरू कर सकते हो और सिर्फ होल्डिंग कर सकते हो, जैसे प्लैंक, सिटअप्स, जैसे नॉर्मली आप जैसे आर्मी वालों को देखते हो वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से आप शुरू कर सकते हो उस चीज़ को।
0: जब हम कैलिस्थेनिक्स की शुरुआत करते हैं, आजकल बहुत से यंग बच्चे हैं जो कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हैं और वो आगे चल करके फिट रहना चाहते हैं, अगर ऐसी बात करें तो बच्चों को किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ हम अपने बच्चे को कैलिस्थेनिक्स सिखाना चाहते हैं जिससे वो लाइफ लॉन्ग फिट रहे, किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: ठीक है, बिल्कुल। बच्चे जो है हमारी आने वाली पीढ़ी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको स्ट्रांग बनाना। तो छोटे बच्चों का क्या रहता है कि उनके स्टार्टिंग में जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और मसल्स में इतनी ज़्यादा जान नहीं होती है, तो कैलिस्थेनिक्स एक बहुत अच्छा विकल्प है उनके लिए स्टार्ट करना। बेसिक फाउंडेशन स्ट्रेंथ के लिए वो लोग लाइक होल्डिंग्स कर सकते हैं और लाइक हैंड स्टैंड के बेसिक कर सकते हैं, इस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं बच्चे। और किसी की गाइडेंस में करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि वो किसी भी मेजर इंजरी से बचे रहें।
0: हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज की बात करें और उससे फिर हेल्थ पर बड़ा असर पड़ता है, ऐसे में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी
0: जब हम कैलिस्थेनिक्स सीख रहे हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय खाने पीने का क्या सबसे ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो चाहे वो जिम हो, मेन आपका रहता है कि आप एक बैलेंस डाइट लो, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द पॉइंट हो, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सब एडुकेट अमाउंट में हो। अगर आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका 40% तो प्रोटीन इनटेक हो, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो वहाँ पे, और 30% आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी, दाल, चावल, उसको टू द पॉइंट रखें, बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं और हेल्दी फैट्स ऐड करें, जैसे नट्स हो गया, सीड्स हो गए आपके तरह तरह के, और हेल्दी ऑयल हो गए, और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें।
0: अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो एक उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं, 30-35 की एज में हैं, क्या वो लोग भी कैलिस्थेनिक सीख सकते हैं या फिर जो शरीर है उसका ढांचा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी घट चुकी होती है, किस तरीके से? क्योंकि
1: जी
0: टीवी पर देख करके या फिर हम सोशल मीडिया की बात करें, लोगों को चाहत बहुत होती है, तो क्या इस तरह की एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं या उन्हें अवॉइड करना चाहिए?
1: नहीं बिल्कुल, जो लोग लाइक 30+ एज के हो गए हैं या उससे भी ऊपर हैं, लाइक 50+ भी जो लोग हैं, वो लोग बहुत बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक फाउंडेशन बिल्डअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो लोग 30+ लोग हैं वो लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप इसको शुरू नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। एज मैटर नहीं करती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो क्रॉल करना सीखता है पहले, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलता है, तो ऐसे ही कैलिस्थेनिक्स में बहुत सारे प्रोग्रेशंस होते हैं। तो एकदम से आप एक स्टेप को छोड़ के फोर्थ स्टेप पे नहीं जा सकते, तो आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है इसको शुरू करने के लिए। तो 30+ लोग भी इसको कर सकते हैं और वो अपने आप को फिट रखने के लिए इसको कर सकते हैं और अपनी एज को भी स्लो डाउन कर सकते हैं।
0: प्रशांत जी, फिट रहने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं। कोई कैलिस्थेनिक्स सीख रहा है, वो बाकी एक्सरसाइजेस से कैसे अलग है, और कैलिस्थेनिक्स ही क्यों एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है?
1: देखिए, कैलिस्थेनिक्स जो एक फंक्शनल मूवमेंट है, बॉडी का जो है नेचुरल मूवमेंट है, इसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल वेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जिससे आपको इंजरी का खतरा हो। तो ये बहुत ही नेचुरल मूवमेंट है और कोई भी इसको कर सकता है, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू आप कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो।
0: कैलिस्थेनिक्स की बात की जाए तो आज से 5 से 6 साल पहले तक इसको टियर 1 सिटीज़ में ही ज़्यादा सिखाया जाता था,
1: जी
0: वहीं पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी। थोड़ा बताइए, आजकल टियर 2 सिटीज़ में भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, और ऑनलाइन आजकल क्लासेस देने का बड़ा चलन है,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: वहाँ पर ये किस हद तक सक्सेसफुल है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: ऑनलाइन में देखिए, अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लाइक वायरल रहते हैं कैलिस्थेनिक्स के वीडियो, चाहे हम बाहर के लोग देखें चाहे इंडिया के ही अंदर लोग देखें। तो इसमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लाइक नेशनल लेवल तक कॉम्पिटिशन्स जाते हैं, तो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अभी देहरादून का भी अगर लें तो अभी हमने स्टार्ट करा है, हमारी अकेडमी को भी यहाँ पे 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो इससे पहले ये नहीं था। अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और वो भी इसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और ट्रेनिंग अच्छी लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर लोग किसी और फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स को या फिर और दूसरे स्पोर्ट्स को, तो कैलिस्थेनिक्स बचपन से सीखना क्या उन स्पोर्ट्स के लिए मदद करता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो लोग भी कैलिस्थेनिक्स करते हैं उन लोगों के लाइक आर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, शोल्डर स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं ज़्यादा। कंपाउंड मूवमेंट्स वो होते हैं जिसमें हम एक मसल ग्रुप से ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स का लें, अगर पुशअप्स में हम लोगों की चेस्ट ट्रेन होती है, हमारे ट्राइसेप्स ट्रेन होते हैं, हमारे शोल्डर ट्रेन होते हैं, हमारी कोर स्ट्रांग होती है, हमारे ग्लूट्स स्ट्रांग होते हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा मसल ग्रुप टारगेट होती हैं। तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो चाहे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस ये 10x कर देता है।
0: आपने कंपाउंड एक्सरसाइजेस की बात की, किस तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं थोड़ा बताइएगा जो सीखते हैं लोग कैलिस्थेनिक्स करते वक्त, और जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस होती हैं आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं?
1: जी, कैलिस्थेनिक्स में वैसे ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे जिम में हम ज़्यादातर आइसोलेटेड मूवमेंट पे फोकस करते हैं, जैसे हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं या हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, बट कैलिस्थेनिक्स में ऐसा नहीं है, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम एक मसल ग्रुप से ज़्यादा मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं एक बारी में, हम इसमें आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करते हैं, हम लोग कंपाउंड मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इससे आपकी ओवरऑल फिटनेस अच्छी होती है, आपका ये नहीं है कि आप सिर्फ बाइसेप पे वर्क कर रहे हो, आप पूरी बॉडी को एक मशीन की तरह यूज़ कर रहे हो। जैसे जिम में आप मशीन यूज़ करते हो, इसमें आपकी बॉडी खुद एक मशीन बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको काफ़ी लगातार इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लाइक अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाती हैं चीज़ें करना, चाहे आप वैसे जिम कर रहे हो चाहे कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, दोनों में आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर।
0: अगर एक फाउंडेशनल स्टेज पर कोई बच्चा या कोई यूथ आता है और उसको धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक प्रो लेवल एथलीट बनना है, लगभग कितना समय लगता है कैलिस्थेनिक्स की बात करें तो?
1: जी बिल्कुल, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि छोटा बच्चा इस चीज़ को करे तो वो इस चीज़ को इन्जॉय करे, ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस चीज़ में। अगर वो इन्जॉय करेगा प्रोसेस को तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है उसमें। ठीक है, तो बच्चे की शुरुआत एक सही गाइडेंस के अंदर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि कैसे शुरुआत कराएं, तो बेटर रहता है कि किसी कोच के गाइडेंस में वो चीज़ों को करें। और रही बात एक एथलीट बनने की, तो उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ईयर्स लगते हैं बहुतों को, 4 से 5 साल तो लगते हैं एटलीस्ट अगर आपको एक नेशनल लेवल चैंपियन बनना है कैलिस्थेनिक्स में, क्योंकि बाहर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ।
0: प्रशांत जी, अंत में वो युवा जो आपको इस समय पे सुन रहे हैं, जो फिटनेस के लिए या फिर एक एथलीट बनने के लिए कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, किन खास बातों का वो ज़रूर ध्यान रखें,
1: जी
0: किन चीज़ों से दूर रहें, और कैसे अपनी शरीर को भी फिट रखें और एक अच्छे एथलीट बन सकें भविष्य में?
1: जी तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आप फिटनेस से आप क्या समझते हो? क्या फिटनेस का मतलब सिर्फ एक अच्छी बॉडी होना होता है? क्या एक बल्की बॉडी ही एक फिट इंसान की निशानी है? पर सच्चाई में ऐसा नहीं है। एक सिर्फ ये कैटेगरी है बॉडी कंपोजिशन की, जिसमें आप सिर्फ बॉडी देख के

0: कहते हो कि ये बंदा फिट है, बट एक्चुअल में एक फिट पर्सन की निशानी है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अच्छी हो, आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं वो एक बारी में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकें, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ हो, आपकी मसल में स्टेमिना हो, एंड्योरेंस हो, मतलब कि आपकी मसल्स लगातार काम कर सकें, ठीक है, आपकी बॉडी में मोबिलिटी हो, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपकी बॉडी जितना लचीलापन रहेगा उतना ज़्यादा आपकी इंजरी का खतरा कम से कम रहेगा। आजकल यूथ क्या करता है कि बहुत ज़्यादा फोकस करता है बॉडी बिल्डिंग पे और अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ कर लेता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लोग फिजियोथेरेपी पे जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, बट स्टिल उनकी बॉडी उस वैसे लचीलेपन में नहीं आ जाती है क्योंकि वो किसी के गाइडेंस के अंदर नहीं करते हैं चीज़ें। तो कैलिस्थेनिक्स यहाँ पे बहुत अच्छा विकल्प रहता है यूथ के लिए, जिसमें उनको इंजरी का भी खतरा कम रहता है और बहुत ही नेचुरल मूवमेंट होता है। इसके लिए वो कहीं भी पार्क में, ग्राउंड में, कहीं भी कर सकते हैं।
1: प्रशांत जी, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने कैलिस्थेनिक्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। निश्चित ही इस जानकारी से वो लाभान्वित होंगे और कैलिस्थेनिक्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी और बहुत से युवा कैलिस्थेनिक्स सीखेंगे भी।
0: जी
1: आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर आपका।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी मेरे यानी आयुषी भट्ट के साथ, और अभी आप सुन रहे थे कैलिस्थेनिक्स कोच प्रशांत शर्मा से संकल्प मिश्रा की ये बातचीत। तो आइए अब सुनते हैं कुछ संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
3: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Future proof your career with UPAS Dehradun, India's AI first university. Choose from 100+ AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
8: दोस्तों, जब भी हम आसमान में उड़ते हुए विमान को देखते हैं या अंतरिक्ष में जाते रॉकेट की खबर सुनते हैं, तो मन में एक उत्सुकता जरूर जगती है कि आखिर इन्हें बनाने वाले लोग कौन होते हैं। तो दोस्तों, इन अद्भुत तकनीकों के पीछे होता है एक एरोस्पेस इंजीनियर का ज्ञान और मेहनत। दोस्तों, एरोस्पेस इंजीनियर वो विशेषज्ञ है जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों की डिजाइन, निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य करता है। और इसको कैसे करते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर में एरोस्पेस इंजीनियर बने कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ करी होनी चाहिए। इसके बाद आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे जी

आदत भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद विद्यार्थी विमान कंपनियों, रक्षा संस्थानों और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा देश भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें हम युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं हैं। यदि आपके सपनों को ऊंची उड़ान पसंद है तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प बन सकता है। तो अपने सपनों को दीजिए उड़ान इस बेहतरीन फिल्मी गीत के साथ, जिसे लिया गया है, फिल्म अंग्रेजी मीडियम से है, जिसे आवाज़ दी है विशाल दत्तलानी और सचिन जिगर ने।

दोस्तों, आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बता सकते हैं। हमें पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड निकट रिस्पना पुल देहरादून। हमारा पिन कोड है 2480001। साथ ही दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youthdidian@gmail.com पर। इसी के साथ अब मुझे यानी आयुषी भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर, या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

नमस्कार सेवा सौली ग्राम जगत का सभी सुंदरों थे पर दगड़िया शांति बिंजो लग तरबटी उम्मीद कर दू अपना अपना डारों में आप लोग राजी खुशी वेला आप जख भी रहा निरोगी रहा सुख संत रहा भगवान बद्री केदार जी से इन हम कामना सदन ही करना रंदो। आज भी प्यारो दिन आप सभी को चिट्ठी को दिन आप चिट्ठी हमारे कार्यक्रम तक सार्थक बन दिन हमारे वास्ते बहुत महत्वपूर्ण होने क्योंकि यू कार्यक्रम हमारे अपनी मातृभाषा को कार्यक्रम च और हम सब की जिम्मेदारी होंद कि हम अपनी बोली भाषा लोक साहित्य लोक धरोहर तय नई पीढ़ी तक पहुँचावा और आकाशवाणी केंद्र को ग्राम जगत पिछला 47 वर्ष बिटी ई सेवा तक कनुच लेकिन हमारा जो श्रोता छिन हमारी ई यात्रा का सहभागी सदन ही रहन यहाँ का वास्ता हमारा सभ्य सुंदरा बधे का पात्र छन। उम्मीद च एथर भी इन्नी दगुड़ू आप सभी लोग कर दरेला। आप एक चिट्ठियों थे पढ़ने से पहली कार्यक्रम की शुरुआत कर दो वंदना कोटनाला का गया ये थड़िया लोकगीत से और गीतक बाच रे बार।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहो अभी आपन यो जरूरी रविवार सुन और रविवार से पहल सुन वंदना कोटनाला का स्वरमा थड़िया लोकगीत। और अब आप लोगों की चिट्ठी तो सुन दो। चिट्ठी पत्री को आज को अंक

0: चिट्ठी पत्रिका आज का अंक मां सभी सुनदरों को बहुत बहुत स्वागत। मैं छू विनय ध्यानी
1: और मैं छू शांति मंजुला।
0: तो आज शांति जी त्योहार को दिन च
1: जी
0: पर्व को दिन च अफार हमारा भयबंद ईद को त्योहार मनाना छ तो यहाँ बाबतों तब बहुत सारी शुभकामना। और अब हम चिट्ठी पत्री की बात करें कि चिट्ठी पत्री बरीदा ठीक ठाक ही छन और भल लगण छ कि पिछड़ दा जो हमारा सुनदरा छ उन समझ छे कि हाँ भाई बिना चिट्ठी पत्रियों कार्यक्रम कन के चलल। तो कुछ नए सुनदरा और कुछ पुराना सुनदरा हमर दगड़ आजक ये कार्यक्रम में जुड़ना छ।
1: तो सबसे पहले चिट्ठी लेनो छो मैं मनोरमा रावत जी की विजय पार्क देहरादून, क्योंकि आज दुई चिट्ठी छन और दुई सगत छन और बहुत सुंदर ढंग से लिखा छन। पहली चिट्ठी यूं छी कि ग्राम जगत कुटुम्ब दरी प्रमुख दा की सेवा सौंधी और मेरी चिट्ठी तय आत्मीयता से बचण गुणे और मेरा प्रति अपनापना गुण बल बहुत आभार। विश्व परिवार दिवस पर आप लोगों की छुईबत भली लगी न। दीपा चौहान को गीत बहुत मार्मिक और छोटी फूफू द्वारी दौ भी बहुत सुंदर लग। अति उत्साही डॉक्टर अलका पांडे जी से हस्तशिल्प और रोजगार पर विस्तृत वार्ता सुनी मजा आएगी। कैंसर पर डॉक्टर गैरोला की जानकारी सभ्यों तक परोसन लायक छे। कवि गोष्ठी में आशा पैनुले जी की कविता जीवन की सच्चाई को आईना और कलम सिंह जी को यनु हमर देश दगड़ही धनेश जी की विनय का साथ कविताओं की गोष्ठी आनंददायक छे। योगेंद्र सिंह रावत जी दगड़ी मानव और वन्य जीव संघर्ष पर ध्यानी जी की वार्ता सोचनीय लगी। सिमना दगड़ियो जुगराज रहे ध्यानी जी लापता खाड़ू मिल जालू तो एक दा होर परेश दिया।
0: कह बात ध्यान जी लापता हो जाए तो खाड़ भी लापता ही रहेंद है ना। लेकिन हम आप खातिर कुछ ना कुछ बटोल के लिए ना तो हुए तो हम कार्यक्रम में शामिल कर दा जन के योगेंद्र रावत जी का दगड़े हम खिरसो में बैठे छुई बत लगी कि लेके बाग भी वहीं छोड़ लगी चाहे भिंडी। तो हमार कोशिश छे कि बाग बकरों तो निमार खाड़ जिंदू रहा और अगर जिंदू छे तो जरूर आप ते हम सुनोला वे नाटक ते। बहुत बहुत आभार के आप हमारा सभी कार्यक्रम एक एक कार्यक्रम सुनी की आपन हम तय चिट्ठी भेजी आभारी छो हम आपका। और आजकल तो जन के हम 90 साल मनाना छो अपनी आकाशवाणी की यात्रा का तो उखमा आप जना श्रोता जो के हमार दगुड़ कना छिन शुरुआत बटे के ही वो सम्मानित छिन हमार खातिर। और हमार कोशिश रहें कि ऊँ तभी अपन कार्यक्रम में हम न्यूतो बोलवा दगड़ छुई लगवा तो सुंदर हम आप तक पहुंचने कोशिश कला। लेकिन आपक चिट्ठी हम तक पहुंचने छिन ई बात हम तो बहुत ही इनकी बहुत गर्व महसूस कर सकता हम।
1: बिल्कुल गर्व ही होना चु अयो की दूसरी चिट्ठी बीच ग्राम जगत कुटुम्ब दरी को रोमक दागे सेवा सौली आज उन भगत पर पेटा है ना। तो तब बोला छी कि दगड़ियों में पिछला हफ्ता अपन चिट्ठी सिंकल पटेल छे कुजन ये नेटवर्क का लटोल बलका उलझी ना हर आज सिंकल भेजनो छो। अब तो गोया लगे कि बेखुंदान तक पहुंची जाल।
0: बिल्कुल साहब यह अच्छी बात है कि भगत पर आपन चिट्ठी भेज दिया और हम तभी तो बोलना अपना और भी सुनदरों से कि जेबत जेबत गुआनी छे जेबत ये आप तो लगन छे कि आप भेज देने तो भेज दिया नेटवर्क ठीक ठाक रहा लो तो पक्की बात छे हम तो पहुंच।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लिखना चाहिए कि आप लोगों मेहनत हम तक निरंतर पहुंच जा और हम आनंदित रहो। ग्राम झांकी माँ खिरसुकर नजी का गाँव लुगु दगड़ बल जो बातचीत थे सांजन की देली माँ बैठू गणेश सुनी मजा आएगी।
0: वाह साहब वाह बुदेश गो की जो एक रिकॉर्डिंग आपन सुनी ग्राम झांकी वो आप तक पसंद आई एक खातिर हम आपका आभारी छो। और ये बात सच छ कि जब जब हम स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम अपना कार्यक्रम में शामिल करदा प्रसारित करदा तो तुरंत वे पर प्रतिक्रिया हमारा जो सुनदर छे नु कह जान
1: यही पहचान छ हमर जागरूक सुनदर
0: जी
1: है ना। एथर भी लिखना छे ना कि बीना कंडारी जी की तिन्या कविता बहुत सुंदर छे जुगराज रया कविता बहुत अच्छी लग खीर सुखा बच्चों की किलकारी तवल बद्र केदार जन उच्च और अनंत
0: क्या बात।
1: इंदु भारती नवानी जी की दगड़ गुरु जी की सुटकी खांद छो अब जो भगवान भी मेरे पोथी बचणो बोल बल वे खूबी बहुत आभार जुगराज रया सिमन्या।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी कार्यक्रम जन के आपन लिखी ब्यालक वार्ता भी आप तक पसंद है हिंदू भारती नवानी की जखमा के हमन पुस्तकालय की बात करी और आज डिजिटल पुस्तकालय हुएगी वही की बात करी और वैसे पहले आपन किलकारी भी सुना हमारा राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू का बच्चों की वो भी आप तक पसंद आया ये का खातिर बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम तब सफल हो जाने हमारा जब हमारा श्रोताओं की मोहर ला जान पर कि हाँ साहब यू कार्यक्रम भल छाए तो हम तभी दोबारा से साहस मिले कि चला साहब इबारी धाका के होर जौला उत्तरकाशी छोड़ जौला चमोली जौला टिहरी जौला जख तक हमारा ही खुटा हम तली जाला हम पहुँचला और आप खातिर नई नई किलकारी कार्यक्रम नई नई ग्राम झांकी हमारी खैरी कहानी एक गांव की बहुत कुछ हम ले कंदा और आप था सुनाना रोला बहुत बहुत आभार यूं दुया चिट्ठियों का खातिर
1: तो सुन रहो ध्यान जी फिकर अपन बढ़ायाल अब देवाग मोल के अब मैं कख जाऊँ और क्या लो मैं
0: हाँ,
1: एक फिकर बढ़ा दिन आप और गर्जन लगान शुरू कर दिन फिर डांडो सुंदर बात चाहिए आप लोग हम तो गठजोड़ दा और हमारे ध्यानी जी बिल्कुल क्या बोलते ना गालू एक्टिव हो जाए
0: और क्या ना थर क्या अगर एक्टिव नहीं रहला तो वही कहता हूँ
1: बिल्कुल
0: हैंग
1: चिट्ठी जो श्री दिनेश चंद्र थपलियाल जागृति बिहार नेहरू ग्राम रोड नथनपुर देहरादून बिटेन ग्राम जगत की पूरी कुटुंब दरते सादर सेवा सौंधी विगत द्वि हफ्ता बिटे गीत नहीं सुन साग और चिट्ठी भी नहीं लिख साग पर आज फिर से हाजिर हुए गयों बोले वन ये चिट्ठी एतवारे दिने गो के गीत एक फरमे से
0: पर ओख मा दुई आखर छाने त हम तो छट ले मा देवा तो दुई हफ्ता के लन सुन पहल तो ये बात अर के चिट्ठी नहीं भेजी अपन हम भी सार लगे न कि आज का गेन है ना तो आप फिर से जुड़ गिन हमर दगड़ हमर कार्यक्रमों का दगड़ जैनिक भल्लाक बहुत बहुत धन्यवाद
1: आचार्य श्री इंद्रमणि थपलियाल जी लिखना छन प्रेम नगर अम्बीवाला देहरादून बटेन गंगा दशहरा की शुभकामना देना छन ग्राम जगत कुटुंब दरी थे कामना करना छन कि हम सब को दुर्विकारों थे माँ गंगा दूर करें हम सभी ऊपर है उनकी कृपा बनी रहा आकाशवाणी परिवार थे गंगा माँ सदा ही स्वस्थ रखें बल इन कामना कर दू
0: बहुत बहुत आभार शुभकामनाओं का खातिर और अब ओण वाला जितना भी पर्व त्योहार छन उनकी आप थभी बधे और बोल दिन कि साहब विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो तो भाई इन यह विचारधारा ये सदविचार हमारा सभ्यों का होने चन आप ये चिट्ठी हम तक बताने चे धन्यवाद हम तक अपनी चिट्ठी पहुंचाने का खातिर हाँ तक लिखी चिट्ठी सुंदर लगद हम तय
1: जी है लिखवाड़ छ ये बुना छ कि समस्त ग्राम जगत परिवार थे बोले देवेंद्र सिंह रावत ग्राम भराज जिला रुद्रप्रयाग मूल निवासी छोबल में वो वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज बड़ोवाला जौली ग्रांड देहरादून में छो अध्यापक
0: अच्छा
1: मीन मार्च का अंतिम सप्ताह में लोक ज्ञानक हते लिखी चिट्ठी ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक का नाम पर स्पीड पोस्ट भेज छे
0: अच्छा
1: वह को कोई जवाब नहीं मिल बाकी बल ग्राम जगत का सभी कार्यक्रम मनमोणिया छन सोमवार को फुटबॉल पर आधारित भेंटवार्ता

0: सुंदर छे। मंगलवार पर खिरसुकी किलकारी बहुत सुंदर लग। बाकी होर कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया लगना छे ने। एक बात पूछण चाहूँ छो कि मैं यख बटे की एक रेडियो रूपक वार्ता भी देना चाहूँ छो, मार्गदर्शन चाहूँ बल।
1: देवेंद्र जी, पहले तो वही चिट्ठी तक खोजे होला जो कि अपन स्पीड पोस्ट से हम तक पहुँचाए। हम ये बोलला कि भाई अब तक तो पहुँच ही नहीं हम तक कुजाण, है ना। लेकिन जब नहीं पहुँचलता नहीं हम आप तक खबर कर दूँ लकी लकी जब ई मेल ऐसा कर दो तो वेल में आणु आण च, है
0: बिल्कुल
1: ना। और वैसा डाकवान भेजे थे भिंड घाम लागोल के पता निम्मा अटोल अब तक हम तक। और हमारी एक भी जो हमारे पोस्ट बॉक्स च ना वो बहुत बड़ो चुहे माँ, चाहे वो दूरदर्शन का छन चाहे वो आकाशवाणी का छन, चिट्ठी पत्री सब कठा दिन फिर होता है अलग अलग करण पड़त कि भाई
0: बगल
1: ये
0: लाग जा।
1: हाँ ये कना चे यू कना चे। तो मिल जाए चिट्ठी स्पीड पोस्ट वाल पक्की बात है कि हम तक मिले ली और हम आपका चटचटाक बतौला। तो अगर आप भी कोई वार्ता प्रस्तुत करना चाहना चाहें तो बिल्कुल साहब आप यही ईमेल पर अपन आलेख हम तक भेज दिया और दगड़ माँ भेज दिया अपन पूर्व पता टेलीफोन नंबर। तो देखला कि कै विषय पर अपन क्या लिखे, कम से कम 10 मिनट की अवधि को या वार्ता होनी चाहिए। फिर हम आप तक न्योतला, फिर जो प्रक्रिया चाहिए वह तक पूर्ण करला और वह के बाद आप हमारे कार्यक्रम में एक वार्ताकार के तौर पर शामिल हुए सक दिन। देवेंद्र जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जरे से हम बिसाणा छुआ कि लैके चिट्ठी खा रहे हूँ पेढ़े लेन अपार शांति जी ने
0: अब गीतों
1: और
0: बारे च
1: गीतों बैर च ना मिन सूट घिचू बह गया। तो चला पैण पिए कौन ला तब रही और आप तक पहुँचाना छुआ एक पुराण गीत गंभीर दार्मिज का शर्मा पुराना गायक कलाकार छन कुमाऊनी गीत छियो और बहुत कम आपन सुनोल। आज एक दा फिर से पुराना लोग पुराना श्रोता ये गीत सुनी कि अपना पुराना दिन और पुराना रेडियो याद कर ला। ले सुना।

0: तो सुनदरों गंभीर धार्मिक के स्वर में अपन सुंदर सी पुराण गीत सुन जन की हमारे परंपरा चे और उम्मीद करना चाहो कि आप तय खूब लग होल।
1: गंभीर धार्मिज हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा का अनुमोदित कलाकार छन और इन भुले जान के साथ बहुत सुंदर सुंदर गीत उन लगे। बहुत पहले भगत माया रिकॉर्डिंग हुए और वक बिटिक भी और आप ईद लगाओ उत्तरायण में भी उनका गीत प्रसारित इन जिम्बाद बिटिक भी और आप देहरादून बिटिक भी हमन आज वही गीत की याद आपने ताज़ा कराया।
0: अब एक नई चिट्ठी आई चे प्रियंका जी की पता तो नहीं लिखी हूँ कक बटन चे पर बुना जी इनकी ग्राम जगत कार्यक्रम बहुत सुंदर लाग्यो तई नौ तपा के बारे में जो आपन छुई बत लगे इन बल वार्तालाप कार वो बहुत बढ़िया छे और ये गर्म माँ आपो कार्यक्रम सुनी तो बल जिगुड़ी माँ ठंड पोड़िए
1: क्या बात। और लिखना चिन पूरी चिट्ठी माँ की जयपुर माँ भी उदगह गर्म छ और यख भी उदगह गर्म छ। अब हम समझ गए कि देहरादून बटे के चिट्ठी लिखना छन लेकिन मिजा रहन वाला जयपुर का छन या फिर जयपुर बटे के अभी हुए कया छन तो ये अंदाजे लग सकत। लेकिन हम अपना लिखवारों से बोलला कि भाई अपन पता वता भी लिख दिया कि कख बैठे का आप लिखना चाहें के लेकिन ईमेल पर कभी भी पता नहीं लिखी रहें। लेकिन सबसे पहले प्रियंका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे नई लिखवार छन। पहली दा आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ना छन चिट्ठी पत्री में ये जाने का हम तो बहुत भल लाग और खास करी कि हमारे जो महिला श्रोता छन ऊँक प्रतिभाग जब हूं तो लगू चुके हाँ ऊँक बैठक ऊँक हिस्सा को हम भी कुछ कना छुआ कि ना तो हम बतौला आप तक कि महिलाओं का खातिर विशेष कार्यक्रम जनन को वास्ता जो कि बुआरा दिन 12:30 बजे हूँ वही तभी सुना करा वो भी ग्राम जगत को हिस्सा छे। लेकिन किला कि वो दोपहरा को भगत रहें जरे से काम धाणी से फुर्सत मिल जाए गृहणियों तक तो वही भगत पर हम आपको ग्राम जगत कार्यक्रम को जो एक भाग छ जनन को वास्ता वक प्रसारित करता वही तभी सुना आप। बाकी और कार्यक्रमों का बाबत आप तय कन लगत ये तभी सुना और लेखा हम तय कि लगे सिर्फ कार्यक्रम सुने ठंडक लग जानो यू कोई
0: ना तो ठंडक तो हम तभी लग ना कि लगे ग्राम जगत मा हमारे नई दगड़े जुड़ी
1: बिल्कुल
0: कुटुम
1: बिल्कुल
0: दरी मा तो जिगुड़ मा हमार भी ठंडी पवाड़
1: तो हम ही बोला कि प्रियंका है कि चिट्ठी और जल्दी से जल्दी लेखा।
0: बिल्कुल अब एतवारे दिन एक विकास सकलानी जी बबीता सकलानी दिल्ली बटेन यून गीतों की फरमाइश कर छे विजय कुमार सिंह डिफेंस कॉलोनी देहरादून बटेन यून भी गीत की फरमाइश कर छे तो यून सभियों को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो धन्यवाद साहब आप भी क्या अपन चिट्ठी पेड़ दिया आज है ना और खूब खारी चिट्ठी पड़ी ना बहुत लाग हम था। लेकिन आज एक काम बची हूँ बताओ क्या होल मी जा
0: चिट्ठी
1: को
0: पता
1: हाँ ये आता है क्या कम से कम आप था जरा दे लगाओ तब
0: तो सुन दरो इन चिट्ठी लिखत रहा इन हम उम्मीद करना चाह और एथर बटन अपन जो हम चिट्ठी पटाने ने हमारे पता चे चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com
1: और हतक लिखी चिट्ठी भी आप भेज सकते हैं नमता है हमारे पता च कार्यक्रम चिट्ठी पत्री ग्राम जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी।

देहरादून 3284001। तो अब आज को चिट्ठी पत्री को यो अंक यखिम तक मिथत दिया आ गया और सुनारा कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सुन दरो अभी आपन सुन चिट्ठी पत्री को आज को अंक उम्मीद च तसल्ली भेवे गेल आप दे अपन चिट्ठियों जवाब सुनी और अब कार्यक्रम तय अग्नि बढ़न दो और सुन दो शांति बर्मा और दगड़ियों को स्वर मा जौन सारी लोकगीत और ये गीत का ऐतर पैतर छिन रंत रह बार
1: मिस सीमा
2: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: Future-proof your career with UPES Dehradun, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Sundaro, Shanti Barma, Dagdiyon ka Swarma, abhi apan jaun sari log geet sun. और ये लोकगीत का ऐथर पैथर सुनी ना अपन रंतरे बाल खूब लगोला आपते इना उम्मीद कर दो हमेशा और अब जरे सी छुई बात लगन दो सुन दो हमारा जीवन में सफल कर सफर करूं जीवन को महत्वपूर्ण हिस्सा हूं कभी नौकरी बान कभी कार्य जो बान कभी दुख सुख तकलीफ बटना बान कभी तीर्थ जनो हम कभी शुद्धि घूमना भी जनो हम सफर कनी पोड़ कनी कहीं भी पर कद गई बेर हम जल्दीबाजी माँ स्वास्थ्य की अनदेखी कर दिनो जरूरी सामान धरण भूल जनो या यन सोच दो कि फुका बाटो पर मिल जाल ककिम न ककिम है ना कि लगी आजकल सब सुविधा चन सब साधा चन पर कभी कभी अधबट माँ गाड़ी खराब हो जा बंद हो जा या कोई जंगली जानवर ही आ जा या बाट घाट टूट जा अचानक बरखा ही आ जा या कोई भी कई भी प्रकार की आपदा या संकट हम पर आ जाओ तो हम वह बेर क्या कला आप हम ताई ये वास्ता सब धरण धरण चैन सफर में जान से पहली सबसे बढ़िया तरीका ची एक लिस्ट बने दिया पहली बटन सुई से बोल देना कि सुई बिटे कर सबल तक एक लिस्ट बने दिया और तब सामान सुंदर कह रही धैर्य की और तब निश्चिंत हुए कि तब सफर में जान चैन सबसे पहले जन की खान पीन का सामान धैर्य दिया जो पैकेटों में बंद सामान जो ज़्यादा दिन चल सकूँ और कम दिन अगुण खाणु बने एक भी घर बैठे लीजिए जैसे कि लगे बेरा खाणु जितना निखाया उद का बढ़िया चाहिए स्वास्थ्य गुण और पानी भरपूर पानी होना चाहिए अफूम बेसिक दवाई होना चाहिए कके चोट फटांग लग गया मुंडा रखी थोड़ा जुकाम की हल्की बुखार रखी थोड़ा बहुत जो बेसिक हम दवाई देखो हम फर्स्ट एड बोला वो भी अफूम होना चाहिए मोबाइल आजकल जरूरी वही चार्जर वही की बैटरी और अपर कागज भी होने चाहिए जिनके आधार कार्ड अपर लाइसेंस होने चाहिए टिकट होने चाहिए पैसा होने चाहिए या इन चीज़ होने चाहिए जो हमारे कुबागत पर काम आने यात्राओं को जो नियम बने उन भी हम तो पालन करूँ चाहिए अगर हम रेल में या गाड़ी में जान छो तो हम तो चितल वेग जान चाहिए किले की अजाण की छुओं में है कि कभी हम ठगे नहीं जावा पहाड़ों के सफर में अगर हम जाना चाहें तो वह का मौसम का हिसाब से वह का जरूरत तक सामान लेके हम तो जान चाहें और किले की जरा भी स्वास्थ्य अगर कम खराब आई तो वह एक वास्ता हम सब सामान भी होने चाहें और आजकल आप देखना चाहें कि बोलना चाहें लोग नौ तप चलन चे तो इन माँ अपन स्वास्थ्य को विशेष ध्यान धरूँ किले की कुल मिले हम थे अपन स्वास्थ्य थे प्राथमिकता देन चाहें ये निपुण चैन की फूका अभी जरसी ठीक छो हम या कुछ नहीं हों या जरसी हुई च इन ध्यान नहीं करूँ चाहें किले की कभी भी कुछ भी कहते हुए सकूँ तो आप की सुखद जो सफर च वो तभी हो सके जब आप अपनों पूरे स्वास्थ्य को ध्यान देला और बिल्कुल चंड चितल हुए की तैयारी करी के जेला इच है जरस छुई बत और अब कार्यक्रम थे सरके दिन जरस ऐथर और सुन दो चंदन सिंह बोरा का स्वरमा कुमाऊनी गीत और गीत से पहले सुन दो एक रैबार
3: ये मेरा छोटा भाई है ना बड़ा शरारती है कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है सोलर पैनल है ना मैंने कहा ओ ये सही है बेटा
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in

चंदन सिंह बोरा का स्वरमा अभी आप सुनना चाहिए कुमाऊनी गीत। और अब मठमठ के बगत होनु चु समाचारों को, तो लिया सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
3: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
5: अब हमारे श्रोता जहाँ, हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया, कहा सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया, और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल केवल एक पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।
7: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
6: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया है और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 95% कार्य भी पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण के लिए देश के पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 व 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मासिक धर्म को लेकर समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। वे आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और महिलाओं के जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और इसे लेकर समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। श्रीमती आर्या ने किशोरियों के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
3: बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
0: इस अवसर पर उन्होंने किशोरियों और बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता किट भी वितरित की। गौरतलब है कि देशभर के हजारों जन औषधि केंद्रों पर मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज असम भ्रमण के दौरान गुवाहाटी स्थित लोकभवन में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यपालों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भ्रमण के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोकभवन असम की भव्यता, आधुनिक संरचना तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को समाहित करती इसकी वास्तुकला की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की विविधता, विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े

0: अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श तथा मंथन करेंगे। श्री नबीन मंत्रियों के साथ अलग से बैठक भी करेंगे, जिसमें सरकार के कामकाज, जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वे 4 जून को अल्मोड़ा में एक जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 5 जून को वे देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों, विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस के आनुषांगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। राजधानी देहरादून में कल ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रहेगा। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह का विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ, विचारक शामिल होंगे। इसमें हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने आगामी 3 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 3,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, झोंकेदार हवाएं चलने और अतिवृष्टि की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 30 मई से 1 जून तक खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में 4 धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्थान को बिजली, पानी और सड़क सहित सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। बैठक में मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर विभाग के अंतर्गत अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति और संबद्धता पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मूल पदों पर वापस भेजने के भी निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। कहा, सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक दा फिर स्वागत आप सभी सुनदरों को कार्यक्रम ग्राम जगत में जैसे आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुनना छिन मैं छो आप एक दगड़िया शांति बिंजुला सुनदरों। अगर आप नए श्रोता छिन तो आप हमको मेल द्वारा चिट्ठी भेज सकते हैं। हमारा पता chitti.gramjagat@gmail.com। हर भी प्यारा कोणी चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में हम आप एक चिट्ठी को स्वागत करला और जवाब दूला। और अब कार्यक्रम तय एथर बढ़न दो और सुन दो मंजू सुंदरियाल का स्वर मा यो सुंदर सी गढ़वाल लोकगीत। लेकिन गीत से पहल छिन रंत रे बार
2: With UPES, India's AI first university. Choose from 100+ AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की

0: मंजू सुंदरियाल का स्वरमा अभी आप सुनना चाहिए, सुंदर सी गढ़वाली लोकगीत। सुंदरों हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:50 होने वाला छन। घड़ी में आप सुनिल प्रादेशिक समाचार, तो लिया सुना गढ़वाली में उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सरिता भट्ट। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन कर बोली, सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों का समाधान को आश्वासन दे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन मासिक धर्म थे लेके समाज में व्याप्त भ्रांतियों थे दूर करने की आवश्यकता पर बल दे। और मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों का दौरान गढ़वाल मंडल का अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि को पूर्वानुमान जारी करे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन करी। ये अवसर पर उन बोली कि यह पहल केवल एक पुस्तिका को विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड का उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य का निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प को प्रतीक च।
2: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
1: मुख्यमंत्री बोली कि वर्तमान भगत में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी च। उन बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का तहत राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों को लक्ष्य भगत से पहले पूर करिया ली और निर्धारित लक्ष्य को लगभग 95% काम भी पूर करिया ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस थे आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करी। ये पुरस्कार थे प्राप्त करण वालों सिक्किम देश को 15वां राज्य और पूर्वोत्तर को 3रो राज्य बन गया। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्र की असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण खुणे देश का पुलिस बल थे दे जान वालों सर्वोच्च सम्मान च। समारोह थे संबोधित कर राष्ट्रपति ने पुलिस बल थे अधिक नागरिक केंद्रित बनने को आग्रह करी। उन पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों का प्रति संवेदनशील रहने को आग्रह करी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से आश्वस्त करी कि केंद्रीय माध्यम

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू करे गया नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चितकरण का उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन च। श्री प्रधान नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों का दगड़ी बैठक का बाद संवाददाताओं से बातचीत में बोली कि उन विद्यार्थियों थे आश्वासन दिया कि चलनी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया का दौरान सभी शिकायतों को समाधान करे जालू।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक कर आ जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के संशोधित तिथियों और प्रवेश पत्र जारी करिए। NTA का अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 व 7 जून को आयोजित करे जाले। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाला उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जारी करिए ली और यूं थे NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड करे जा सकेंच। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाला शीर्ष उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करे जाला।
2: गढ़वलीमा प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन बोली कि मासिक धर्म थे लेके समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त छिन जो थे दूर करना आवश्यक च। वो आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस का अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और महिलाओं की जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर थे संबोधित कनी छे। उन बोली कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया च और ये थे लेकिन समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लान जरूरी च। श्रीमती आर्यन किशोरियों खुणे संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्म का दौरान स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दे।
3: बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से महावारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में महावारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि महावारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
0: ये अवसर पर उन किशोरियों और बालिकाओं थे मासिक धर्म स्वच्छता किट भी वितरित करीन। गौरतलब छ कि देश भर का हजारों जन औषधि केंद्रों पर मात्र 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध करे जानेन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज असम भ्रमण का दौरान गुवाहाटी स्थित लोक भवन में असम का राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करी। ये दौरान दुई राज्यपालों का बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय हित से जुड़िया विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुए। भ्रमण का दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन असम की भव्यता, आधुनिक संरचना तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत थे समाहित कर दी एक ही वास्तुकला की सराहना करी। उन बोली कि पूर्वोत्तर भारत की विविधता, विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रहे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा पर देहरादून पहुंचीन। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको भव्य स्वागत करी। वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी का वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का दगड़ी विचार विमर्श तथा मंथन करला। श्री नवीन मंत्रियों का दगड़ी अलग से बैठक भी करला जैमें सरकार का कामकाज, जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा करे जाली। उना कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हुए। वो 4 जून को अल्मोड़ा मा एक जनसभा और पौड़ी मा पूर्व सैनिक सम्मेलन थे संबोधित कराला। यहाँ का बाद 5 जून को वो देहरादून मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्यों, विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस का आनुषंगिक संगठनों का प्रतिनिधियों का दगड़ी बैठक करला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाला ने राहुल गांधी का दौरों की जानकारी दे। राजधानी देहरादून में भोल ब्रिक्स अकादमिक मध्यवर्ती सम्मेलन आयोजित करे जालो। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण पर केंद्रित राली। सम्मेलन का उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह को विशेष वीडियो संदेश भी प्रसारित करे जालो। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों का प्रमुख विद्वानों, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होला। यामा हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जना विषयों पर विशेष चर्चा करे जाली। मौसम विभाग ने 3 जून तक राज्य का विभिन्न जिलों में बरखा को पूर्वानुमान जारी करी च। विभाग का अनुसार अगला 2 दिन राज्य का अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बरखा और 3,800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला जगहों पर बर्फबारी को अनुमान च। दगड़ा ही अगला 24 घंटों का दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी चाल चमकण, झोंकेदार बथों चलण और अतिवृष्टि की संभावना बनी च। वखी मौसम विभाग ने 30 मई से 1 जून तक खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी करूं च। इन अवधि में 4 धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचण और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील करी च। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका को विमोचन कर बोली, सौर ऊर्जा भविष्य की आवश्यकता च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों का समाधान को आश्वासन दे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन मासिक धर्म थे लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों थे दूर करने की आवश्यकता पर बल दे। और मौसम विभाग ने अगला 24 घंटों का दौरान गढ़वाल मंडल का अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि का पूर्वानुमान जारी करी। एक अदगढ़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त। नमस्कार।
4: और ये किदगड़ हमारो आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यखमी संपन्न हुंद। भोल नए अंक लेके फिर हाजिर होला। तब तक वास्ते पर दगड़िया शांति बिंजोला ध्यानुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत। और आज कार्यक्रम में आपके साथ हैं आपकी साथी सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे, साथ ही अपनी खेती किसानी का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और साथियों, इस समय धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में अपना और अपनी फसल का बहुत अधिक ध्यान रखें। तो इस तरह से क्या है कि आपकी फसल आपको अच्छी उपज भी देगी। और साथियों, उपज की बात करें तो हमें उपज बढ़ाने के लिए गोबर खाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आजकल खेती में रासायनिक खादों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे फसल जल्दी तो तैयार हो जाती है साथियों, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है। ऐसे में गोबर की खाद एक प्राकृतिक वरदान साबित होती है। दोस्तों, गोबर खाद केवल खेत की उपज ही नहीं बढ़ाती, बल्कि मिट्टी को भी स्वस्थ

0: बनाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की अच्छी वृद्धि में मदद करते हैं। और साथियों, गोबर खाद का एक और बड़ा फायदा ये है कि इससे खेती की लागत भी कम होती है, बाजार से महंगी खाद खरीदने की जरूरत कम पड़ती है और फसल भी सुरक्षित और स्वादिष्ट होती है। आजकल जैविक खेती की मांग बढ़ भी रही है साथियों, ऐसे में गोबर खाद का उपयोग किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार बन सकता है। और अगर आप सब्जियां, गेहूं, धान, गन्ना या बागवानी की खेती करते हैं तो गोबर खाद का नियमित उपयोग जरूर करें। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ मिट्टी की सेहत भी लंबे समय तक बनी रहती है। और साथ ही जब खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाती है तो मिट्टी भुरभुरी बनती है, इससे पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और पौधों की जड़ें मजबूत होती है। खासकर गर्मियों में ये खाद मिट्टी में नमी बनाए रखने में बहुत मदद करती है, तो इसीलिए गोबर खाद से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और गोबर खाद का इस्तेमाल आप जरूर करिए, जिससे आप रासायनिक खादों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी पारंपरिक और प्राकृतिक संपदा यानी गोबर खाद को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक लाभकारी आप बनाएंगे। और साथियों, आज है एक खास दिन, क्योंकि आज है महीने का चौथा गुरुवार और इस दिन हम लेके आते हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम आकाशवाणी आपके द्वार। तो आज हम आकाशवाणी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम गए हैं फूलकोट झाझरा गांव में और यहां पर एक संस्था द्वारा एक स्कूल चलाया जाता है। इस स्कूल में जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो साथियों, गांव में पहुंचते ही हमें दिखा है हमें सबसे पहले ये स्कूल जिसमें कुछ बच्चे हैं। आइए हम बात करेंगे।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं धूलकोट माफी झाझरा में आकाशवाणी आपके द्वार कार्यक्रम में और आज हम जब आए हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संस्था द्वारा संचालित स्कूल है और यहाँ पर कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनसे हम बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो स्कूल में क्या क्या करते हैं। जी बच्चा, आप बताइए आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम है राजनंदनी।
1: राजनंदनी, अच्छा, कौन सी क्लास में आप?
2: मैं क्लास सेवेंथ में हूँ।
1: क्लास सेवेंथ में, तो स्कूल में कैसा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है?
2: यस मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना।
1: अच्छा लगता है, अच्छा। और एक दूसरी बच्ची है, बच्ची का नाम
3: सोनाक्षी।
1: सोनाक्षी, सोनाक्षी कौन सी क्लास में?
3: सेवेंथ।
1: सेवेंथ में, अच्छा, दोनों साथ में ही हैं आप फ्रेंड्स?
3: यस।
1: अच्छा, तो स्कूल में कैसे अच्छा लगता है, पढ़ाई करते हैं खूब, मस्ती खूब?
3: यस मैम।
1: अच्छा, और आज हम आपके स्कूल में आए हैं तो स्कूल में क्या क्या सीखते हैं और कुछ आप अपनी पसंद का अगर कुछ सुनाना चाहें हमें तो आप सुना सकते हैं। कुछ
3: सॉरी
1: सॉन्ग सुनाना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए आज हम सुनेंगे। और भी कोई है आपके साथ में जो सॉन्ग सुनाना चाहते हैं? जी बताइए, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम रूही है, आई एम स्टडी इन क्लास सेवन।
1: ओके,
4: आई एम सिंगिंग फॉर सॉन्ग।
1: सिंगिंग फॉर सॉन्ग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, स्पीकिंग इन इंग्लिश, वेरी ग्रेट। ओके, व्हाट्स योर नेम?
4: ईशानी।
1: ईशान, ओके, एंड व्हाट्स योर नेम?
5: माय नेम इज प्रियांशी।
1: प्रियांशी, ओके, चलिए फिर बच्चों से आज हम सॉन्ग सुनेंगे।
6: गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ वीएसबी मदर्स डेल स्कूल, टुडे वी ऑल आर परफॉर्मिंग ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग।

0: सुंदर, बहुत सुंदर आपने गाना गाया, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप बैठ जाइए। जी, तो किसान साथियों, अभी आपने सुनी ये प्यारी प्यारी आवाज, और अब हम सुनना चाहेंगे यहाँ की टीचर्स जो यहाँ पे सहयोग देती हैं। तो हमारे बीच है यहाँ पे जो स्कूल को पूरा संभालती हैं, पूरा स्कूल का ध्यान रखती हैं और सभी बच्चों को बहुत प्यार से रखती हैं। आपका नाम?
1: मैं आशा पाल।
0: आशा पाल जी, तो आपको कैसा लगता है आशा पाल जी स्कूल में बच्चों को संभालते हुए?
1: बहुत अच्छा लगता है, काफी टाइम भी हो गया, अब आदत भी हो गई है, और मतलब चीजों को लगता है कि घर से ज्यादा यहाँ टाइम बिताना अच्छा लगता
0: अच्छा,
1: है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होती है बच्चों को?
1: सिंगिंग का भी होता है, डांसिंग का भी होता है, इनका
0: अच्छा
1: पढ़ाई का, जैसे आर्ट क्राफ्ट वगैरह ये भी हम सब कराते हैं इनको
0: जी
1: ना।
0: जी
1: हफ्ते में हम 2 डे देते हैं, सैटरडे और वेनसडे।
0: बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ ये विकास भी बहुत जरूरी है, सभी बच्चों को सभी चीजें आनी बहुत जरूरी है। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में?
1: स्कूल का तो अच्छा ही है, सबसे बड़ी बात तो हमारी मैम है, जो मेजर मैम हमारी दीपा बचेती मैम है,
0: जी
1: वो हमें टीचर की तरह नहीं अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही रखती
0: जी
1: हैं, तो
0: जी
1: इसमें हमें अच्छा भी लगता है उनके साथ भी और बच्चों के साथ भी टाइम। स्कूल तो ऐसी चीज है कि जितना टाइम दो उतना ही अच्छा
0: जी बिल्कुल
1: है।
0: सही बात कहा आपने, घर से ज्यादा स्कूल में आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि
1: हाँ
0: यहाँ
1: जी
0: पे
1: हाँ
0: बच्चों के साथ, मैम के
1: जी
0: साथ
1: हाँ
0: खूब अच्छा
1: जी,
0: समय
1: आप
0: आपका
1: लोग आए,
0: जाता
1: हमें
0: है।
1: आपका भी बहुत थैंक्सफुल है कि आप हमारे लिए स्कूल
0: जी
1: में अपना
0: जी
1: टाइम निकाल के आए हो
0: जी
1: आप
0: बहुत
1: लोग।
0: बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे स्कूल में काफी एक्टिविटीज कराई जाती है, एंड यहाँ पे सर हैं जो
2: शिवम पांडे
0: जी, शिवम पांडे जी, आप क्या कराते हैं बच्चों
2: इनको
0: को?
2: मार्शल आर्ट्स कराता हूँ,
0: मार्शल
2: सेल्फ
0: आर्ट।
2: डिफेंस की ट्रेनिंग देता हूँ,
0: ओके
2: और वैसे हम कराटे इनको सिखाते हैं
0: जी,
2: कि फॉर्मेशन और फाइट स्किल्स दोनों।
0: दोनों आने चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों को। फाइटिंग स्किल्स आप सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहता है आपका इन बच्चों के साथ?
2: अच्छा है, कॉपरेट करते हैं, मतलब
0: जी
2: मज़ा भी आता है इनके साथ
0: जी
2: खेल,
0: जी
2: और छोटे बच्चे ज़्यादा ही प्यारे हैं
0: अच्छा, ये
2: उनके साथ
0: तो
2: और मज़ा आता
0: जी
2: है।
0: बहुत अच्छा
2: जी
0: है। तो अभी कितने बच्चों को आप सिखा चुके हैं यहाँ पर?
2: आप मतलब रेगुलर डेली वो है,
0: अच्छा,
2: मतलब नेक्स्ट लास्ट ईयर से सिखा रहा हूँ
0: लास्ट
2: मैं,
0: ईयर से सिखा
2: अभी
0: रहे हैं।
2: चेंज भी हुए हैं कुछ।
0: अच्छा, तो चलिए, तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा यहाँ पे सिखा के
2: जी
0: सबको, और बच्चे सीख भी रहे हैं,
2: जी
0: बहुत
2: कॉपरेट
0: इंटरेस्ट
2: करते
0: लेते
2: हैं
0: हैं।
2: जी।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची है जो खुद भी पढ़ रही है और यहाँ के बच्चों को भी डांसिंग सिखाती है, यहाँ के बच्चों को ये डांसिंग सिखाती है और अपने आप भी पढ़ रही है। आपका नाम क्या है?
3: जिया धीमान।
0: जिया धीमान जी, ओके। तो आप कब से जुड़ी हुई हैं स्कूल के साथ?
3: 1 साल तो हो गया है मेरे को यहाँ पे।
0: 1 साल?
3: हाँ जी, और मतलब मेरे को गुरु शता मैम सिखाती है डांस, और फिर मैम बच्चों को सिखाती हूँ।
0: बच्चों को सिखाते हैं, अच्छा। आप खुद कौन सी क्लास में हैं अभी?
3: अभी मेरी 10th चल रही है।
0: ये देखिए, ये बच्ची खुद 10th में पढ़ रही है और इन बच्चों को भी सिखा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बच्ची इतना कुछ कर रही है। तो बच्चों को सिखा के कैसा लगता है आपको?
3: बहुत मजा आता है बच्चों को सिखा के डांस।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे सीखते हैं खूब अच्छे
3: हाँ
0: से?
3: जी, सब बहुत अच्छे से सीखते हैं।
0: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, अच्छे से बच्चे भी सीख रहे हैं। और अब एक और बच्ची है जो यहाँ पर, तो ये बच्ची जो है यहाँ पर कंप्यूटर एंड क्राफ्ट सिखाती है यहाँ पे बच्चों को, और खुद भी पढ़ रही है और बच्चों को भी सिखा रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम?
4: मैं मनीषका पाल।
0: मनीषका पाल जी, तो आप कौन सी क्लास में हैं मनीषका?
4: मैम 12th पास आउट हुई जस्ट नाउ।
0: मैम
4: कंप्यूटर सिखवाती हूँ और क्राफ्ट का करवाती हूँ मैम, और सीनियर स्टूडेंट्स को भी करवाती हूँ मैम ऑल सब्जेक्ट्स।
0: ओके,
4: मैम एक्सप्लेन भी करवाती हूँ और रिटन वर्क भी करवाती हूँ, ओरल वाइवा वगैरह सब।
0: ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। सभी बच्चों को सिखाते हैं या फिर छोटे बच्चों को?
4: मैम सीनियर सेक्शन।
0: सीनियर सेक्शन को सिखाते हैं।
4: yes,
0: अच्छा, ठीक है। साथियों, आज हम इस स्कूल में थे, उस स्कूल में एक सर हैं जो इन बच्चों को वैन में ले जाने का काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम?
5: राजीव शर्मा। मैम
0: जी, राजीव शर्मा जी, तो आप बच्चों को स्कूल से घर लेके जाते हैं, घर से स्कूल लेके आते हैं, कैसा अनुभव है आपका बच्चों के साथ?
5: वैसे काफ़ी टाइम हो गया मैम मुझे इस काम में, लगते 3 से 4 साल हो चुके हैं मैम
0: जी,
5: तो काफ़ी अच्छा है मैम।
0: अच्छा है, कैसा लगता है बच्चों को रोज लेके जाना? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं।
5: जी जी
0: जी,
5: कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
0: सपोर्ट करते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है?
5: जी मैम।
0: साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
4: तो साथियों, अब हम इस गांव में पहुंचे हैं और हम बात करते हैं यहां के स्थानीय लोगों से।
5: और हम यहां पर मैम के साथ हैं। मैम से जानना चाहेंगे कि इस गांव में कितनी आबादी है, लगभग कितने लोग यहां पर रहते हैं, लगभग कितने घर हैं और यहां पे स्वास्थ्य की क्या जो है सुविधाएं हैं, वो सब हम जानना चाहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मैम से। मैम अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम दीपा बछेती है और मैं यहाँ धूलकोट गाँव से हूँ। मैं और यहाँ पर मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हूँ। मेरा स्कूल है जहाँ पर बहुत रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, नितान गरीब बच्चे जो हैं, उनको मैं शिक्षा दे रही हूँ। पिछले 8 सालों से 8वीं तक का स्कूल है। और उसी के साथ यहाँ पे स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मैं जो है वासुदेव स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा और परिंदे ग्राम संगठन मेहरा गाँव की भी अध्यक्षा और झाझरा क्लस्टर बालाजी क्लस्टर की भी मैं अध्यक्षा हूँ। इस पद में मैं कार्य कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी इस वक्त आप लोग जिस क्षेत्र में आए हैं ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और धूलकोट न्याय पंचायत यहाँ का धूलकोट है और न्याय पंचायत यहाँ पर झाझरा है हमारा। और उसके साथ यहाँ पे जो आबादी है लगभग 600 वोट होंगे। मैं लगभग लेके चल रही हूँ इसमें क्योंकि एकदम संख्या तो मैं नहीं बता सकती एग्जैक्ट, लेकिन हाँ लगभग 600 के करीब यहाँ पे वोट हैं और 250 से 300 तक यहाँ पर आबादी घर हैं। तो आप मान सकते हैं अगर वोट 600 हैं तो उसके साथ में परिवार के बच्चे छोटे भी होते हैं जो माइनर हैं, उनको मिला के संख्या आगे बढ़ सकती है। रही बात यहाँ पर जैसे एक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर शिक्षित लोग भी हैं और अशिक्षित भी हैं। महिलाएं कुछ अब शिक्षा के लिए जागरूक हो रही हैं, कुछ महिलाएं शिक्षित भी हैं जो अब हमारी परिवारों में बहुएं आ रही हैं, वो शिक्षित बहुएं आ रही हैं, लेकिन जो उनसे पहले के हैं वो लगभग शिक्षित नहीं हैं। उन्होंने जो भी ज्ञान की प्राप्ति करी है वो अपने घर और अपने एक्सपीरियंस से करी है और बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक भी हैं अभी कई पेरेंट्स। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, वो अभी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। तो उनको हो रहा है, बच्चा जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। 6-6 साल का, 7-7 साल का बच्चा भी घर में बैठा हुआ है और उसके बाद वो बच्चा फर्स्ट क्लास में जाने लायक हो गया तो आज तक उसने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा है। तो ये भी कई सारी समस्याएँ हैं, लेकिन कुल मिला के मैं ये बोलूँगी अब जागरूक हो रहे हैं शिक्षा के लिए। और उसी के साथ आपने अभी जैसे स्वास्थ्य के लिए जानकारी चाहिए थी कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं क्या नहीं है, पहले तक यहाँ कोई ऐसी सुविधा थी नहीं स्वास्थ्य की और ऐसे ही था कि कहीं पर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हो गए हैं, कहीं पर छोटी मोटी डिग्री लेके गांव के अंदर हैं बैठे हैं तो लोग बीमार हो रहे हैं या तो घर के ही नुस्खे तो दादी के नुस्खे तो अभी भी चलते हैं, वो आप समझते हैं हर घर में चलते हैं। आप अच्छे से अच्छे रईस घर में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी जो होता है कि दादी का ये तड़का जो है ये काम कर जाएगा। लेकिन अब मैं बोलूँगी बहुत अच्छी सुविधा हमें मिल रही है। हॉस्पिटल जो है एकदम हमारे इस गांव में खुल गया है और उस हॉस्पिटल ने अभी हमारे गांव को अडॉप्ट भी किया है, तो ये एक सुविधा बहुत अच्छी है।

0: यहाँ से मिली हुई है
1: जी। यहाँ पर एक महिला है, उनका नाम जानना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि गांव में वो कितने सालों से हैं और यहाँ पे विकास का आप क्या अनुभव आपको मिला है, कितना आपने देखा है पहले से अब में, क्या फर्क आप देख पा रहे हैं। जी अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम पूनम सक्सेना है
1: जी।
2: और मैं यहाँ के समूह से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी समय से यहाँ पर मैं इनके साथ काम कर रही हूँ।
1: जी
2: तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मेहरा का गांव धूलकोट का ये एक हिस्सा है, वहाँ पर बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। तो पूरा का पूरा मेहरा गांव है बोक्सा जनजाति का है। जैसे कि आप जानते हैं कि जनजाति है, तो पहले वहाँ पर शिक्षा की कमी थी, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं
1: जी
2: तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, वो चीज़ें धीरे धीरे अब बढ़ रही हैं। तो विकास की बात आती है तो पहले और अब में काफ़ी अंतर है। धीरे धीरे महिलाएं घर के साथ साथ बाहर भी कर रही हैं।
1: जी
2: यहाँ से बहुत सी महिलाएं ऐसी सी हैं कि यहाँ पास में ही सेलाकुई
1: जी
2: एक औद्योगिक क्षेत्र है,
1: जी
2: तो बहुत सी महिलाएं घर से बाहर निकलकर वहाँ फैक्ट्री में भी काम करती हैं,
1: जी
2: अपने घर परिवार को चला रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया है कि शिक्षा के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को, खुद नहीं पढ़ी हैं वो, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा है, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और घर से बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं।
1: ये बहुत अच्छा बताया आपने कि महिला अब जागरूक हो रही है और अपने लिए सब कर रही है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे आजीविका का मुख्य साधन क्या है, किस तरह से लोग अपने घर को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, क्या है साधन।
2: देखिए, वो यहाँ पे आजीविका का एक साधन तो है खेती।
1: जी
2: यहाँ पर काफ़ी लोगों के पास खेती भी है,
1: जी
2: जिसमें वो गेहूँ है, धान है, मौसमी फल हैं, सब्जियाँ हैं और मसाले हैं, ये सारी चीज़ें उगाते हैं। उसके अलावा मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पास में सेलाकुई है, वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं,
1: जी जी
2: तो यहाँ से बहुत से लोग वहाँ पर काम करते हैं। उसके
1: जी
2: अलावा बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपने रोजगार खोल रखे हैं,
1: जी
2: है ना। तो आप अभी आए होंगे तो आपने देखा होगा रोड के किनारे यहाँ पर बहुत सारे सब्जी की आपने वो देखी होंगी दुकानें हैं,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
2: छोटी
1: देखा।
2: छोटी दुकानें
1: जी
2: थी,
1: जी
2: और खाने के स्टॉल देखे होंगे आपने।
1: जी जी
2: तो वो सारे के सारे जो हैं वो यही इसी गांव से लोग उस काम को कर रहे हैं।
1: जी तो इस तरह से लोग अपना आजीविका कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैं जानना चाहूंगी कि जैसे खेती, आप भी यहाँ पर खेती किसानी कुछ करते हैं, आपके खेत कुछ है यहाँ पर।
2: मेरे तो नहीं है, लेकिन मेरे आस पड़ोस जो लोग रहते हैं उनके काफ़ी खेत हैं,
1: जी
2: वो लोग यहाँ पर खेती करते हैं। और जब खेती है
1: जी
2: तो एक आजीविका का बहुत बड़ा साधन यहाँ पशुपालन भी
1: जी जी बिल्कुल
2: है ना।
1: बिल्कुल
2: तो लोगों ने अपने घर में पशु भी पाल रखे हैं, तो दुग्ध उत्पादन जो है वो भी एक आजीविका का यहाँ पर मुख्य साधन है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब बात करना चाहूंगी, यहाँ पर उपस्थित एक महिला हैं जो हमें बताएंगी इस गांव के बारे में और इस गांव में महिलाएं किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सी महिला समूह सहायता ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आपका नाम।
3: मेरा नाम नीलम नेगी है
1: जी
3: और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ।
1: जी बिल्कुल
3: और मैं जो NRLM के थ्रू समूह बने हैं,
1: जी
3: मैं उसका भी एक पार्ट हूँ, उसमें
1: ओके
3: मेंबर भी हूँ।
1: अच्छा
3: और इसी समूह में रीप परियोजना है ग्रामीण
1: जी
3: उद्यम वेग वृद्धि के नाम से,
1: जी
3: जिसकी शॉर्ट फॉर्म है रीप। तो
1: जी
3: वो समूह की महिलाओं के साथ काम करते हैं, जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं या उनके घर में मेंबर्स होते हैं, वो काम खोलना चाहते हैं पर उनको फंड प्रोवाइड नहीं होता है।
1: जी जी
3: तो ये री परियोजना है जो उनको फंड प्रोवाइड करती है, और फंड भी ऐसा कि वो उनसे रिटर्न नहीं लेती हैं,
1: अच्छा
3: मैजिक ग्रांट मैचिंग ग्रांट देती हैं
1: जी
3: जो उनकी लैंग्वेज में, और हम गांव वालों की लैंग्वेज में समझे तो सब्सिडी
1: अच्छा जी
3: वो
1: बिल्कुल
3: उनके काम शुरू करने के लिए देती है
1: हाँ
3: ताकि वो अपनी आजीविका बढ़ा सके।
1: जी
3: इंडिविजुअल भी करती हैं
1: जी
3: और ग्रुप के माध्यम से भी करती हैं। हमारी एक फूड कार्ट लगी है
1: जी जी जी
3: झाझरा में गुरु नानक कॉलेज के सामने,
1: जी
3: तो वो भी हमें परियोजना के थ्रू प्रोवाइड की गई है जो समूह की महिलाएं काम करेगी। और ऐसे अभी हमारे और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है उनसे, एक है हमारा पापड़ और बड़ी बनाने का प्रोजेक्ट है, उसमें भी बात चल रही है। और प्लस इसमें ऐसा है कि वो मार्केटिंग भी प्रोवाइड

0: करते हैं हम लोगों को ना,
1: अच्छा
0: तो उसमें वही है कि समूह की महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं
1: जी,
0: वो उसी में सेल किए जाएंगे,
1: अच्छा
0: क्योंकि बहुत सी महिलाएं को ना स्किल तो होता है लेकिन
1: हाँ,
0: उनको मार्केट नहीं मिल पाती
1: बिल्कुल
0: है, तो
1: सही
0: इसमें यही उनको मार्केट भी प्रोवाइड की जाती
1: जी
0: है।
1: जी जी समूह सहायता का काम ही है कि महिलाओं को एकजुट करके उनके स्किल का फायदा उठाया जाए। जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस समूह में कितनी महिलाएं हैं अभी फिलहाल?
0: यहाँ हमारे समूह में 600 महिलाएं हैं
1: अच्छा,
0: जो काम कर रही है एग्रीकल्चर पे। उनके पास खेती है तो वो हल्दी भी उगाती हैं
1: जी
0: और वो जैसे आलू की खेती भी करते हैं, गेहूं, चावल, मक्की हो,
1: जी
0: काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ होता है। और फिर हम उन्हीं को, जैसे मैं हूँ रीपर योजना में एज ए बिजनेस प्रमोटर कार्य कर रही हूँ,
1: जी
0: तो उनके प्रोडक्ट उनसे लेते हैं, तो हमारा जो क्लस्टर है उनसे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर देता है। किसान को तो उनको पैसा डायरेक्ट मिल जाता है,
1: जी
0: फिर
1: जी
0: वो हम उनकी मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। जैसे
1: अच्छा
0: हमारे सैजपुर ब्लॉक में भी आउटलेट खुला है, देहरादून विकास भवन में भी है, और अभी जो हमारी फूड कार्ट है उसमें भी आउटलेट है, उसमें
1: अच्छा
0: हम अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अपनी परियोजना के बारे में बताया। और मेरे साथ एक मैम और हैं, उनका नाम मैं जानना चाहूंगी। आप भी समूह से जुड़ी हुई हैं? जी, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम राखी ठाकुर है और मैं ब्लॉक से आईपीआरपी के पद पे कार्य कर रही हूँ। मेरे अंडर में ये पूरी न्याय पंचायत है झाझरा,
1: अच्छा
2: जिसमें हमारी 5 ग्राम पंचायत हैं,
1: जी
2: जिसमें हमारे कारोबारी ग्रांट में 3 वीओ हैं
1: जी,
2: और 3 वीओ यहाँ पे धूलकोट में है और 1 वीओ हमारा झाझरा में,
1: जी
2: यानी 7 वीओ मिला के हमारा एक बालाजी क्लस्टर बन गया।
1: जी बिल्कुल,
2: तो उसके क्लस्टर बनने के बाद उसमें हमारे जो वीओ हैं, वीओ में जितने एसएचजी हैं, महिला हैं, सब कार्य से जुड़ी हुई हैं, आजीविका ही बढ़ाने के कार्य में कर रही हैं। जैसे धूलकोट में यहाँ पे एक डेयरी का काम भी करती हैं महिलाएं, वो एकता ग्राम संगठन से है और गंगा समूह है, और उन्होंने अपनी डेयरी की जैसे भूसा स्टोर बना रखा है और उन्होंने स्ट्रीट शॉप की भी शॉप खोली हुई है अपनी है, तो ये समूह के माध्यम से ही कार्य करके करते हैं। तो उसमें फ्री में हम महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाना और जितने उनके फंड है CLF बैंक से लिंकेज करवाना, CCL करवाना, इनकी रिपोर्टिंग वगैरह सारी देखनी पड़ती है। और जितनी सारी महिलाओं को, हमारा मतलब यही है कि आजीविका से हर महिलाओं को जोड़े।
1: जी
0: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात कही। और जैसे आप आजीविका से महिलाओं को जोड़ रहे हैं, महिलाएं घर से निकलकर अपना काम करने में सक्षम हो रही हैं, तो क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं जो आपसे बताती हो कि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर वालों से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेट आना, इस तरह की समस्या कुछ
2: हाँ,
0: बताते हैं?
2: ये तो आती है समस्या। देखो पहले तो बहुत आती थी,
1: जी,
2: पहले तो सबसे पहले तो विश्वास ही नहीं कर पा रही
1: जी,
2: थी महिलाएं,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: क्योंकि महिलाओं को बाहर भेजना घर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि महिलाओं को हम घर से बाहर भेज रहे हैं,
1: जी, बिल्कुल।
2: पर ये कि चलो उन्हें धीरे धीरे समझ में आया है, पर अभी भी काफी प्रॉब्लम है कि महिलाएं अपने घर का काम, जैसे बच्चे भी हो गए, खेती का भी काम हो गया, ऊपर से हम उनको चाहते हैं कि वो आजीविका से भी जोड़े, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा मैच करके हम भी समझाते हैं उनके परिवार को, वो भी समझाती हैं, कुछ हमें भी देख के थोड़ा सा उनको नॉलेज आती है कि ये भी आ रहे हैं काम करने के लिए महिलाएं, और अपने परिवार को ये साथ चल के कर रही हैं। अब बिना परिवार के तो देखो महिलाएं आगे चल ही नहीं सकती,
1: चल ही नहीं सकती।
2: अब परिवार का सपोर्ट होगा तो महिलाएं जरूर आजीविका के आगे अच्छे से काम करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही कहा आपने, आज की महिलाएं दोहरी भूमिका निभा रही हैं, घर की भी बाहर की भी, और आप उन सब की मदद भी कर रहे हैं, उनको बाहर एक सक्षम महिला बनाने में मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक और मैम है हमारे साथ, ये भी समूह से जुड़ी हुई है, इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या अनुभव रहे हैं इस समूह से जुड़कर। जी बताएं मैम अपना नाम।
3: सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। मेरे समूह का नाम वार्दे स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव के पद पे हूँ
1: जी,
3: और हमारे परिंदे ग्राम संगठन है, इसमें हमारे 9 समूह हैं, 9 समूह की 9 समूह को जोड़ के एक संगठन बना है। तो समूह में जोड़ के बहुत कुछ सीखा है, जैसे कुछ कार्यक्रम होते हैं बाहर, उनमें जाने को मिला है, घर से बाहर निकल के बच्चों को भी देखा घर में।
0: अच्छा, तो ये बहुत अच्छा, आपने अपना अनुभव बताया कि किस तरह से आपको अनुभव मिला है यहाँ काम करने का। और मैम है हमारे साथ, मैम अपना अनुभव बताएंगे कि मैम को कैसा लगता है समूह में जुड़ के, घर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं और अपना यहाँ पे काम भी कर रही हैं, तो आप बताइए आपका नाम क्या है मैम?
4: मेरा नाम रीना है मैं धूपकोट में रहती हूँ और मेरे के समूह का नाम प्रकृति स्वयं सहायता समूह है। मैं 4 साल से समूह में जुड़ी हूँ, तब से मैं बाहर भी कर रही हूँ, घर का काम भी करती हूँ। और सबसे उससे पहले हम जो समूह के जो कीड़े होते हैं उनका पालन करते थे, जो समूह से नहीं जुड़े एक महीना लग जाता है उनका पालन करने में। रेशम के कीड़े जो होते हैं तो अब वो भी कीट पालन भी करते हैं और ये समूह से जुड़े कार्य। मेरा सिलाई का भी काम है और गायें भी हैं, मतलब जब से समूह से जुड़े हैं तो अब बाहर निकल गए तो कुछ करने का मन।
1: आप बहुत एक सशक्त महसूस करते होंगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सबने यहाँ पे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आज हमने धूलकोट झाझरा गांव में बात करी है महिलाओं से, बच्चों से, और ये जाना है कि किस तरह से महिलाएं आजकल कितना काम कर रही हैं, समूह से जुड़कर अपने आप को सक्षम बना रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है महिला विकास के लिए। और साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वार आएं तो उसके लिए आपको हमें पत्र लिखना होगा जिसमें आप हमें बताएंगे कि आपको अपने गांव कब बुलाना है और अपने गांव के बारे में क्या बताना चाहते हैं। इसके लिए आपको हमें पत्र लिखना होगा, तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001 और आप jagatkrishi@gmail.com पर हमें अपने ईमेल्स भी भेज सकते हैं। साथियों, तो अब अपने साथी सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। साथियों, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार दगड़ी मी कुसुम पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका विमोचन करो को सौर ऊर्जा भविष्यक आवश्यकता छू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल CBSE कक्षा 12 परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में मतभेद बटी संबंधित छात्रों सभ्य शिकायतों समाधानक भरोसा दी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मासिक धर्म के लिए समाज में फैली भ्रम के दूर करने आवश्यकता पर बल दी। और मौसम विभागल आनवाल 24 घंटों दौरान गढ़वाल मंडलक ज्यादातर जिलों में अतिवृष्टि पूर्वानुमान जारी कर रो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिकाक विमोचन करो। यह अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल केवल एक पुस्तिकाक विमोचन नाती बल्कि उत्तराखंडक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्यक निर्माणक दिशा में सामूहिक संकल्पक प्रतीक छो।
2: भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्ज्वल आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
1: मुख्यमंत्री को कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहाती बल्कि आणवल पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य आवश्यकता बन गो। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत राज्य 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य बखत हबीर पहली पुर कर हेलो और निर्धारित लक्ष्यक लगभग 95% काम ले पुर कर हेलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस के आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वजल सम्मानित करो। यह अवसर यह पुरस्कार के प्राप्त करण वाल सिक्किम देशक 15 राज्य और पूर्वोत्तरक 13 राज्य बन गो। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज राष्ट्रक असाधारण सेवा अटूट अनुशासन और समर्पणक लिजी देशक पुलिस बल के दी जाण वाल सर्वोच्च सम्मान छो। समारोह के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पुलिस बल के अधिक नागरिक केंद्रित बनक ले आग्रह कर

0: उन्होंने पुलिस बल ने विशेष रूपल सैनियों गरीबों और नांतिनों प्रति संवेदनशील ऋणक आग्रह ले करो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल विद्यार्थियों के भरोसा दिला कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू करी गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OCM प्रणाली ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य एक प्रगतिशील साधन छो। श्री प्रधानल नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों दगर बैठक के बाद संवाददाताओं दगर बातचीत में यह बात कह उन्होंने विद्यार्थियों के भरोसा दी कि चल नई पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान करी जाए।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक कर आ जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTEL संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर ली। NTEL के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई और 6 और 7 जून के आयोजित करी जाए। NTEL बता कि रविवार के परीक्षा दिन वाल उम्मीदवारों प्रवेश पत्र जारी कर ली और इन्हें के NTEL आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in बटी डाउनलोड करी जा सकूं। 6 और 7 जून के परीक्षा देने वाले बाकी उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करी जाए।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल को की मासिक धर्म के लिए समाज में कई भ्रम फैली छन जिनके दूर करण जरूरी छो। वे आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवसक अवसर पर देहरादून में आयोजित किशोरियों और श्रेणियों जागरूकता तथा प्रशिक्षण शिविर के उ संबोधित करने छी। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया छू और यके लिए सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी छू। श्रीमती आर्याल किशोरियों लीजी संतुलित और पौष्टिक आहार तथा मासिक धर्मक दौरान साफ सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दी।
3: बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है।
0: यह अवसर पर उन्होंने किशोरियों और चीलियों के मासिक धर्म स्वच्छता किट ले बांटी। ध्यान दिन वाल बात छू की देश भरक हजारों जन औषधि केंद्रों में मात्र 1 रूपी में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जानी। राज्यपाल गुरमीत सिंघल आज असम भ्रमणक दौरान गुवाहाटी स्थित लोक भवन में असमक राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दगर मुलाकात ले करी। यह दौरान दोनों राज्यपालों के बीच समसामयिक विषयों, सुशासन, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रहित बटी जुड़ी अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श हो। भ्रमण दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंघल लोक भवन असमक भव्यता, आधुनिक संरचना और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के समाहित करती यांक वास्तुकला की सराहना लेकरी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारतक विविधता, विकास और सांस्कृतिक विरासत सदैव प्रेरणादायी रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय उत्तराखंड दौर पर देहरादून पहुंची। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भव्य स्वागत करो। वे राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों और संगठन बटी जुड़ी दोहर महत्वपूर्ण विषयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं दगर विचार विमर्श तथा

0: मंथन करल। श्री नवीन मंत्रियों दगड़ अलग ले बैठक करल, जेमे सरकारक कामकाज, जनसंपर्क और आगामी रणनीति पर चर्चा करी जल। वे कांग्रेसक वरिष्ठ नेता और लोकसभा मा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्विदिवसीय उत्तराखंड दौरा ले तय हैगो। वे 4 जून के अलमाड़ में एक जनसभा और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन के संबोधित करल। एक बाद 5 जून के ऊ देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों, विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेसक सहायक संगठनों प्रतिनिधियों दगड़ बैठक करल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियालल राहुल गांधी दौरक ले जानकारी दी। राजधानी देहरादून में भोल के ब्रिक्स अकादमिक माध्यावधि सम्मेलन आयोजित करी जाल। सम्मेलनक थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकासक निर्माण पर केंद्रित रोल। सम्मेलनक उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंहक विशेष वीडियो संदेश ले प्रसारित करी जाल। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख विद्वान, नीति विशेषज्ञ और विचारक शामिल होल। यमे हरित औद्योगिक परिवर्तन, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों माध्यमल, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जस विषयों पर विस्तृत चर्चा करी जाल। मौसम विभागल आगामी 3 जून ताले राज्यक अलग अलग जिलों में द्योग पूर्वानुमान जारी कर रो। विभाग अनुसार आणवाल द्वी दिन राज्यक ज्यादातर जिलों में हल्क हबेर मध्यम द्योग और 3,800 मीटर हबेर सकर ऊंचाई वाल जागों में हिमपातक अनुमान छो। दगड़े ही आणवाल 24 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं चाल चमकन, झोंकदार बयाव, चलना और अतिवृष्टि संभावना बनी हुई छू। वह मौसम विभागल 30 मई बटी 1 जून ताले खराब मौसम येलो अलर्ट ले जारी कर रो। यो अवधि में चार धाम श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों दे अनावश्यक यात्रा बटी बचनक और सुरक्षित जागों पर रुनक ले अपील करी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल पौड़ी गढ़वालक श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के निर्माण कामों में तेजी लाने के निर्देश दी रही। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभागक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संस्थानों के बिजली, पानी और सड़क दगड़े सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कर रही। बैठक में मंत्री विभागक अधिकारियों और कार्मिकों वार्षिक स्थानांतरण बखत पर करने के निर्देश दी। उन्होंने एक हफ्ते भीतर विभागक अंतर्गत दोहर विभागों में प्रतिनियुक्ति और संबद्धता पर कार्यरत सभी कार्मिकों के मूल पदों पर वापस भेजने के लिए निर्देश दिए। आखिर में मुख्य समाचार एक बार आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन करो। कौ सौर ऊर्जा भविष्यक आवश्यकता छू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानल CBSE कक्षा 12 परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में मतभेद बटी संबंधित छात्रों को सभी शिकायतों को समाधानक भरोसा दी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्याल मासिक धर्म के लिए समाज में फैली भ्रमों के दूर करने की आवश्यकता पर जोर दी। और मौसम विभागल आणवाल 24 घंटों के दौरान गढ़वाल मंडलक ज्यादातर जिलों में अतिवृष्टिक पूर्वानुमान जारी कर रो। यो का दगड़ ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारों यो अंक ये समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान को, फिल्म थी बैंड बाजा बारात। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, आनंद राज आनंद और कल्पना की आवाज में, फिल्म का नाम वेलकम।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 7:50 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं उम्मीद की किरण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हर कहानी संघर्ष से शुरू होकर सफलता की नई मिसाल बनती है। यहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही प्रेरक कहानी जो ये एहसास दिलाती हैं कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। आइए जानते हैं उन हौसलों के बारे में जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी बन रहे हैं।

0: उत्तराखंड की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। जहां कभी गांव की महिलाएं सिर्फ घर और खेतों तक सीमित मानी जाती थीं, वहीं अब वही महिलाएं अपने हुनर, मेहनत और सरकारी योजनाओं के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। देहरादून के विकासनगर ब्लॉक के गांव सोरना ढोबरी की एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला हैं कल्पना बिष्ट। उन्होंने गांव में स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट शुरू कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि कई महिलाओं को रोजगार भी दिया। कल्पना बिष्ट के मन में ये सोच थी कि गांव की महिलाओं को ऐसा काम मिले जिससे वे घर के साथ साथ अपनी कमाई भी कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामोत्थान दीप परियोजनाओं ने कल्पना के सपनों को उड़ान दी। कल्पना कहती हैं उन्होंने रीप परियोजना की मदद से वर्ष 2024 में बेकरी यूनिट की शुरुआत की। करीब 10 लाख रुपए की लागत से इस बेकरी यूनिट की शुरुआत हुई। आज ये छोटी शुरुआत सफलता की बड़ी कहानी बन चुकी है।
1: मेरा नाम कल्पना बिष्ट है और मैं सोना डोबरी गांव में हूँ और हमारी ये जो बेकरी है ये जो संचालित हो रही है ये डोबरी गाँव में ही हो रही है और ये 2024 में रिप द्वारा हमें प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मिला था। 10 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और आज करते करते हमें 1.5 साल हो गया और हम अच्छा टर्नओवर दे रहे हैं।
0: इस बेकरी यूनिट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ तैयार होने वाले पारंपरिक मिलेट्स आधारित उत्पाद। आज जब लोग हेल्दी और पौष्टिक खान पान की ओर लौट रहे हैं तब पहाड़ के पारंपरिक अनाजों से बने उत्पाद बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बेकरी में पहाड़ के पारंपरिक अनाजों से कई स्वादिष्ट और पौष्टिक चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ मंडुवे के बिस्कुट, गुड़ मक्खन कुकीज, मिल्क रस, झिंगोरे से बने उत्पाद, हनी ओट्स बिस्कुट और गुड़ की चॉकलेट कैंडी जैसी कई चीजें तैयार की जाती हैं। इन उत्पादों में न केवल स्वाद है बल्कि पहाड़ की मिट्टी और परंपरा की खुशबू भी है। यूनिट के कई उत्पाद जैसे मक्खन बिस्कुट, मिल्क रस और गुड़ की चॉकलेट कैंडी हाउस ऑफ हिमालयास में भी अपनी विशेष पहचान बना चुकी हैं। स्थानीय स्वाद और पौष्टिकता के कारण इन उत्पादों की मांग देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। कल्पना कहती हैं आज हमारे उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। उनका कहना है कि हमारे साथ गांव की महिलाएं भी रोजगार से जुड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस यूनिट ने गांव की 9 महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जो महिलाएं कभी सिर्फ घरेलू काम तक सीमित थी आज वे उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और सप्लाई जैसे कार्यों में अहम भूमिका निभा रही हैं।
1: गांव की आसपास की हमारे समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 9 लोग हम इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो सैलरीड है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का वेजिस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महीना हमारे साथ काम करते हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा 3+ जा रहा है और इसी तरह से परियोजना आगे धीरे धीरे, अभी हमारे पास राइस मिल का भी एक प्रोजेक्ट आया है दीप द्वारा, तो वो भी है और इसी परियोजना के माध्यम से सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, रोजगार दिया।
0: कल्पना बिष्ट ने अपने फैशन डिजाइनिंग के हुनर को भी इस व्यवसाय में प्रभावी ढंग से उपयोग किया। बेकरी उत्पादों की आकर्षक और प्रीमियम पैकेजिंग कल्पना स्वयं तैयार करती हैं। यही वजह है कि लोगों को ये उत्पाद और ज्यादा पसंद आ रहे हैं। शुरुआत में ये यूनिट केवल प्रेमनगर, सेलाकुई, सहसपुर, हरबटपुर, विकासनगर, कालसी और देहरादून तक सीमित थी लेकिन अब इसके उत्पाद उत्तरकाशी, टिहरी सहित राज्य के अन्य जगहों तक पहुंच रहे हैं। हर सप्ताह इन जिलों से मिल्क रस और मंडुवे के बिस्कुटों के बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। उत्पादों की सप्लाई को आसान बनाने के लिए महिला समूह ने 0% ब्याज पर एक इको वैन भी खरीदी है। अब इस वाहन की मदद से दूरस्थ बाजारों तक आसानी से उत्पाद पहुंचाए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी इस यूनिट के उत्पादों को काफी पसंद किया गया। खिलाड़ियों और मेहमानों को पहाड़ के मिलेट्स आधारित उत्पादों का स्वाद चखाया गया। स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट के किए गए इन प्रयासों से पहाड़ के पुराने स्वाद को लोग नए तरीके से पहचान रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट आज महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। ये यूनिट बेहद स्वच्छ और प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर रही है। उनका कहना है, राज्य सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर कल्पना बिष्ट की ये पहल न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि गांव की महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखा रही है।
2: खंड विकास नगर में स्वाभिमान महिला की अध्यक्षा कल्पना बिष्ट द्वारा ये एक बेकरी का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में रीप परियोजना के अंतर्गत 10 लाख में हमने उनका एक सीबीओ लेवल एंटरप्राइज सेटअप कराया था, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है और उसमें उनकी पूरी बेकरी से संबंधित मशीनरीज वगैरह सेटअप की गई थी और इसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है। आज वर्तमान में इनका एक मम्मी टमी करके प्राइवेट एंटरप्राइज है, उनके साथ हमने टाइप कराया, यूटी मीडिया वेंचर से उनके साथ टाइप कराया, जिसमें उनका एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। प्लस लोकल मार्केट या फिर हमारे जो विभिन्न स्टॉल्स लगते हैं उसमें बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है और एक आउटकम उसका ये रहा है कि आज 3 से 4 लाख रुपये प्रतिमाह उनकी अर्निंग्स हो रही है और पूरा समूह ही इसमें कार्यरत है और जो उनकी यूनिट है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से और पैकेजिंग भी बहुत प्रोफेशनल ढंग से की जा रही है। तो इसको हम बहुत ही एक देखते हैं कि हमारी महिलाएं जो है रीप परियोजना एवं एनआरएलएम योजना के अंतर्गत जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा लाभ इससे प्राप्त कर रही है।
0: श्रोताओं, कल्पना बिष्ट और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया है कि यदि महिलाओं को सही मंच, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वे गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं। मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। जब इरादे मजबूत हों तो छोटे छोटे कदम भी बड़ी सफलता की राह बना देते हैं। उम्मीद की ये रोशनी समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और दूसरों के जीवन में भी नया विश्वास जगाती है। इसी सकारात्मक सोच और नई प्रेरणा के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए उत्साह और नई उम्मीद की किरण के साथ। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: FM 107.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज की चर्चा का विषय है योग और स्वास्थ्य। इस विषय पर डॉक्टर संयोगिता से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी संकल्प मिश्रा।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर संयोगिता जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून में। डॉक्टर संयोगिता योग की प्राध्यापिका हैं और आज हमारे इनसे बातचीत का विषय होगा योग की वो जीवन शैली जिसे हम वर्तमान युग में अपनी दिनचर्या के साथ शामिल कर सकते हैं ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और दीर्घायु प्राप्त कर सकें। डॉक्टर संयोगिता, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: डॉक्टर संयोगिता, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज के समय में जब कार्य की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, योग की प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है ऐसे माहौल में?
4: जैसे आजकल हम लोग की लाइफ स्टाइल हो गई है, उसमें योग नितांत आवश्यक है, लेकिन प्रश्न यही आता है कि उसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे डेली रूटीन में शामिल करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी कि पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि योग जो है कुछ अलग से कुछ नहीं है, कि हमें योग के लिए कुछ डरना है या उसके लिए बहुत पहले से कुछ तैयारी करनी है। योग वास्तव में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जीवन जीने की जो कला है वो योग है। वो कला कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से निकल गई है। उसका कारण ये है कि हम हर चीज को अब क्या करने लगे हैं, कोई बात नहीं देखा जाएगा, लेकिन उस देखने में, उस खाने में, उस रहन सहन की इग्नोर जब हम करते रहते हैं अपनी सही चीजों को भी, तो उससे हम देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत गंभीर नहीं होके हमारी सिर्फ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में ही उसकी गिनती होती है। जैसे उसमें मैं बात करती हूँ कि मोटापा, जो आजकल आप संकल्प देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इस समय जो बनी हुई है मोटापा है, उससे ही रिलेटेड मैं देखती हूँ कि आपका डायबिटीज आ जाता है उसमें, उससे ही थायराइड आ जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ एक मोटापे की वजह से ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कि यदि हमारी डेली लाइफ में स्टार्टिंग मॉर्निंग से मैं स्टार्ट करके बताऊँ कि हम क्या चीज चेंज करके इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, तो जैसे आपने पूछा कि क्या सरल हो सकता है योग में, तो जैसे हम सुबह को उठते हैं, सुबह को उठने का जो समय होता है तो उठने पे ना फोकस करके हमें ध्यान देना चाहिए कि हम रात में सोते किस समय हैं। तो हमारी जो सोने की टाइमिंग होगी वो हमारी जागने की टाइमिंग को प्रभावित करती है। जैसे हम रात्रि में देखा है मैंने कि फोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उसमें देखते हुए हमारे कब 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, हमें उसका पता नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण से सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जागने में दिक्कत होती है। तो यदि हम रात्रि में 10 बजे सो जाते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही हमारी सुबह को जो आंख खुलती है वो 4 या 5 बजे के बीच में हम जग जाते हैं। यदि हम

0: में सही समय सोएंगे तो सुबह हम 4 या 5 बजे उठ के सबसे पहले अपना नित्य कर्म आदि जो हम करते हैं उससे निवृत्त होके, यदि बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ बेसिक चीजें हैं योग में जिन्हें हम अपना सकते हैं। उसमें है सबसे पहले आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो जो पूरा दिन भी है वो भी हमारा अच्छा जाता है। के लिए ओनली 15 मिनट्स, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के भी स्टार्टिंग में आप 3 ही राउंड करें। 3 राउंड का मतलब है कि सूर्य नमस्कार में 1 में 12 क्रियाएं होती हैं। 12 क्रियाओं में भी आपके 7 उसमें आसन होते हैं और 5 फिर उन्हीं का रिपीटेशन होता है। तो यदि आपने 5 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया या 3 टाइम्स किया तो आप देखेंगे उससे ही आपकी बॉडी को एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है और मोटापे को वो आने नहीं देता पास में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से ही जो तनाव होता है वो भी दूर होता है, मोटापा दूर होता है और अन्य समस्याएं जो हम लोगों को परेशान करती हैं उनसे भी निजात मिल सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा हम ये भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के साथ में कुछ आसन है, जैसे ताड़ासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, गोमुख आसन है, अर्धमस्तिष्क आसन है। इनके 3-3 राउंड भी करेंगे तो एक करने में भी कितना 2 मिनट का मुश्किल से समय लगता है। तो इन्हीं करके अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इन सब चीजों को करते हुए आप देखेंगे कि जो आप दिन में थकावट महसूस करते थे, जो दिन में आपको तनाव होता है या आपको अपने काम में रुचि नहीं आती है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक आप लोगों की ठीक होने लगेंगी।
1: आपने बहुत से आसन बताए, इन आसनों के बारे में हमारे श्रोता सीख सकते हैं। अच्छे जीवन शैली के लिए अच्छे पाचन तंत्र का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यौगिक पद्धति में अगर हम बात करें तो खान पान का समय और उसका तरीका कैसा है जिससे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सके?
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि खान पान का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है यदि आप योग भी करते हैं। आप जब योग स्टार्ट करें तो किसी बुक से देख के या किसी टीवी को देख के ना स्टार्ट करें, किसी अच्छे योग्य मार्गदर्शन में ही आप योग का प्रारंभ करें, जिसे जो आपकी त्रुटियां हैं वो सामने देखें गुरु आपके और वो उसे दूर कराएं, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अब मैं कहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि खान पान, हाँ खान पान के लिए तो एक कहावत है ना कि देखिए जैसे दिया है, दिया से कालिक निकलती है ना, क्यों निकलती है, क्योंकि दिया अंधेरे को खाता है। तो ऐसे कहते हैं कि जैसा हम खाएंगे उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। और जैसे मैं प्रारंभ में ही बात करूं यदि खान पीन की, तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले लोग बैड टी लेते हैं या कुछ लोग ये आपकी कॉफी लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें लेते हैं जो बहुत हार्म करती है। तो स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले गर्म पानी के पीने की आदत डालनी चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं हो, गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अन्य प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। और जैसे वर्किंग होते हैं हस्बैंड वाइफ, आजकल लाइफ स्टाइल इतना बिजी है सब लोगों का कि समय नहीं होता है कि हम बहुत सारी चीजें मैनेज कर पाए, तो उससे क्या है कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, उसके साथ में आप ग्रीन टी आपका यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी भी मार्केट की नाली अपने घर की ही बना सकते हैं, जैसे तुलसी है, अदरक है, इलायची है, इन सब का यूज करके, तो आप देखेंगे थोड़े थोड़े चेंजेस करके ही हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो खान पान की जो अशुद्धियां हैं वो हमारी दूर होंगी और वो अशुद्धियां दूर होते ही आपको खुद में लगेगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर से पहली बात तो आएंगी नहीं और यदि हैं तो वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो खान पीन का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ में एक चीज और बताऊंगी खाने के लिए कि खाने का ना एक हमारे योग में कहा जाता है मिताहार की बात होती है। मिताहार का मतलब होता है कि जैसे हम एक पेट, जैसे आपके पेट की 4 भाग यदि हम करें तो वो 4 भाग का मतलब है कि 2 भाग तो आपके भोजन से भरने चाहिए, 1 भाग आपका जल से और 1 भाग हमारा रिक्त होना चाहिए अर्थात खाली होना चाहिए वायु के लिए। तो यदि हम कहते हैं ना कि आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 खाइए, यदि 4 की भूख है तो 2 खाइए। इससे ये होगा कि आपको आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और इसके साथ में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या अनावश्यक दवाएं खाते हैं, उनसे बच जाएंगे। तो भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, कम खाना है, तो उससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा और कम खाने के साथ में पौष्टिक खाना है। मैदे वाली चीजें, ज्यादा शक्करा वाली चीजें अवॉइड करें जिससे आपका मोटापा और मधुमेह है और आप आजकल देखेंगे अर्थराइटिस है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि एक लाइफ स्टाइल और दूसरा हमारा खान पान। यदि हम ये ठीक कर लेते हैं खान पान तो ये बीमारियां अपना भी ठीक हो जाएंगी और साथ में कुछ योगा भी करते रहते।
1: कॉर्पोरेट संस्कृति के मशीनी युग में आजकल काम की वजह से लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है, तनाव को खुद से दूर रखने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या योग में कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनसे हम अपने तनाव को खुद से दूर रख सकें?
0: बिल्कुल संकल्प, ऐसी चीजें हैं। देखिए, योग के लिए कहते हैं कि योग केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं करता बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। तो सबसे पहले यह है कि तनाव आजकल मैं देखती हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन का, जैसे कहते हैं ना, कि अभिन्न अंग बन गया है। कि अब ये क्यों है, योग एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग पूरी तरीके से इस स्पिरिचुअलिटी को ही दर्शाता है। मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल मैं निसंदेह कहती हूँ कि योग पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक विषय है। यदि हम योग को अपनाते हैं तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि गस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धे सिद्धियो समूभूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं कि चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे लाभ है चाहे हानि है, हर स्थिति में हमें कैसे रहना चाहिए, एक संभाव रखना चाहिए। संभाव की स्थिति रहेगी तो तनाव ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। और जैसे हमारी कुछ क्रियाएं भी हम लोग कराते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं तनाव के लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कराते हैं, शीतली शीतकारी प्राणायाम कराते हैं। इन क्रियाओं का जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हॉर्मोन्स का संतुलन हो जाता है तो हॉर्मोन्स भी संतुलित होते हैं और हमारा तनाव से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। तो इसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो योग अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि तनाव आपका यदि है तो वो दूर हो जाएगा और यदि नहीं है तो कभी नहीं आएगा।
1: आजकल कॉर्पोरेट संस्कृति में लोगों को अपने कार्यालय में लंबे समय तक कुर्सियों पर बैठे रहना पड़ता है
0: जी।
1: इसकी वजह से कई तरह के रोगों ने जन्म लिया है जो कि अब आम हो चुके हैं। चाहे फ्रोजन शोल्डर की बात कर लें, टेनिस एल्बो की बात कर लें, या कमर में दर्द की बात कर लें
0: जी।
1: क्या कार्यालय में रहते हुए हम योग की कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जिनसे हम खुद को इन बीमारियों से दूर रख सकें?
0: बिल्कुल कर सकते हैं संकल्प। देखिए, जैसे बैक पेन को ही मैं ले लेती हूँ, बहुत लंबे समय तक जब हम एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठे रहते हैं तो वो बड़ा नॉर्मल सी बात है कि हमारी कमर में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए हम बीच में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कराते हैं, जैसे हाथों की एक्सरसाइज होती हैं, उसमें गर्दन की होती है, कमर की होती है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने एक घंटा लगातार अपना काम किया तो उसमें मात्र 5 मिनट यदि आप ये क्रियाएं कर लेते हैं, जैसे गर्दन को हम आगे पीछे घुमाते हैं, दाएं बाएं करते हैं, हाथों को भी इस प्रकार से करते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मांसपेशियों में खिंचाव है, हाथों में झंझनाहट है, इन प्रॉब्लम से भी हम निजात पा सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है योग करने के लिए, कुछ ऐसा बताइए कि हम कभी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कहूंगी जैसे कि एक यही है कि आप वर्किंग प्लेस पे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास अलग से कुछ ऐसा नहीं है, तो आप चेयर्स पे बैठ के भी कर सकते हैं। उसके लिए सूक्ष्म क्रियाएं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें आपके घुटने की भी आप बैठ के कर सकते हैं, आप हाथों की और गर्दन की। और यदि आपका जैसे लंच टाइम होता है, खाना खाने के बाद भी हमारे योग में एक बड़ा अच्छा आसन बताते हैं जिसे कहते हैं वज्रासन। तो वज्रासन में उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पे। यदि खाने के विद इन 5 मिनट्स आपने वज्रासन में यदि आप 5 मिनट भी बैठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को बार बार ये दिक्कत होती है कि उन्हें डकारें आ रही हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होगी। और भोजन बहुत सही समय पे पच जाएगा, उसका पाचन तंत्र पे एकदम कहते हैं कि सीधा इफेक्ट देखा गया है। मात्र एक वज्रासन ही ऐसा है जो हम भोजन के तुरंत बाद करते हैं, बाकी सारे आसन भोजन के तुरंत बाद नहीं करने होते हैं। अगर भोजन के तुरंत बाद करना होता है तो 5 से 6 घंटे का अंतराल लगते हैं।
1: अंत में आप चलते चलते अब हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी, वर्तमान के इस तनाव से भरे युग में योग का सहारा उन्हें किस प्रकार से लेना चाहिए जिससे वो दीर्घायु प्राप्त करें और लंबे समय तक निरोगी रहें?
0: योग हमारे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है और वो हमेशा रहेगा। और उसका आज आप देख रहे हैं इस भागदौड़ वाली जिंदगी में और इस कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा यदि किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो हमने देखा है जो हमारी भारतीय खाद्य पद्धति व्यवस्था है, खान पान हमारा और हमारी योग पद्धति। तो लोगों का जो फेथ नहीं भी था तो वो इस पीरियड में लोगों ने देखा। तो मैं यही कहूंगी कि आप योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं जिससे आप देखेंगे कि आपका सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और जब ये हमारे तीनों स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं, अर्थात हम शरीर से भी स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, और निश्चित रूप से फिर समाज के लिए भी हम अच्छे रहेंगे। और जब तीनों रूप से हमारा इस तरह से हमारा विकास होता है, तो हम आध्यात्मिकता को भी प्राप्त करते हैं। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि जैसे योग का मीन्स होता है जुड़ना, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन

0: जो योग में कहा गया है वो तभी संभव है जब हम योग को अपनाएंगे। और अपनाना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने एक दिन किया और 4 दिन छोड़ दिया, मतलब उसे इस तरह से मैनेज करना है कि मुझे 15 मिनट डेली योग के लिए निकालने हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश के लिए हमें कोई कहता नहीं है, हम नहाते हैं हमें कोई कहता नहीं है, वो हमने क्या है कि अपनी एक नीड बना ली है कि हाँ ब्रश करना ही है, मुझे नहाना ही है, मुझे पूजा करनी ही है। ऐसे ही यदि मैं ये मान के चलूँ कि हाँ मुझे योग करना ही है, तो यदि हम उसे अपने जीवन के लिए आवश्यक मानेंगे और यदि उस पर हम विश्वास करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ जो हमारे युवा हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सारी समस्याओं का इतने कम समय में मुझे लगता है कि उसका बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन तनाव है, डायबिटीज है, और आपका मोटापा है, थायराइड है, महिलाओं के हॉर्मोन्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, आप 15 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपको उसका तुरंत आपको फायदा दिखाई देगा। तो योग खाली सुनने से नहीं, करने से होगा। और मैं आशा करती हूँ जितने भी श्रोता हैं आज से ही संकल्प लेंगे कि जैसे हम अपनी जिंदगी में खाने के लिए, नहाने के लिए और चीजों के लिए समय निकालते हैं, तो हम 10 मिनट या 15 मिनट योग के लिए अवश्य निकालेंगे और उसका फिर आपको निश्चित रूप से लाभ भी मिले।
1: निश्चित ही डॉक्टर संयोगिता, आपकी बातों ने हमें बताया कि योग शरीर और मन को निरोग बनाए रखने के लिए सबसे उचित माध्यम है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने आकाशवाणी से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत योग और स्वास्थ्य विषय पर भेंटवार्ता। डॉक्टर संयोगिता से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी संकल्प मिश्रा। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए विविध कलाकारों के गाए गीत।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का। आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए गीत। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर जर्रे पर बस तेरा ही एहसास है। ऐसा ही एहसासों से भरा ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी से। आवाज थी कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल की। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म साजन से। संगीत नदीम श्रवण का है, गीतकार हैं समीर। लेकिन गीत से पहले सुनिए ये संदेश।
1: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in. Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत विवाह फिल्म से। गीत को आवाज दी है उदित नारायण के साथ श्रेया घोषाल ने, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी

संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

107.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शर्मीली फिल्म के इस गीत के साथ। गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार ने। संगीत SD बर्मन का है। गीतकार है नीरज।

तेरी आवाज सुनकर दिल मुस्कुरा जाता है, हर ख्वाब जैसे हकीकत बन जाता है। तू पास हो या दूर कहीं, तेरा एहसास हर पल साथ निभाता है। तेरा एहसास हर पल साथ निभाता है।

चांदनी रातों में तेरा नाम गुनगुनाते हैं, दिल की हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ तुझे बसाते हैं। तू मिले या ना मिले इस जिंदगी में, हम तो हर दुआ में सिर्फ और सिर्फ तुझे ही मांगते हैं। हम तो हर दुआ में सिर्फ और सिर्फ तुझे ही मांगते हैं।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। रात्रि के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी श्रोताओं को ईद मुबारक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा नंबर तो आपको याद ही है, लेकिन जो भी नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन्हें नंबर एक बार फिर बताते हैं। हमारा नंबर है 7088000731। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम और पता लिखकर।

0: और फरमाइशें लगातार हम तक पहुंच रही हैं। और पहली फरमाइश कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं फाजिल्का पंजाब से अपने इन सभी श्रोताओं की। आप हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी, टिवांशी, वाणी और आरबी खेड़ा। ये अगली फरमाइश मजनू का टीला से आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये अगली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार घोटके, वैशाली, अनिल प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके, जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आप श्रोताओं ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता इनके नाम हैं। ये अगली फरमाइश आई है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली यूपी से आप हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती, खनक, शगुन, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मर्यादा फिल्म से। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गरवी। शामिल कर रहे हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी को नई बस्ती गंज डुंडवारा से। ये अगले श्रोता मैसेज भेज रहे हैं सांगली जिले के जत शहर से, आप हैं अल्ताफ हुजरे सैफुल्ला, सबाहत किरत हुजरे, रेहान शेख। ये अगली फरमाइश जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर यूपी से आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशो रिधान खुराना। शांति निवास लेहगांव रेलवे अमरावती महाराष्ट्र से ये अगला फरमाइशी मैसेज पहुंचा है। लिखने वाले श्रोता हैं वंदना कुरहाड़े, कुमारी कल्पना कुरहाड़े, आशीष और दीपक कुरहाड़े। शामिल कर रहे हैं शिरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, लुबना अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, आलिया अंसारी को। ये अगला मैसेज आया है गंज डुंडवारा से। लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही। नेहरू नगर पांडर कवड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री। बल्लार शाह से आप हैं सूरज, प्राची और एकलव्या। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को, जिसको लिखा है स्योहारा बिजनौर यूपी से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादर चौधरी ने। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में बरसात फिल्म से ये गीत।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश, और अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं आप सभी श्रोताओं की। आप हैं गांव फरासी, जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ये अगला मैसेज आया है सतीश अनेजा और विमला अनेजा का चंडीगढ़ से। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं दाऊद सराय सहारनपुर से। आप हैं अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्कर साबरी और जरीफ अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। ये अगली फरमाइश गांव चौहलदा बागपत से आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं।

संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया, आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म जीवन मृत्यु में।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं व्हाइट फील्ड बेंगलोर से हैं, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये अगला मैसेज मोहाली पंजाब से आया है। लिखने वाले श्रोता हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। शामिल कर रहे हैं साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मसरूर अली को खालापार मुजफ्फरनगर से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं अनारकली बाजार जगराव से, आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। मेन रोड तेलहारा से आप हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। मनाली हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता हर्ष, विनय, विनीत और रोजस। चंडीगढ़ से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, आप हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। मारहरा दरवाजा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यसफ अब्बासी। सिकंदरा राव से आप हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, आप हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से आप हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया, रिया टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, बसंत लाल साव, हीरा मोती और पन्ना लाल साव। गांव हरुडीह चांडिल झारखंड से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमोहिनी महतो, दीनबंधु महतो और आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को, जिसको लिखा है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने, रघुवीर नगर से। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आपने ये मैसेज किया है। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। ये अगली फरमाइश सब्जी मंडी झज्जर से लिखने वाले श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। संबलपुर कांकेर से ये अगला मैसेज आया है और मैसेज को लिखा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए सुनिए ये गीत मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में, फिल्म का नाम नील कमल।

श्रोताओं, संगीत वो एहसास है जो दिलों को जोड़ देता है और आपकी फरमाइश हर शाम को खास बना देती है। जी हाँ, और इसी क्रम में आइए शामिल करते हैं कुछ अगली फरमाइशों को। ये अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन की। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से आपने ये मैसेज किया है। ये अगले श्रोताओं का मैसेज आया है पटेल नगर मलोट से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश, जिसको भेजा है जिला रंगारेड्डी से बिजली वेंकटेश, श्यामला, अयांश, सूना, अभिजोन। आपने नाम साफ साफ नहीं लिखे हैं। और साई प्रकाश, साथ में सुषमा, आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। जब भी श्रोताओं आप नाम लिखें, अपना नाम एकदम स्पष्ट और शुद्ध भाषा

में लिखें। अगर अंग्रेजी में आप सही तरीके से नाम नहीं लिख सकते तो हिंदी में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज, जिसको लिखा है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी ने। कार्यक्रम में ये अगला संदेश बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद का। ये अगले श्रोताओं का मैसेज हम तक पहुंचा है। जलालाबाद शामली यूपी से आप हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जीशान मंसूरी। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार। ये अगला मैसेज आया है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल ने इसे हम तक पहुंचाया है। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं। आप हैं बालकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा और राजेंद्र मनहरन वर्मा। नया पारा भिराई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं बसंत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईशर राज, पप्पू ठाकुर। और ये अगला मैसेज कहाँ से आया है? ये आया है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालनी खेड़ा, टिवांशी वाणी और आरबी खेड़ा ने ये मैसेज पहुंचाया है। और इसी के साथ ये अगला मैसेज तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से आया है बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट और हरी भाऊ बिड़वे ने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज, जिसको लिखा है शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम अजीम, अदीम अब्दुल गनी, अलमीर मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल जी ने। तो आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए ये अगला गीत, लता मंगेशकर की मधुर आवाज में, फिल्म का नाम स्वीकार किया मैंने।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने आप है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की तानिया और ये मैसेज हम तक पहुंच रहा है कस्बा उगेती बदायूं से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलौड़ पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव सायना और निवान शर्मा। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं धनोरी तेलीवाला से और ये श्रोता है मोहल्ला बारदरी महमूद खां रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, साथ में है नगमा नाज मंसूरी। चौटाला हरियाणा से आपने मैसेज किया है आप हैं दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आरके राजा। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा को। ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष। ये अगला मैसेज करूला मुरादाबाद से है लिखने वाले श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली, मीरगंज, बरेली से आप हैं जीशान वारसी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश और शामिल कर रहे हैं श्रोताओं इस अगली फरमाइश को जो आई है देहरादून से और ये है सिद्धिका रावत, वैधही रावत, मोहन सिंह रावत, दिग्विजय रावत और देवेंद्र सिंह रावत शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा, शेख फौजिया, आहिल अरहान और इनका पूरा परिवार, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।

में लदावली जिला मुरादाबाद से। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के को रोहिदास चौक पंडुरपुर शहर से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं, गुरमीत सिंह मीता इनका नाम है। इन्हीं के साथ हैं अपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार। कस्बा गनौर से आप हैं फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार ने। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की मधुर आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम सूरज।

श्रोताओं, समय हो गया है 10:55 और ये समय है कार्यक्रम में अंतिम फरमाइशों को शामिल करने का। तो अंतिम

फरमाइशों में पहली फरमाइश है ये अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन की मलियान सरदना मेरठ से। ये अगले श्रोताओं का मैसेज है, मलौत पंजाब से आप हैं संदीप मिगलानी, सीमा और विवान, गंजनवाला यूपी से आप हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजे शेख, दानिश अमन और राधा नामदेव कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर को। ये मैसेज है राजेश्वरी सागर का, आपने ये मैसेज किया है जीएमएस रोड देहरादून से, आपका ये मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं परी महल कासगंज से, आप हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एस असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बादायों से आप हैं आफरीन खान। और ये अंतिम मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, आपका मैसेज शामिल हो चुका है, आप हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा और इनका पूरा परिवार। अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के लिए मन्ना डे की आवाज में, फिल्म का नाम सीमा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही नीलम ममगाई को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। गर्मियों से बचिए, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आपसे होगी मुलाकात फिर किसी रोज किसी और समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहाँ वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।